मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातः

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास जी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।

0: स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास जी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारे संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देव भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए लोबिया की खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।

0: किसान भाइयों, आज हम लोबिया की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। खेत पूरी तरह से समतल होना चाहिए ताकि खेत में एक समान नमी मौजूद रहे। मिट्टी में जल निकास की भी व्यवस्था होना ज़रूरी है, क्योंकि खेत में पानी लग जाने से एक तो अंकुरण सही ढंग से नहीं हो पाता है और दूसरे यदि जमा हो भी जाता है तो ज़्यादा नमी की स्थिति में फसल की बढ़वार भी सुचारू रूप से नहीं हो पाती। खेत का सही चुनाव करने के बाद उसकी एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके दो जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। बगैर उर्वरकों के प्रयोग के कोई भी खेत तैयार नहीं कहा जा सकता। अतः लोबिया की सफल खेती के लिए 10 से 15 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में, यानी कि 25 किलोग्राम यूरिया एवं 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक के रूप में देना चाहिए। इतना करने के बाद खेत तैयार हो जाता है और फिर काम शुरू होता है बुआई का। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनमें प्रमुख हैं टाइप 5269, टाइप 2 और यूपीसी 4200। इनमें से जो भी प्रजाति मिल जाए लेकर के बुआई करें। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 30 किलोग्राम बीज लगता है। अगर दाने के लिए खेती करना है तो टाइप 2 प्रजाति लेना चाहिए। एक हेक्टेयर में बोने के लिए इसका 30 किलोग्राम बीज लगता है तथा इससे एक हेक्टेयर में 14 से 16 कुंटल दाना मिल जाता है। यह प्रजाति 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। जब अच्छी प्रजाति का बीज उचित मात्रा में मिल जाए तो बोने से पहले इसको शोधित कर लेना चाहिए, पहले थीरम नामक रसायन से और फिर विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से। थीरम की 25 ग्राम मात्रा 10 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए आवश्यक होती है। किसी घड़े में बीज एवं आवश्यक दवा की मात्रा डालकर घड़े का मुंह किसी पॉलीथीन से बांधकर घड़े को अच्छी तरह से झकझोर देते हैं। ऐसा करने से दवा बीज पर अच्छी तरह लग जाती है। फिर राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित कर लेते हैं। 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट पर्याप्त होता है। इसके लिए आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल करके फिर इस घोल को बीज में अच्छी तरह से मिला करके और फिर बुआई करते हैं। दाना व हरी फलियां प्राप्त करने के लिए बीज की बुआई पंक्तियों में ही करनी चाहिए, यानी दाने वाली टाइप 2 प्रजाति की बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर तथा टाइप 5269 जो कि फलियां प्राप्त करने के लिए होती है, इसकी बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर चारे अथवा हरी खाद के लिए लोबिया बोते हैं तो बुआई छिटक कर कर सकते हैं। बरसात में सिंचाई की आवश्यकता तो होती नहीं है, हाँ यदि सूखे की स्थिति हो तो एक या दो सिंचाई कर देनी चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद यदि आवश्यक हो तो एक निकाई गुड़ाई भी कर देनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर लोबिया की खेती करनी चाहिए।
1: लोबिया की खेती, अभी आपने इस विषय पर जानकारी सुनी। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी वाराणसी से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना।

राम नाम के बिना संसार रूपी भव सागर को पार करना सर्वथा असंभव है। अतः जितना हो सके समय निकालो और राम नाम का जप कर लो।

0: इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में गायक कलाकार थे नितिन मुकेश, जगजीत सिंह और अलका याग्निक। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। इस कार्यक्रम में आज विषय है धैर्य।
1: कठिनाइयां किसके जीवन में नहीं आती, धूप छांव की तरह मानव जीवन में हर्ष और विवाद के क्षण आते ही रहते हैं, परंतु न तो हंसी के क्षणों में ईश्वर को भूलना ही चाहिए और न ही दुख के क्षणों में अपना धैर्य और विवेक खोकर उसे कोसना चाहिए और न ही उसे भला बुरा कहना चाहिए। कहावत है, आग में तप कर ही सोना कंचन बनता है। जब तक कोई मनुष्य कठिनाई रूपी परीक्षा से होकर नहीं गुजरता, उसको वास्तविकता का बोध नहीं हो सकता। हम में से अनेकों लोगों को ये भ्रम रहता है कि हम बहुत धैर्यवान और साहसी हैं, लेकिन केवल संकट की घड़ियों के बाद ही ये निश्चित हो पाता है कि हम में कितना धैर्य और कितना साहस है। रोनेवा का विचार है, जिस प्रकार श्रम शरीर को शक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार कठिनाइयां व्यक्ति को शक्ति संपन्न बनाती हैं। फील्डिंग का कथन है, कठिनाइयों से ही सिद्धांतों की परीक्षा होती है। बिना विपदाओं में पड़े मनुष्य नहीं जान सकते कि वो ईमानदार हैं या नहीं। सैमुअल वॉरन का कहना है, कठिनाई क्या है? केवल एक शब्द जो किसी विशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित शक्ति की मात्रा बतलाता है। श्रम करने की आवश्यकता की सूचना मात्र बच्चों और मूर्खों को डराने के लिए एक हवा और पुरुषों के लिए एक प्रेरणा। सचमुच कठिनाइयों से जहां व्यक्ति की परीक्षा होती है, वहीं उसी प्रेरणा भी प्राप्त होती है। कठिनाइयों में मनुष्य की विवेक बुद्धि और तीक्ष्ण हो जाती है, उसमें अत्यंत अद्भुत साहस और शक्ति का विकास हो जाता है। सदा काम से जो घबराने वाले व्यक्ति भी उस समय आते हैं, वे कठिनाइयों से क्रियाशील हो जाते हैं और जागरूक होते पाए गए हैं। और फिर कठिनाई ऐसी अवस्था नहीं जो सदैव बनी रहे, हर रात की सुबह होती है, कठिनाइयों का अंत होना भी निश्चित है, परंतु इसके लिए आशा और विश्वास की आवश्यकता है। जेरेमी कॉलियर का कहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहने और विश्वास करने से कठिनाई दूर हो जाती है और दिखाई देने वाली असंभवता समाप्त हो जाती है। सैमुअल जॉनसन का कथन है, बहुत सी वस्तुएं जो आकार में कठिन प्रतीत होती हैं, करने में उतनी ही सरल निकलती हैं। एम्सन मानते हैं कि प्रकृति जब कठिनाइयां बढ़ाती हैं तो बुद्धि भी बढ़ाती है। अतः कठिनाइयों से डरने की नहीं, अपितु उनका हिम्मत से सामना करने की हमें आवश्यकता है।
0: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज का विषय था धैर्य। मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में सुनिए विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारी।

0: या कारण और निवारण विषय पर जानकारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह।
1: मैं डॉक्टर राहुल सिंह, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, आज आपके साथ विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले लोग कहा करते थे कि आप अपना भोजन ठीक करिए, खाना ठीक से खाइए, समय से खाइए, अन्यथा विटामिन की कमी होगी। विटामिन है क्या? विटामिन एक तरह की सप्लीमेंट्स हैं, भोजन की न्यूट्रिएंट्स हैं। एक खाने का भोजन के साथ एक एलिमेंट है और ये विटामिन हमारी पूरी शरीर की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमारी शारीरिक क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़, इन सभी को विटामिन्स को कंट्रोल करना होता है। जहाँ तक विटामिन्स की बात है, विटामिन आप जानते होंगे ए बी सी डी ई, इस तरह करके विटामिन्स होते हैं और ये विटामिन्स विभिन्न चीज़ों में प्रचुरता से पाए जाते हैं। और अगर हम साधारण भोजन भी करें तो हमें विटामिन की समुचित मात्रा प्राप्त होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में अभी भी कुपोषण है, भोज्य पदार्थों की कमी है, लोग समय से खाना नहीं खाते, उनकी व्यस्तता है, जंक फूड्स, फ्राइड फूड्स का ज़माना आ गया, लोग उसको खाना पसंद करते हैं, फाइबर डाइट और नेचुरल चीज़ें नहीं खाते। तो जो व्यक्ति जंक फूड्स पर रहेगा, तली भुनी चीज़ बाज़ार की खाएगा, उनके में विटामिन की कमी हो जाती है, या तो अत्यंत निर्धन है, उसको भोजन प्राप्त नहीं है, समय से खा नहीं रहा है, उसको फिर विटामिन की कमी होती है। तो हम सबसे पहले एक एक विटामिन के बारे में संक्षिप्त विवरण आपको बताएंगे। सबसे पहला विटामिन ए है। विटामिन ए, ये रेटिनॉल कहते हैं इसको। आंख के अंदर हमारे दो सेल्स होते हैं, अंदर की तरफ कॉर्निया, उसके बाद आयरिस और सबसे लास्ट में रेटिना। रेटिना में रॉड्स और कोन होते हैं। इनमें जो रॉड्स होते हैं और जो कोन्स होते हैं, इनका काम हमको देखने की क्षमता को बढ़ाना होता है। और विटामिन ए की जब कमी होती है तो रतौंधी हो जाएगी, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रात में देखना कम हो जाता है, रात में व्यक्ति अंधा हो जाएगा, उसको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग फिर विटामिन ए की डोज अलग से उसको देने के लिए लिखते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक पीते में, आंवले में, दूध में, पनीर में, और नॉन वेज डाइट्स जो लेता है तो अंडे में मिलता है। लेकिन जो एक ही पदार्थ आप लें, जिसे पपीता कहते हैं, पपीता का नियमित सेवन आप करेंगे तो विटामिन ए की कमी क्रमशः धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और विटामिन ए की टैबलेट्स बाजार में मिलती हैं एक्वासाल के नाम से, उसको खाने से रतौंधी का रोग कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके लक्षण ये होते हैं कि आँख के अंदर दिखना कम होगा, जो रोगी बताएगा, और आप देखेंगे जो सफ़ेद वाला भाग आँख का है उस पे सूखापन हो जाता है, जिसे हम लोग बिटॉक्स स्पॉट कहते हैं, और फिर आँख सूखने लगती है, जिसे हम लोग जिरोपथेल्मिया कहते हैं, और उसके बाद फिर आँख में जो ऊपर की झिल्ली है कॉर्निया, वो प्रभावित हो जाएगी और आदमी अंधा हो सकता है। तो विटामिन ए एक बहुत ही जरूरी तत्व है जो हमें ग्रहण करना है। विटामिन ए जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो जो चार हमारे विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, उसमें विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसकी अधिकता भी नुकसानदेह होती है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। जो वाटर सॉल्युबल होता है वो यूरिन से पास आउट हो जाता है, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो यूरिन से पास आउट नहीं होते।
0: विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियां, कारण और निवारण। अभी आपने इस विषय पर जानकारी सुनी, विशेषज्ञ थे डॉक्टर राहुल सिंह। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

भरत को अयोध्या के राजपद के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे ए हरिहरन और उत्तरा केलकर। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में प्रातः 7:31 पर और दिन 12:45 पर आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार होंगी अंजलि शर्मा। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे देवव्रत मिश्रा का सितार वादन। ये आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति होगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 12:30 पर कलाकार होंगी संचिता गोस्वामी और रात्रि 8:00 राजेंद्र मेहता, नीना मेहता। लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर और दिन 1:45 पर आप सुनेंगे दीपक सिंह और साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं का गाया लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। कृषि जगत कार्यक्रम में ही किसान भाई सुनेंगे लोक भाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे मिथिलेश गहमरी, ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव और दिनेश सिंह यादव। दिन 11:00 आप सुनेंगे हेलो फोन इन फरमाइश। प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। दिन 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में बहनें चर्चा के अलावा सुनेंगी महिलाओं में पीसीओएस की समस्या और चिकित्सा के उपाय विषय पर डॉक्टर रुचि सिंह और शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। साथ ही लेंगी गीत संगीत का भी आनंद। शाम की सभा में 5:00 बच्चे सुनेंगे नन्ही दुनिया कार्यक्रम और शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात। फोन इन कार्यक्रम यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और गीत संगीत का भी आनंद लेंगे। शाम 7:31 पर हिंदी वार्ता में आप सुनेंगे हिंदी साहित्य में पावस के विविध रंग विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे देवी प्रसाद तिवारी। सुबह 7:00 आप आनंद लेंगे गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का। 8:45 पर मधुरिमा में मधुर गीतों का आनंद लेंगे। 10:00 झंकार में फिल्मी गीत सुनेंगे और 2:30 पर गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 241.54 अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: पूर्वान्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति। अथ 91 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेश मंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार निवेश अंकिकीय परिवर्तन साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्शः कृतः। अनन्तरं साख्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मन्त्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चम् अपि अभिसम्बोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिमबंगाल राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुड़ी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुड़ी नगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र बीएसएफ इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज रहे हैं, सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: जय जय जगन्नाथ, हर हर महादेव बनारस, एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लीजिए, एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।

0: जय जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, बनारस एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लीजिए, एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
1: हेलो, मैं पूजा,
2: पहचाना? इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाने जो सब बुलाते हैं।
0: हाँ जी, पूजा लेकर हाजिर हो गई हूँ आपका नंबर वन मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी केंद्र पर। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया उड़ीसा के पुरी की रथ यात्रा का नाम जानती है, लेकिन हमारे बनारस का मिजाज ही कुछ अलग है। यहाँ जब पुरी की तर्ज पर रथ यात्रा मेला सजता है ना, तो पूरा 80 यानी पूरा अपना बनारस का इलाका जो है, अपना पूरा जो बनारस है, ऐसे रस में डूब जाता है कि क्या कहने। और आज है इस ऐतिहासिक मेले का तीसरा और आखिरी दिन। बनारस के इस मेले का स्वैग भी एकदम निराला है। बनारस जहां एक तरफ रथ पर विराजे प्रभु के दर्शन के लिए जय जगन्नाथ और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बनारसी जनता मेले का असली लुत्फ उठा रही है। इस मेले की सबसे खास बात क्या है जानते हैं आप? यहाँ भगवान को तुलसी दल के साथ साथ गर्मा गर्म नान खटाई का भी भोग लगाया जाता है। मतलब आध्यात्म और स्वाद का ऐसा तगड़ा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ काशी में ही मिल सकता है, है ना? तो अगर आप पिछले दो दिनों में मेले की रौनक देखने नहीं जा पाए हैं, तो बनारस आज आखिरी मौका है। शाम को घर से निकलिए, रथ यात्रा की गलियों के उस हुजूम का हिस्सा बनिए, बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने खरीदिए और प्रभु का आशीर्वाद लेकर कड़क नान खटाई का मजा लीजिए। फिलहाल तो अभी मैं आपको कुछ और भी बताना चाह रही हूँ, और ये बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट आए हैं। तो आइए सुनते हैं कि वो हमसे जय जय जगन्नाथ के बारे में क्या बता रहे हैं। आइए सुन लेते हैं।
3: मैं डॉक्टर संजीव कुमार राय, मैं श्री जगन्नाथ जी ट्रस्ट वाराणसी 80 का न्यासी हूं, और इस शुभ अवसर मेले पे हम सभी भक्तों को बाबा जगन्नाथ जी की ओर से ढेर सारी शुभकामना, और सबको यहां से सबके कल्याण के लिए जगन्नाथ जी कृपा बरसाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जगन्नाथ जी की यह यात्रा यथा जैसे पुरी में निकलती है, जिस तरह की तैयारी वहाँ होती है, उससे कमोबेश यहाँ की भी तैयारी नहीं होती है, बल्कि इतना उत्साह और समाज के हर एक वर्ग के लोगों का योगदान, कोई किसी को पहचानता नहीं है, लेकिन रथ मेला की तैयारी के लिए जब बंधु जुड़ते गए, जब यात्रा की तैयारी होने लगी, रथ के रंग रोगन से लेकर के रथ के पहिया से लेकर के हर एक अंगों का जब रखरखाव की चिंता होने लगी, कहाँ से सब एक एक तरह के बंधु आने लगे, जो लगने लगा कि ये लोग भगवान के द्वारा प्रदत्त और इस ईश्वरीय कार्य को करने के लिए आए हैं, तो सबने अपने अपने दायित्वों को संभाल करके रथ की तैयारी की। फिर रथ को वहाँ से खींच के ला करके जिस जगह पे बाबा का पूजन होता है और वो अपने मौसी के घर रात्रि विश्राम करते हैं, उस स्थान के पास में ला करके जनता ही, किसी को जोड़ना निमंत्रण देना नहीं, वो सारी जनता प्रतीक्षा में थी कि यह अवसर और यह सौभाग्य कब मिले। और प्रातः 5 बजे मंगला आरती हुई, भक्तों की इतनी अपार भीड़ इस रथ यात्रा के क्षेत्र में, और वो दिव्य भव्य झांकी आई और सबने श्रृंगार किया, सबने आरती उतारी और सबने प्रसाद ग्रहण कर और बाबा का आशीर्वाद लेकर के अपने को धन्य माना। अपार श्रद्धा और आस्था के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में रथ यात्रा होती है। पुरी में जो सर्वोत्तम है, आदर्शभूत है, पुरी के बाद ऐसी मान्यता है कि काशी की जो जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, रथ यात्रा होती है और 3 दिन का मेला होता है, वो भी अद्भुत और अद्वितीय होता है। भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए न्यास के तरफ से विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ जुटाई जा रही हैं, जिससे भक्तगण अपने बाबा का, अपने भगवान का दर्शन योग्य रीति से करके आशीर्वाद लें। उनकी सुविधा जुटाना न्यास का कार्य है, और हम सभी न्यास के बंधु बांधव अपने पूरे समिति के पूरे गण के साथ लगे हुए हैं, और यह मेला उत्तरोत्तर और भी प्रगति को और भव्यता को, दिव्यता को प्राप्त करे, ऐसी हम सब भगवान से, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं।

जी हाँ, भगवान जगन्नाथ से ऐसी ही प्रार्थना हम सब करते हैं कि हम सब के जीवन में सुख समृद्धि और ढेर सारी सफलता आती रहे, और बाबा का, हमारे जगन्नाथ भगवान का हमें ऐसे ही आशीर्वाद हर साल प्यार भरा मिलता रहे। तो बनारस, ये तो बात हो गई जय जय जगन्नाथ की, और अब बात करते हैं आज कुछ ऐसी जो हमारी लाइफ में ना बहुत इम्पोर्टेंट करती है। देखिए, कल शाम मैं घर के एक पुराने डिब्बे को साफ कर रही थी, वहाँ मुझे बचपन का एक रंगों का डिब्बा मिला, वो कलर मोमी कलर जिन्हें हम क्रेयॉन्स कहते हैं। जब मैंने उसे खोला तो देखा कि अंदर लगभग सारे क्रेयॉन्स बीच से टूटे हुए थे, कुछ दो टुकड़ों में, कुछ तीन टुकड़ों में। मैंने सोचा कि ये तो बेकार हो गए हैं, इन्हें फेंक देती हूँ। तभी मेरी 5 साल की बेटी दौड़ती हुई आई, उसने एक टूटा हुआ लाल क्रेयॉन उठाया और कागज पर एक खूबसूरत सा दिल बना दिया। उस टूटे हुए रंग ने भी कागज पर उतना ही गहरा, उतना ही खूबसूरत लाल रंग बिखेरा जितना एक नया और साफ सुथरा क्रेयॉन बिखेरता है। उसी पल मुझे लगा कि यार, ये बात सिर्फ इन रंगों की नहीं है, ये बात तो हम इंसानों की है। आज की हमारी सुबह की शुरुआत इसी एक खूबसूरत सोच के साथ करते हैं। बस इतना याद रखिए, ब्रोकन क्रेयॉन्स आर स्टिल कलर, यानी टूटे हुए क्रेयॉन्स भी पन्नों पर पूरे रंग भरते हैं। जिंदगी में ना कई बार ऐसे मोड़ आते हैं दोस्तों, जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह टूट चुके हैं। कभी किसी रिश्ते का टूटना, कभी किसी अपने के साथ को छोड़ देना या किसी अपने का साथ छोड़ देना, कभी किसी बड़े करियर का फ्लॉप हो जाना, या कभी किसी सपने का कांच की तरह बिखर जाना। उस वक्त ना आईने में आपका अपना चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि जब हमारे अंदर अब कुछ नहीं बचा, हम बेकार हो गए हैं, हम रिजेक्टेड महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी गौर किया है, एक पूरा साबुत क्रेयॉन जो होता है ना, उसकी एक तीखी नोक होती है। तीखी नोक, उससे आप सिर्फ पतली लकीरें खींच सकते हैं, लेकिन जब वो क्रेयॉन बीच से टूट जाता है तो उसके पास रंग भरने के लिए कई नए कोने निकल जाते हैं, वो कागज के बड़े हिस्से को आसानी से रंग सकता है। हमारी जिंदगी की तकलीफें, हमारे वो घाव, हमारे वो टूटे हुए हिस्से ही असल में हमें दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। आपका टूटना इस बात का सबूत नहीं है कि आप खत्म हो गए हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि अब आप जिंदगी को एक नए नजरिए से रंगने के लिए तैयार हैं। अगर आज इस वक्त मुझे सुनने वाले किसी भी दोस्त का दिल भारी है या आप किसी बात से परेशान हैं, तो अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और खुद से कहिए, मैं थोड़ा सा टूटा जरूर हूँ, लेकिन मैं अब भी उतना ही कीमती हूँ। आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती मेरे दोस्तों कि आपके हालात कितने परफेक्ट है, आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप उस टूटे हुए हिस्से के साथ भी कितने लोगों की जिंदगी में उम्मीद का रंग भर सकते हैं। जैसे एक टूटी हुई मोमबत्ती भी उतनी ही रोशनी देती है, वैसे ही आपका बिखरा हुआ दिल भी प्यार और उम्मीद बांटने के काबिल है। तो मेरे प्यारे बनारसियों, अपने उन घावों को छुपाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी कहानी है। उठिए, उस टूटे हुए क्रेयॉन को उठाइए और अपनी जिंदगी के कोरे पन्ने पर एक नई खूबसूरत तस्वीर बनाना शुरू कीजिए। याद रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत कैनवास है और आप उसके आर्टिस्ट हैं। रंगों के टूटने से तस्वीरें फीकी नहीं पड़ा करती। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी हर कमी को अपनी ताकत बनाइए। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी पूजा के साथ। आज दिन है शनिवार का और तारीख है 18 जुलाई। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है शहर बनारस में आज। वाराणसी के आर्यन दुबे ने 720 में से 710 अंक हासिल कर पूरे यूपी में नीट टॉप किया है। 99.99965% के साथ आर्यन की ऑल इंडिया रैंक 7 रही। अनुशासन और एकाग्रता के साथ पढ़ाई उनकी सफलता के दो मूल मंत्र रहे। वो पिछले 2 साल से नीट यूजी की तैयारी कर रहे थे। आर्यन ने बताया कि उन्हें मेडिकल कॉलेज में जाने की प्रेरणा बचपन से ही अपने परिवार से मिली। उनके दादाजी एक सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। आर्यन IIT BHU के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर

एवं संस्थान के पूर्व डीन डॉक्टर विकास कुमार दुबे के पुत्र हैं। उनकी सफलता पर रात से ही बधाइयों और शुभकामनाओं का तांता लगा है। तो बनारस, हमारे बनारस के इस लाल ने हमारे बनारस का नाम रोशन किया है, तो इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। अगली खबर ये है, बनारस की इंडियन रेलवे ने एक नए दौर में कदम रखा है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर चलने वाली इस ट्रेन की खासियत है कि ये न बिजली से और न ही डीजल से चल रही है। इसके संचालन के दौरान केवल पानी की भाप निकलेगी। इसी के साथ भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत दुनिया का पांचवा देश है जहां हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जिंद सोनीपत के बीच चलने वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है। ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। बनारस जगन्नाथ मेला संघ आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में नो एंट्री के समय बड़े वाहन किसी भी दशा में प्रवेश नहीं होंगे। उन्हें हाईवे और रिंग रोड पर ही सख्ती से रोका जाएगा। कॉलोनी समेत अन्य मार्गों से शहर के अंदर आने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा। साथ ही ऐसे मार्गों को चिन्हित किया जाएगा जहां से कोई वाहन प्रवेश करते हैं, वहीं वाहन शहर के अंदर आएंगे जिनके पास जारी होंगे। ADCP ट्रैफिक ने सभी यातायात निरीक्षक, उप निरीक्षक, दीवान और सिपाही को सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर भोर में 5 से रात 11 बजे तक नो एंट्री रहती है। रात में 11 से भोर में 5 बजे तक बड़े वाहनों के आने पर छूट रहती है। रात में निर्धारित समय तक ट्रक, डंपर, ट्रेलर समेत अन्य भारी माल वाहनों को शहर में आने की छूट रहती है। जरूरी सेवाओं के वाहनों को निर्धारित शर्तों पर प्रवेश की अनुमति रहती है। बनारस रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन शुक्रवार को इंद्रदेव ने भगवान के रथ का अभिषेक किया। दोपहर में जैसे ही दर्शन आरती पूर्ण हुई, आसमान में घने मेघ घिर आए। तप्त धरा और आतुर भक्तों को शीतलता प्रदान करने के लिए इंद्रदेव ने रिमझिम बारिश से प्रभु का रथ का अभिषेक किया। रथ पर बारिश की फुहारे पड़ते ही भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। चारों ओर जय जगन्नाथ और हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारे गूंजने लगे। झमाझम बरसते पानी में भींगते हुए भी श्रद्धालु टस से मस नहीं हुए और अपलक नयनों से भगवान के अलौकिक रूप को निहारते रहे। यह दृश्य ऐसा था मानो प्रकृति और परमात्मा एक दूसरे से साक्षात्कार कर रहे हों। शाम से रात्रि तक रुक रुक कर होती रही वर्षा में भी भक्तों की आस्था नहीं डिगी और भीगते हुए भक्तों ने सृष्टि के पालनकर्ता का दर्शन कर उनके दिव्य रथ का स्पर्श किया। बनारस काशी की प्राचीन जल विरासत को संरक्षित करने की दिशा में शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया गया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की CSR योजना के तहत 58 करोड़ की लागत से तालाबों, कुंडों और सामुदायिक कुओं के कायाकल्प एवं विकास के लिए रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। PFC अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक परमिंदर चोपड़ा और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल मौजूद रहे। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जालंधर में उद्घाटित 6 रटा वाराणसी एक्सप्रेस के नियमित संचालन का नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार देर शाम जारी कर दिया है। ट्रेन 19 जुलाई से नियमित रूप से यात्रियों की सेवा में समर्पित होगी। ट्रेन पंजाब के 6 रटा रेलवे स्टेशन से वाराणसी के लिए सप्ताह में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। 20 जुलाई को वाराणसी से 6 रटा के लिए ट्रेन अपनी पहली नियमित यात्रा करेगी। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज, और अब बात करते हैं इतिहास की। तो चलिए चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। ১৯৮০ में आज ही के दिन भारत में निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में भेजा गया। आज ही के दिन 1980 में टेलीविजन से पहला रंगीन प्रसारण मद्रास से किया गया। 1861 में आज ही के दिन भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1918 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ। 1927 में आज ही के दिन प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म हुआ और 1946 में भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से

साहित्य राजेश जोशी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ। 2011 में भारतीय शास्त्रीय गायक जगदीश प्रसाद का निधन हुआ। 2012 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना का निधन हुआ। 2022 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक और गजल गायक भूपिंदर सिंह का निधन आज ही के दिन हुआ। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की, और अब बात करते हैं आज के स्पेशल डे की। आज है 18 जुलाई और आज हम सेलिब्रेट करते हैं परफेक्ट फैमिली डे। जी हाँ, बनारस परिवार किसी भी व्यक्ति के लिए हिम्मत, शान और प्यार का प्रतीक होता है। हम सभी परिवार के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकते हैं, इसलिए परिवार के प्रति समय समय पर प्यार जाहिर करना बहुत जरूरी होता है। बनारस परिवार हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो माता पिता, पति पत्नी और बच्चे समेत कई रिश्तों से संबंधित होता है। परिवार की भूमिका इतनी अहम होती है कि वह व्यक्ति के विकास के साथ ही समाज के विकास में भी योगदान देती है। भारत जैसे देश में परिवार, रिश्ते, नातों का बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। जब आपका परिवार आपके साथ होता है तो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ समाज में रहने में सक्षम बन जाता है। सो बनारस, ढेर सारी बातें हो गई और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय हो गया है मेरे यहाँ से जाने का। तो बस एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, उसे याद रखिएगा कि खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम औरों में खुशियां बांट पाएंगे, उन्हें खुश कर पाएंगे, है ना। डू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी सैटरडे बनारस, गुड मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में ठीक 7:20।
2: भगवान से डरो, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण।

0: लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कर रही है काम। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान। अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेल के इतिहास में बड़ा कदम है।
1: भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन सहित पनकी धाम, विंध्याचल, फतेहपुर, शामली, मोदीनगर और धामपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से भारत के 2 सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को नई गति देने के साथ ही विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजनौर में 1,003 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजनौर की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें 100% रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।
2: आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा पहली बार हो रहा है। विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था। अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शामली के कैराना में 581 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शामली और कैराना के बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के सुरक्षा मॉडल, एक्सप्रेसवे की रफ्तार और गन्ने की मिठास से यह क्षेत्र देश दुनिया में चमक रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में बनने जा रहा है, जिससे 8,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा।
2: प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों 8,000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है।
0: मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में भी 868 करोड़ रुपए लागत की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में जिला प्रशासन तथा मेरठ और सहारनपुर मंडल के

0: पुलिस अधिकारियों के साथ आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें और पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री योगी ने सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा अफवाहों का समय पर प्रभावी खंडन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाए तथा सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम रहें। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग को यात्रा मार्ग गड्ढा मुक्त करने तथा साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ शिविरों में पेयजल, शौचालय, बिजली, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और सात्विक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने तथा डीजे की आवाज और कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से अरुण।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताजा 64 आमों की पहली खेप निर्यात को कल लखनऊ से रवाना किया गया। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक फ्लैग ऑफ समारोह में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 12 क्विंटल 64 आमों को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की पहुंच अब विदेशी बाजारों तक हो गई है।
2: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया के बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 26 पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बेटियां नए भारत में नारी शक्ति का प्रतीक बन रही हैं।
3: यह सुखद है कि हमारी बेटियां निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह नए भारत की नई तस्वीर जहां नारी शक्ति भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व का प्रतीक बन रही। मैं सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों और उनके टीचर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
0: प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में कल देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गोरखपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कर रही है काम। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान। अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो।

0: APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए सितार वादन। कलाकार हैं अंजलि शर्मा, राग है नट भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मंगला प्रसाद मिश्रा।

0: अभी आपने अंजलि शर्मा का सितार पर बजाया राग नट भैरव सुना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मंगला प्रसाद मिश्रा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले

0: रही है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान

0: प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है।

0: होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
0: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं ये कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's...
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम आज सुबह

0: 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
1: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मॉनसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्यूरेट 75 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री अंडर अमृत भारत स्कीम, ऑल्सो फ्लैग्स ऑफ 2 न्यू ट्रेन सर्विसेज। Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. redeveloped in the spirit

0: Bit of Virasat Bhi, Vikas Bhi. The stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian railways have undergone over the past few years.
1: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है आज ऐसे ही

0: second edition of the tournament, with the 1950 edition being the only exception. Meanwhile, Argentina and Spain will face each other in the finals of the FIFA World Cup at the New York, New Jersey Stadium tomorrow night. The match will begin at 12:30 a.m. Indian time. Hockey India will begin nationwide coaching and officiating education pathway workshops from today to strengthen hockey's development ecosystem across the country. Designed to deliver internationally recognized learning opportunities, these workshops will equip participants with the latest coaching methodologies, technical knowledge, and officiating standards. The initiative aims to enhance the knowledge and skill of coaches and technical officials while promoting structured hockey education across India. The India Meteorological Department has issued red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Sanjay. Prime Minister Narendra Modi's visit to Haryana and Punjab are prominently noticed on the front pages of all national dailies. On his visit to Jind in Haryana, the Statesman notes, PM launches India's first hydrogen train. Highlighting his visit to Punjab, the front page lead in the Tribune states, PM slams up over law and order, graft, attack on Akalis, signals solo poll run. The Times of India's front page lead quotes the Supreme Court as saying, Election Commission can delete doubtful voters, can't decide citizenship. The Hindustan Times carries a story on the Joint Parliamentary Committee reviewing the bill to automatically remove ministers, chief ministers and prime ministers arrested for over 30 days. The paper writes, Parliamentary panel on PM, CM's removal bill defers draft report. Drawing attention to possible plans to introduce plastic currency in India, the Times of India reports, in step towards plastic notes, RBI floats expression of interest for polymer substrates. And finally, the passing away of legendary cricketer Sir Garfield Sobers is widely noticed in the press. The Indian Express writes in its obituary, legendary all-rounder with many firsts. He didn't know how special he was. And with that, it's back to you, Sanjay.
0: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. PV Sindhu enters into final of Japan Open badminton tournament. And in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-दाखला अमित शाह आज मग़रिबी बंगाल में बीएसएफ की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजामात का जायजा लेंगे और तरक्याती इक़दामात का आगाज करेंगे। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की इंसानी हक़ूक़ से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेरे क़ब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश ज़ाहिर की है। उसने मुज़ाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है। टोक्यो में जापान बैडमिंटन ओपन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम पंजाब के शहर जालंधर से 20 रियासतों के 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS के तहत जदीद बनाया गया है। ये प्रोग्राम स्टेशनों को जदीद बनाए जाने के दुनिया के

0: उन्होंने कहा कि चार सतहों वाले इस रॉकेट को तेज रफ्तार से और मांग किए जाने पर सैयारों को खला में ले जाने की खिदमात फराहम करने के मकसद से तैयार किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि इस मिशन से मुल्क के नौजवानों की सलाहियत, अज़्म और कारोबारी जज्बे की अक्कासी होती है। साथ ही साथ इससे भारत के खलाई शोबे की असलाहत नुमाया होती हैं, जिनसे इख्तरा और कारोबारी जज्बे के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया है। एजेंसी ने मुजाहिरीन और हिफाजती दस्तों के अहलकारों की हलाकतों की तहकीकात के लिए कहा है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के हुकाम से जोर देकर कहा कि वो तहम्मुल से काम लें, बुनियादी हकूक की हिफाजत करें और महीने के अवाखिर में इलाकाई इंतखाबात से पहले तशद्दुद के जिन वाकयात की इत्तला दी गई है उनकी जवाबदेही कायम करें। जनाब टर्क ने अमन व सुकून बरकरार रखने की अपील की है क्योंकि खित्ते में कशीदगी का सिलसिला लगातार जारी है। हाई कमिश्नर ने सभी हलाकतों की फौरी, मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है जो बेचैनी के सबब वाक़ हुई हैं। इस दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हुकूमत हमेशा कहती रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख मरकज के ज़ेर इंतज़ाम सभी इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं।
1: मैं ये कहना चाहूँगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: गजा में आज एक तदफीन के दौरान हुए इसराइल के फिजाई हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और दीगर 22 जख्मी हो गए। नुसीरत पनागुजी कैंप में वाक़े अवदा अस्पताल ने हलाक होने वालों की तादाद की तस्दीक की है। इस हमले पर इसराइली फौज की जानिब से कोई फौरी तबसरा नहीं किया गया। इसराइल और हमास ग्रुप गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जंगबंदी समझौते पर राजी हुए थे जिसका मकसद 2 साल तवील जंग को रोकना था। इंतहाई शिद्दत की लड़ाई अब कम हो गई है, ताहम जंगबंदी के नफाज के बाद से गजा में कम अज कम 1,123 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते के नाकाम होने के बाद अमेरिकी फौजों ने कल लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान की फौजी सलाहियतों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी फौज के फिजाई हमलों की शुरुआत के कुछ ही देर बाद कल रात जुनूबी बंदरगाही शहरों बंदर अब्बास और सिरिक में कई धमाके सुने गए। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि उसके ड्रोन्स ने खित्ते में मौजूद अमरीकी मोर्चों के खिलाफ अपने ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर उर्दुन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज को निशाना बनाया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 16,700 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के 3 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से पुणे खित्ते में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, सफर के वक्त और ट्रैफिक में कमी आएगी, नीज सनती व इकतसादी तरक्की को फरोग हासिल होगा। इन प्रोजेक्टों पर डिजाइन, रकूम की फराहम, तामीरात, कामकाज और मुंतकली DFBOT की तर्ज पर अमल दरामद किया जाएगा जिन्हें 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमालय के ज़ैली मगरबी बंगाल इलाके और सिक्किम में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश और अलग अलग जगहों पर इंतहाई दर्जे की बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने साहली आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं की पेशगोई की है। इस दौरान आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में गर्मी और नमी का इम्कान है। मैक्सिको के जनूबी साहिल पर कल 7.4 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबॉर्न ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलजले के बाद किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम उन्होंने कहा कि हिफाजत इंतजाम कर लिए गए हैं। जंजबार के सदर और इनकलाबी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर हुसैन अली मोइनवी, जो भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर हैं, आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले सदर मोइनवी ने कल चेन्नई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 63वें तकसीम असनाद में मेहमान खसूस

0: के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि IIT मद्रास के पहले बैनुल अक्वामी कैंपस IIT मद्रास जंजीबार का कयाम तालीमी संगमील से कहीं ज्यादा की नुमाइंदगी करता है। मारूफ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु जापान ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी चीन की शेन यूफी को शिकस्त दी। सिंधु कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के दस्तबरदार होने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थीं। फीफा आलमी कप में आज रात मायामी स्टेडियम में यूरोपीय हरीफ फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मुकाम हासिल करने के लिए प्लेऑफ मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मुकाम के लिए प्लेऑफ मैच को आलमी कप के हिस्से के तौर पर साल 1934 में टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद से सिर्फ साल 1950 के एडिशन में ये मैच नहीं हो सका था। इस दौरान कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप का फाइनल मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। हॉकी इंडिया आज से मुल्क भर में मुल्कगीर सतह पर कोचिंग और इंतजामी उमूर के तौर तरीकों से मुतालिक वर्कशॉप का आगाज करेगा ताकि मुल्की सतह पर हॉकी के फरोग के लिए इको निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सके। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। फॉरेस्ट सर्विस के अफसरान महज जंगलात के मुंतजिम नहीं है बल्कि कुदरती वरसे के भी मुहाफिज हैं। इस बात का इजहार ख्याल सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात के दौरान किया। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है। सतीश गोलछा की जगह अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खबरों के मुताबिक वजारत दाखिला का हुक्म जारी होते ही उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, जबकि रोजनामा इनकलाब ने अमरीका और ईरान की तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले जारी रहने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में BSF की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अकवा मुतहदा की इंसानी हकूक से मुतक एजेंसी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज उठाई है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मधुरिमा।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें
5: 0542227658
6: 0542227658।
0: दोस्तों आप सभी को नमस्कार।

एक बेहद खूबसूरत ताजगी से भरी सुबह की राम राम। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं, आपके दोस्त और होस्ट सुषमा गुप्ता, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा। दोस्तों, कहते हैं ना, सुबह की शुरुआत अगर एक मीठी मुस्कान और कुछ सुरीले नगमों के साथ हो तो पूरा दिन एक खूबसूरत दिन में बदल जाता है। तो बस अपने हाथ में चाय का प्याला थाम लीजिए, क्योंकि अगले कुछ समय तक हम और आप डूबने वाले हैं सुरों के एक ऐसे समंदर में जहाँ यादें भी हैं, जज्बात भी हैं और अपनों का एहसास भी है। आज के इस सफ़र में जहाँ हम सुबह की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही भक्तिमय गीत से, वहीं ज़िंदगी के कुछ ऐसे रंग बिछुएंगे जो सीधे दिल को छू जाते हैं।

दोस्तों, बारिश के बाद सुबह की इस गुलाबी ठंडक और ताज़ी हवा में जब रेडियो पर सुर घुलते हैं तो समा कुछ और ही खूबसूरत हो जाता है। मधुरिमा के इस सफ़र में अब वक्त हो चला है उस एहसास को महसूस करने का जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, और ये दिन हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आता है।

श्रोताओं कहते हैं कि मिलन का सुख अपनी जगह है, लेकिन जुदाई का जो दर्द होता है वो इंसान को अंदर तक मांज देता है। जब कोई अपना हमसे, हमारे वतन से या हमारी गलियों से दूर हो जाता है, तो पीछे छूट जाती है सिर्फ एक लंबी प्रतीक्षा।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: दोस्तों, विदाई का पल आंखों में नमी जरूर लाता है, लेकिन जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ते रहना, हर हाल में मुस्कुराना। माना कि कल रात थोड़ी भारी थी, माना कि मुश्किलें थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन इस नई सुबह का सूरज आपके लिए, हमारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। हारना मना है दोस्तों, तो उठना है, मुस्कुराना है और पूरी शिद्दत के साथ कहना है कि जिंदगी, मैं तैयार हूँ।

दोस्तों, आज के मधुरिमा कार्यक्रम में हम जज्बातों के हर रंग को छू रहे हैं, और जब बात अपनों से दूर रहने की हो तो परदेश में बैठे उस इंसान से पूछिए कि उसे घर की मिट्टी, माँ के हाथ की रोटी और गांव की गलियों की कितनी याद आती है। एक दौर था जब चिट्ठियां आती थीं तो पूरा गांव रो पड़ता था। आज भले ही मोबाइल का जमाना हो, पर वो अपनों से दूर होने की टीस आज भी वही है।

0: दोस्तों, जिस समय जिस तरीके से समय के आने का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है, जैसे कि कोई तारीख को लेकर हम अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि अगली 20 तारीख आने का हमें बहुत इंतज़ार है, लेकिन यही 20 तारीख आकर जब चली जाएगी, या हम आज की तारीख 18 की बात करते हैं और इस पल की बात करते हैं जिस पल यानी मधुरिमा कार्यक्रम के आने के पहले हम इसका इंतज़ार कर रहे थे बहुत ही बेसब्री से, लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमें इस कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया। तो समय की कीमत को समझते हुए समय का सदुपयोग करना हमें सीखना ही होगा। जो लोग सीख लेते हैं वो जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। तो इसी गीत के साथ मधुरिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने को हैं। बात सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फरुखाबाद और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फरुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
1: प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बीते दिनों फरुखाबाद जनपद का एक दिवसीय दौरा किया। अपने दौरे में उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जनप्रतिनिधियों के साथ कानून व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के संदर्भ में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं तय समय में पूरी कर ली जाएं, किसी भी तरह की समस्या होने पर उन्हें अवगत कराया जाए, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनसेवा लोक सेवा में 24 घंटे निस्वार्थ से काम करती है,
2: विकास के लिए संकल्पित होकर के काम करती है और कभी भी कोई खेत का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, तो अक्सर तैयारी महसूस नहीं करती, क्योंकि हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता सब लोग मिलकर के अपने अपने जात का निर्वहन करते हैं।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने जनपद में संचालित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज एवं कोल्ड स्टोरेज में फायर सेफ्टी के इंतजाम चेक करने हेतु सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फायर सेफ्टी अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही ये भी बताया कि नोटिस देकर इन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नक्शे भी चेक कराए जाएं।
3: जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें फायर टेंडर की मूवमेंट की जगह नहीं है या फिर जो मानक के विपरीत बनाए गए हैं, उनका पूरा सघन अभियान चला के सर्वे कर लें और जो बिल्कुल मानक के विपरीत है उनको नोटिस देके पहले पूछा जाए, नक्शा पास कराया गया है नहीं, तत्पश्चात कार्रवाई की जाए।
1: पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा लोगों के चोरी एवं खोए हुए 125 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वापस किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फतेहगढ़ जनपद पुलिस एवं एसओजी की

0: संयुक्त प्रयास से मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वितरित किए गए। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। वहीं अपने चोरी एवं खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फर्रुखाबाद जनपद में 1 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2026 का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने किया। जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। जन सहभागिता से अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया गया। संचारी रोगों के प्रभावी रोकथाम, स्वच्छ वातावरण के निर्माण तथा जन सामान्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यह अभियान जनपद में 31 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग का दायित्व नहीं है, बल्कि सभी विभागों और प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही संभव है। अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान निर्धारित कार्य योजना के अनुसार सभी गतिविधियों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने दायित्व का गंभीरता से निर्वहन करे ताकि अभियान का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं अन्य संचारी रोगों के बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामुदायिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक स्तर पर एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग स्रोत निस्तारण, साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति एवं 100% कन्विक्शन के तहत जनपद पुलिस ने 6 माह में 304 लोगों को दिलाई सजा। पुलिस ने 212 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर शासन के जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों को सजा दिलाई। पुलिस ने 6 मुकदमों में 16 अपराधियों को कराया आजीवन कारावास। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों पर हुई कार्रवाई पर मीडिया को जानकारी दी।
1: जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जनपद फतेहगढ़ में लगभग पिछले 6 महीने में 212 मुकदमों को चिन्हित किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा प्रभावी पहली करते हुए लगभग 304 अभियुक्तों को सजा कराई गई है। इनमें से 9 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 16 लोगों को आजीवन कारावास भी हुआ है।
2: फर्रुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का।
3: फतेहपुर जनपद में जल संरक्षण एवं तालाब के पुनर्जीवन के उद्देश्य संचालित मिशन 300 अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने विकासखंड एराया के ग्राम पंचायत बुधवन में तालाब के पुनर्जीवन एवं खुदाई कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाब की और अधिक गहराई तक खुदाई कराई जाए, जिससे अधिक मात्रा में वर्षा जल का संचयन हो सके। उन्होंने तालाब के चारों ओर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कराने के भी निर्देश दिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जल स्रोतों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता हो सके। उन्होंने कहा कि जनपद ने मिशन 300 अभियान के अंतर्गत 240 तालाबों पर पुनर्जीवन एवं खुदाई कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन कार्यों के जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत सरकार के केस धरन अभियान के उद्देश्यों को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित होने पर भूजल स्तर में सुधार होगा और किसानों सहित आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के 2 अन्य तालाबों के पुनर्जीवन की मांग किया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाबों में यदि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण मुक्त कराते हुए पुनर्जीवित की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाए।
4: तालाबों को चिन्हांकन कराते हुए इसके ऊपर खुदाई का काम शुरू कर दिया जाए। वन में मिशन 300 के अंतर्गत चिन्हित तालाब को देखा गया, पूरी टीम के साथ तहसील की टीम थी, तो यहां पर खुदाई शुरू हो गई है और इसको और डीप करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा 12वीं वाहिनी पीएसी परिसर में आयोजित 30वीं अंतरवाहिनी पीएसी पूर्वी जोन वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के अंतर्गत वॉलीबॉल एवं सेपक टकरा खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी जोन की विभिन्न वाहिनियों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त कर उन्हें खेल भावना, अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं शारीरिक दक्षता, मानसिक मजबूती तथा टीम भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा पुलिस बल के कर्मियों को सदैव स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सहायक होती है। फतेहपुर में एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर आयोजित वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ राज्य मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग कृष्णा पासवान, नोडल अधिकारी डॉक्टर सारिका मोहन और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के वैदिक रीति रिवाज से पूजन कर हरिशंकरी के पौधरोपित कर किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक 12वीं वाहिनी पीएसी के शय नायक ने पौधरोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधरोपण अवश्य करना चाहिए और पौधरोपण के साथ साथ इसकी देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पौधों की महत्ता सबने देखी है, इसलिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। फतेहपुर जनपद में चल रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर मच्छर जनित संक्रमित और मौसमी बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दे रही है। इस अभियान में टीबी कुष्ठ रोग के मरीजों की भी खोज की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है

0: कि देश को 2026 में टीबी मुक्त किया जाए। यही वजह है कि इसके उन्मूलन के लिए इसे विभिन्न अभियानों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जहां भी कमी मिलेगी तो जिम्मेदारों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत 7 से 8 विभाग जुड़े हुए हैं।
1: जो दस्तक अभियान है इसमें घर घर जाके टीम जाएंगी और वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे टीबी है और हमारा कुष्ठ रोग है और कोई बुखार के मरीज हैं, दस्त के मरीज हैं, इन सारे मरीजों की खोज की जाएगी। ऑनलाइन लिस्ट करके इन्हें उस इकाई पर संदर्भित किया जाएगा जहाँ पे इनका उपचार होता है। इसमें टीबी भी शामिल है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि टीबी को हमें 2026 तक भारत को टीबी मुक्त करना है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। साथियों, स्वच्छता ही सेवा ध्येय वाक्य अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं और अपना जीवन अमूल्य बनाएं।

स्वच्छ होगा जब वातावरण, तभी होगा नव जागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है, स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार जयंती देवी, पुत्री रामभरत, पत्नी राजकुमार बिंद, जिनकी उम्र है 27 वर्ष, 16 मई 2026 से लापता हैं, और अपने साथ ये एक इनके साथ एक बच्ची भी है जिसकी उम्र 7 वर्ष होगी, और ये 16 मई 2026 को सुबह 9 बजे से घर से गायब हुई। इनकी उम्र है 27 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, और इनके साथ में जो बच्ची है वो सांवले रंग की है, और बच्ची ने नीले रंग का जींस और पीले रंग का टॉप पहन रखा है। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नज़दीकी थाना या थाना कमिश्नरेट, थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अमरनाथ सिंह, पुत्र श्याम नारायण सिंह, निवासी सराय नंदन खोजवा, थाना भेलूपुर, जनपद वाराणसी, 7 मई 2026 से सराय नंदन खोजवा से लापता हैं। इनके विषय

में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 60 वर्ष, ऊंचाई 172 सेंटीमीटर, दोहरा बदन, रंग सांवला, चेहरा गोल, आंखें सामान्य काली हैं और बाल हल्के घुंघराले हैं, बायां हाथ मुड़ा हुआ है। घटना के समय इन्होंने नीले रंग का हाफ टी शर्ट और काले रंग का हाफ लोअर पहन रखा था। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नजदीकी थाना या थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं।

थाना लोहता जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अंकित कुमार मिश्रा पुत्र दिनेश कुमार मिश्रा निवासी भरथरा लोहता वाराणसी 4 मई 2026 से भरथरा लोहता वाराणसी से लापता हुए हैं। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 30 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य, आंखें सामान्य, बाल भी सामान्य हैं। घटना के समय इन्होंने पैंट शर्ट पहन रखा था। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नज़दीकी थाना या थाना लोहता जनपद वाराणसी को सूचित कर सकते हैं।

थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी से ही प्राप्त सूचना के अनुसार अंतिमा राजभर पुत्री वीरेंद्र राजभर निवासिनी छितौनी थाना लोहता वाराणसी, जिनकी उम्र है 19 वर्ष 11 मई 2026 से लापता हैं। इनकी लंबाई है 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा है। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नजदीकी थाना या थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। सूचना संपन्न हुई।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लूंगी,
1: तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लूंगी। तू झूठ बोले तो मैं

0: तुझे गले से लगाऊंगी, प्यार कर लूंगी, तुझे गले से लगाऊंगी, प्यार कर लूंगी,
1: प्यार कर
0: लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी चार मिसरे हाजिर कर रही हूँ।
1: इरशाद,
0: गैर समझ कर छोड़ा है,
1: वाह वाह
2: क्या नाज़ है,
0: अपना कहाँ से लाओगे।
2: वाह।

और जिसके लहजे में वफा रूह से खुशबू आए, जिसके लहजे में वफा रूह से खुशबू आए, ऐसे हम

0: करें
1: बहुत उम्दा भाई, बहुत
0: तो चाहिए कि पासे जबां भी रखा करें मजबूरियों पा।
1: बहुत खूब।
0: और उमर भाई बतौर खास ये शेर
1: इरशाद,
0: हो फिक्र

ये पचरा आपने दीपक सिंह और साथियों की स्वर में सुना, और इसी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी वाराणसी से अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।

दोस्तों, आप सभी को 3 दिवसीय भगवान जगन्नाथ के मेला की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान जगन्नाथ की पूजा मुख्य रूप से उनके सबसे प्रसिद्ध मंदिर पुरी ओडिशा में की जाती है। ये पूजा जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। ये आयोजन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा के रूप में निकलती है, जिसमें श्रद्धालु प्रभु के भगवान के दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त करने की कामना करते हैं। आषाढ़ मास में निकलने वाली रथ यात्रा के इस दौरान प्रभु अपनी मौसी से मिलने जाते हैं, जैसा कि हम सभी

लोक मान्यता के अनुसार ऐसा जानते हैं। और ये भी माना जाता है कि रथ खींचने वाले को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

ये गीत आपने जोधा अकबर फिल्म से सुना, आवाज़ थी बेला शिंदे की, और इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और इसे सुरों में पिरोया था ए आर रहमान ने। और कार्यक्रम झंकार का अगला गीत सुनिए, गुमराह फिल्म से आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति तलत अजीज़ की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: कसूर फिल्म से ये गीत आपने सुना, अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में। फिल्म का नाम कसूर था और गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले कुछ संदेश सुनते हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब

भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

ये गीत आपने सुना खिलाड़ी 786 फिल्म से आवाज़ जावेद अली और साथियों की थी। और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता फिल्म से आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की है। शब्द रचना देव कोहली की है, संगीत निर्देशन आनंद राज आनंद का है।

कार्यक्रम झंकार में ये गीत आपने सुना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता फिल्म से आवाज उदित नारायण अलका याग्निक की थी। और अगला गीत सुनिए, मैं हूं ना फिल्म से ये गीत, जिसे आवाज दी है सोनू निगम ने और शब्द रचना जावेद अख्तर की, संगीत निर्देशन अनु मलिक का है।

मैं हूं ना, इस फिल्म से ये गीत आपने सुना सोनू निगम की आवाज में। अगला गीत सुनिए लागा चुंदरी में, दाग फिल्म से आवाज सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और स्वानंद किरकिरे की है। शब्द रचना स्वानंद किरकिरे की है, संगीत निर्देशन शांतनु मोहित।

लागा चुनरी में दाग फिल्म से ये गीत आपने सुना सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और स्वानंद किरकिरे की आवाज में। और अगला गीत सुनिए प्रेम रतन धन पायो फिल्म से पलक मुछाल और साथियों की आवाज में। ये गीत भूल है इरशाद कामिल के, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का है।

प्रेम रतन धन पायो फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज पलक मुछाल और साथियों की थी। अगला गीत सुनिए राजनीति फिल्म से, आवाज आदेश श्रीवास्तव की। गीतकार समीर, संगीतकार आदेश श्रीवास्तव।

आदेश श्रीवास्तव की आवाज़ में ये गीत आपने सुना राजनीति फिल्म से। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार अब संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: Akashvani at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: क्या हुआ?
1: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
2: एक्सक्यूज मी,
3: हाँ बोलना।
0: क्यूट है ना?
1: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
1: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से।
5: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
6: आपने डायल किया है।

0: है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052, और अब बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण सर से।
1: और हमारी जिनसे बात हो रही है, ये तो हुआ कि पिछले 20-21 वर्षों में इस सिग्नेचर ट्यून ने कई लोगों को ये स्टाइल जो है वो बता दी है।
0: और मुझे तो मेरे दिमाग में 10 साल से घुसा हुआ है।
1: वही कह रहे हैं, जब आपके बचपन से आप ये सुनते आए हैं।
0: बिल्कुल, और अभी तक बदला नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि बदले भी ना कभी।
1: बहुत सारी चीजें जानते हैं, तमाम आग्रहों के बावजूद मेरी भी नजर में इसलिए नहीं बदलना चाहिए कि बहुत सी इस तरह की जो कला संगीत की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो विरासत और संस्कृति का हिस्सा हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, और ये संगीत जब आप आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, जब आप
1: जी
0: कहते हैं इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो पोलिन फरमाइश का।
1: हाँ।

0: आए हैं।
1: बिल्कुल, और अभी तक बदला नहीं है, मैं यही कहता हूँ कि बदले भी ना।
0: बहुत सारी चीजें जानते हैं, तमाम आग्रहों के बावजूद मेरी भी नजर में इसलिए नहीं बदलना चाहिए कि बहुत सी इस तरह की जो कला संगीत की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो विरासत और संस्कृति का हिस्सा हो जाती हैं।
1: बिल्कुल, और ये संगीत जब आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, जब आप कहते हैं इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो पोलिन फरमाइश का।
0: हाँ, ये तो है कि जैसा हमने कहा लोगों ने जज्ब कर लिया है, तो आप अपना परिचय दे दें। वाराणसी के हमारे श्रोता हैं जो हर इन दिनों एक दो हफ्ते से आपका लगातार फोन लग जा रहा है,
1: ये
0: शुरुआत में
1: दूसरा हफ्ता है
0: जिसमें आप अव्वल और बिस्मिल्ला आपसे हो रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोटवा बनारस से मोसिम अंतारी बात कर रहा हूँ।
0: हाँ मोसिम जी, स्वागत है आपका। और अब किन चीजों की तैयारियां हो रही हैं जब मौसम ठीक ठाक हो गया है?
1: तैयारियां तो अब बरसात का थोड़ा सा मौसम आने लगा
0: तो लुत्फ ले रहे हैं।
1: लुत्फ ले रहे हैं और थोड़ा से घूमने का विचार बना रहे हैं।
0: हाँ, इस बार लगता है कि आप अजमेर चले ही जाएंगे।
1: इस साल मैंने अजमेर में गया था, उर्स पे गया था,
0: जी
1: अभी फिलहाल दिल्ली जाने का इरादा है।
0: हाँ, तो ये काम के सिलसिले में या घूमने के सिलसिले में?
1: नहीं, घूमने फिरने जाना है, दिल्ली भी जाना है और मुंबई भी जाना है।
0: अच्छा, यानी वहाँ सितारों की नगरी मुंबई भी आप जाने वाले हैं?
1: जी जी, हाजी अली है वहाँ पे भी, मेरा मतलब मन है काफी साल से।
0: हाँ हाँ, हाजी अली की दरगाह है वहाँ पर, समंदर के बिल्कुल किनारे से ही लगी हुई दरगाह है।
1: बीच समुंदर की दरगाह के
0: जी जी
1: बीच में है।
0: और दूर दराज से लोग वहाँ आते जाते हैं, बड़ा देखने की ठीक ठाक जाने की जगह है,
1: बहुत ही अच्छा जगह है। काफी साल वीडियो में देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं वहाँ जा देखूँ।
0: बिल्कुल, और अब बता दें कि किस गाने की फरमाइश आज है मौसिम जी आपकी?
1: गाने तो मैंने याद करके नहीं रखा था, तो गुना फिल्म का गाना सुना दीजिए। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा
0: कौन हो तुम। तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं जी।
1: आरग्यम प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा मुझे
0: जी जी,
1: हफ्ते का। और जितने भी कार्यक्रम आप ला रहे हैं अरुण सर, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।
0: तो ये
1: व्हाट्सएप प्रोग्राम भी अच्छा लगा और बहुत ही दूर दूर के श्रोता जुड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, अब थोड़ी सी ये हो जाती है कि नाम इतने ज्यादा आ जाते हैं कि दिक्कत तो हो रही है, लेकिन अब चल रहा है, जब तक अच्छी बात है जितने लोगों का नाम शामिल हो जाए।
1: श्रोताओं से यही कहेंगे कि एक बार सिर्फ नाम डाले और इंतजार करें, आपका नाम शामिल हो जाएगा।
0: जी, हम तो यही कहते हैं और हमारे प्रोग्राम में तो कम से कम ऐसा ही होता है। और अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में ये गीत है, आनंद राज आनंद का संगीत, और प्रवीण भारद्वाज ने गीत के बोल लिखे हैं। सुनते हैं गीत आपकी फरमाइश पर।
1: दो श्रोताओं को याद कर लें
0: जी, बताएं।
1: मेरे दोस्त हैं सरताज अंसारी, सद्दाम अंसारी, शकील अहमद अंसारी, रजानगर से।
0: आइए सुनते हैं गीत आपकी पसंद का, फिल्म है गुनाह। नमस्कार, शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: हाँ सर,
0: नाम थोड़ा सही रिकॉर्ड हो जाए, नाम थोड़ा सही से बोलिए।
1: सर अविनाश बोल रहे हैं सर, सासाराम से।
0: हाँ सासाराम से अविनाश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? तो बारिश अच्छी खासी हो रही होगी जी, क्या अच्छा लगा आपको बताइए।
1: बारिश नहीं हो रहा है।
0: अच्छा, कम तो यहाँ भी है, लेकिन जैसे बीच बीच में बारिश एक दो रोज हो करके तो बारिश बनारस में हो जा रही है।
1: इधर उतना अच्छा नहीं हो।
0: तो आप क्या कह रहे थे?
1: सर बोल रहे थे कि मतलब बारिश अच्छी नहीं हो रही। और सर आपको सर धन्यवाद सर, आप उर्दू और हिंदी का आप दोनों मतलब रेडियो से ही बचा हुआ है, आपसे अच्छा लगता है।
0: अब ये तो जैसे ना हिंदुस्तानी जबान है, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब इतने अरसे से कहते आ रहे हैं, तो वो कुछ लोगों के अंदर आ गई है, जज्ब हो गई है किताबों को पढ़ते सुनते सुनते हुए।
1: हाँ सर, आप लोगों के अंदर अच्छा है, मतलब टीवी मीडिया तो सर खत्म हो गया, मतलब उर्दू को ऐसे लोग बोलते हैं जैसे मतलब ये है टाइप से लोग बोलते हैं।
0: देखिए, भाषा पे, संगीत पे, कला माध्यम पे, ये तो इंसानियत की चीजें हैं और इसमें हर किसी के प्रति सद्भावना ही रहती है। कम्युनिकेशन
1: उर्दू
0: का या
1: सर
0: फिर
1: भारत
0: आर्ट
1: की
0: का
1: पहली
0: कोई भी
1: लैंग्वेज।
0: जो जरिया है, वो कभी किसी एक तबके से उसका आप ताल्लुक नहीं जोड़ सकते।
1: हाँ सर, उर्दू तो सर भारत की पैदाइश है, मतलब यहीं पे हुआ, सुनने में
0: जी
1: भी अच्छा
0: जी
1: लगता, हम लोग भी नहीं बोल
0: जिन
1: पाते।
0: प्रेमचंद को हम लोग कहते हैं कि हिंदी के कथा सम्राट हैं, उन्होंने भी शुरुआत में उर्दू में ही लिखना शुरू किया। राजेंद्र सिंह बेदी और के एस नारंग, बहुत सारे साहित्यकार हुए, कई शायर हुए, जिन्हें हम फिराक

0: गोरखपुरी कहते हैं, उनका भी नाम रघुपति सहाय ही है।
1: हाँ सर वही बोल रहे थे, मतलब अच्छा लगता है सुन के आपका सर उर्दू पढ़ने से बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग जो बोलते हैं
0: जी
1: चीज़ें
0: जी
1: सर समझ आए तो हम लोग देखते भी नहीं सब।
0: जी बहुत शुक्रिया। अब बता दें आप ठीक ठाक हैं, और कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: फिल्म है प्यार हुआ बदनाम, उसका गाना है पहली नजर में तुम्हें दिल दिया है, तीसरे से नाजुक
0: पहली नजर में
1: हमारी
0: तुम्हें दिल रुबाना,
1: कुमार सानू की आवाज है,
0: गीत
1: प्यार
0: आपको
1: हुआ
0: सुनवा रहे
1: बदनाम।
0: हैं अविनाश जी, आपकी पसंद का। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश सर,
0: स्वागत।
1: गुलाब चंद मिश्रा ग्राम पचोकर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर।
0: जी स्वागत है गुलाब जी, आपका फोन लग जाता है, खुशी हमें भी होती है। आज थोड़ी सी सीटी की आवाज आपके इलाके से आ रही है।
1: हाँ सर, आप दूर चल रहे हैं थोड़ा सा, बात करें आप ठीक है?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आप ये पचोखर गांव का नाम है आपके?
1: जी हम टोटली ब्लाइंड हैं सर।
0: जी जी, और आप हमारे प्रोग्राम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। कार्यक्रम आपको आत्मबल और मनोबल आपका बनाए रखते होंगे ज्ञान विज्ञान के जानकारियों के साथ ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे लगते हैं कार्यक्रम। और अच्छा, BRM जो है सोचे रेडियो खरीदे, लेकिन क्या है कि हम कभी कभी होता है कि मैच वगैरह जो होता है वो DRM पे प्रसारित किया जाएगा, मीडियम पे नहीं किया जाएगा।
0: वैसे आपका शौक इतना गहरा है ये जानकर हमें अच्छा लगता है कि आप DRM सेट भी खरीदने की बात कर रहे हैं और तैयार हैं उसके लिए। ये है कि उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और कहीं के भी कोई भी केंद्र आप वहां डिजिटली ट्यून करके सुन सकते हैं DRM पर। तो हो सकता आने वाले वक्त में DRM रेडियो सेट सहज सुलभ हों और सबकी पहुंच में हों, ये इसकी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं।
1: बहुत
0: कौन सा गीत आज सुनवा दें? जी
1: अच्छा लगता है और हम 1980 से सुन रहे हैं आपका कार्यक्रम।
0: जी जी जी,
1: शास्त्री जी थे, उसके बाद वीणा कालिया थी।
0: जी जी, वीणा जी तो जब हम आए तो वीणा जी थी यहाँ पर,
1: और एक किशोर, क्या नाम था,
0: किशोर जी। हाँ हाँ हाँ,
1: और जब कृषि जगत वगैरह होता है तो उसमें जया प्रसाद शास्त्री वगैरह अपना जो है कार्यक्रम प्रस्तुत कर देते।
0: जी जी, और अच्छे लोकगीत के कलाकार भी थे। तो एक दौर था जब, जैसा हम बार बार कहते हैं कि एक समय था रेडियो में बड़े लोग शौक जुनून और शिद्दत से आते थे, किसी विधा में माहिर होते थे।
1: अच्छा एक सुझाव देना चाहते हैं, हो जाएगा
0: जी, बताइए।
1: जिस तरह से आप हालो फरमाइश करते थे, उस तरह से लोग गीत का भी फोन इन कार्यक्रम रखिए, क्योंकि दिल्ली से जो आपका संस्कार ग्राम संस्कार कार्यक्रम होता है तो उसमें प्रति शनिवार और रविवार को फोन इन कार्यक्रम होता है, मतलब उसमें लोग फोन।
0: अब क्या है ना कि देखिए, जब हम लोग इस तरह, या कई बार उस भोजपुरी फिल्मी गीतों के बारे में भी लोगों ने कहा है, फिर मेल आते हैं, जो पॉपुलर पेशेवर कलाकार हैं एल्बम वाले, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है नहीं। और बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं बोली वाले जो वो हम लोग प्रसारित भी नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग वो होती है जो हमारे यहाँ ऑडिशन कलाकार देते हैं और जिनकी रिकॉर्डिंग हम प्रसारित करते हैं। तो उन अगर ऐसा भविष्य में कोई प्रोग्राम हुआ भी तो फिर हमें वही करना होगा कि 2-4-10 कलाकारों के नाम बताने होंगे और उन्हीं से फरमाइशें लेनी होंगी, जैसा लोक रंग में होता है।
1: ये तो है सर।
0: हाँ,
1: तो कई बार हम दिल्ली से सुनते हैं ग्राम संसार कार्यक्रम आता है उनका।
0: जी जी,
1: उसमें हर शनिवार और रविवार, अच्छा नजीबाबाद से भी प्रसारित होता है ग्राम संसार, वो कृषि जैत कार्यक्रम, उसमें भी शनिवार को आपकी मतलब पोलिन कार्यक्रम लोकगीत का होता है, जिसमें लोग रागिनी प्रसन्न करते हैं।
0: हाँ, तो रागिनिया वहाँ, उधर रागिनी एक विधा है, उधर गाई जाती है।
1: हाँ, रागिनी लोग पसंद करते हैं।
0: जी जी,
1: तो हमें भी अच्छा लगता है, हम कभी कभी सुनते हैं वो शनिवार रविवार को। तो हम कभी कभी सुनते हैं 7 बजे से 7:15 से 7 बजे के बीच इनका कार्यक्रम होता है।
0: जी जी, आपकी सलाह हम लोगों ने नोट कर ली है और भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बनी तो जरूर उस पर गौर किया जाएगा। आज कौन सा गीत आपको सुनवाए?
1: हम फिल्म सुनना चाहते हैं लाज नाच की तरह, मीठी मीठी बोलिया कैसे है, बोले मोले राजा और कले करेजा तीवे जैसे हम कैसे।
0: अच्छा, ये भोजपुरी फिल्म है। आपने कहा लागी नाही छूटे राम, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं। चित्रगुप्त ने बहुत सारी शुरुआत की जो भोजपुरी फिल्में हुई, और बहुत मधुर संगीत उन्होंने दिया। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। जी बताएं।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। गाना सुनना है
0: जी। नाम क्या है आपका और कहाँ से आप बात कर रहे हैं?
1: प्रेम नारायण कुशवाहा बोल रहे हैं हम, निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश से।
0: प्रेम नारायण कुशवाहा जी, क्या करते हैं? निवाड़ी तो प्रचलित नाम है, बहुत बार सुना है हम लोगों ने।
1: हाँ, ये बुंदेलखंड में पड़ता है।
0: जी, और किन चीजों के लिए मशहूर है निवाड़ी आपका?
1: यही है कि पास में राम राजा ओरछा है, यहाँ पर भारी शाम की महीना में मेला लगता है।
0: जी जी ये तो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है जो आपने बताया, राम राजा ओरछा।
1: राम राजा ओरछा है, यहाँ पर
0: और
1: मेला
0: आप
1: लगता
0: क्या
1: है।
0: करते हैं वहां पर?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: जी जी और आपकी आवाज ही बिल्कुल लग रही है कि आप बुंदेलखंड से बोल रहे हैं, और वो तो बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है जैसा आपने भी बताया, और
1: हाँ,
0: वहां रहते हुए आप
1: जैसे
0: हमारे कार्यक्रमों से कैसे जुड़ जाते हैं?
1: हमें ये मिलती है, हमें वो किसान, तो इसे यहाँ तक पानी पाता है,
0: जी,
1: आलू हमारी जो मिल जाती है 20 मिनट के रहती है।
0: बहुत बढ़िया। और अब बताएं आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी?
1: दीवाना फिल्म का गाना सुना लीजिए। दीवाना फिल्म का गाना है कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करती है।
0: हाँ, ऐ सनम तुझसे प्यार करते हैं टाइप का गीत है।
1: हाँ, यही गाना है।
0: साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजें हैं, समीर के बोल,
1: हाँ
0: नदीम श्रवण का संगीत।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश
1: जी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: जी, हम धर्मवीर कश्यप सब्जी मंडी नंबर एक जिला बदायूं से बोल रहे हैं।
0: बदायूं से आप कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत स्वागत इस्तकबाल है आपका।
1: ओके धन्यवाद सर।
0: तो बताएं वहाँ पर क्या कर रहे हैं?
1: जी काम कर रहे हैं सब्जी मंडी में अभी।
0: और इन दिनों तो जैसे हमें लग रहा है बरसात की शुरुआत है, तो सब्जियों की आमद हो रही है पहले की तरह से?
1: नहीं उस तरह से नहीं, महंगाई कुछ ज्यादा है अभी।
0: आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, कैसे लगते हैं आपको?
1: सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: क्या कहने, और आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी?
1: पत्थर के सनम मूवी का टाइटल सॉन्ग।
0: पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, रफी साहब की आवाज। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो, फोन इन फरमाइश।
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। असगर अली जी बोल रहे हैं और हम आपका स्वागत कर रहे हैं। लगातार इस दूसरे तीसरे हफ्ते आपका फोन लग जा रहा है, खुशी की बात है।
1: और हमको खुशी हम ये है कि आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवे लगातार आ रहे
0: तो
1: हैं।
0: इससे कोई तकलीफ नहीं है ना?
1: हमको
0: हाँ।
1: हमको तकलीफ नहीं है, बहुत फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट खुशी है। क्या है, बहुत अच्छी तरह सुने। वो मैंने आंखों पर काला चश्मा इसलिए लगा रखा है कि रिबन का, ताकि मेरी नजर आंखों ना लग जाए।
0: बड़े काले चश्मे पे बहुत सारे गाने हैं।
1: नहीं, सुने सुने सुने, वो पतंगी स्वेटर, बाल की स्टाइल, काला चश्मा मैंने अपने इसलिए लगा रखा है, रिबन गोविंद रिबन, ताकि आंखों मेरी नजर ना लग जाए। याद आ गया
0: ये
1: होगा।
0: ऐसे अगर दिल से तारीफ की जाए और उसमें कोई वो न हो कि कोई गलत भावना है तो नजर हमारे ख्याल से नहीं लगती है। और ये तो जैसे थोड़ी सी अपने अपने मानने वाली बातें भी हैं। ठीक है, तो असगर जी आज बताइए कौन सा गीत आपको सुनना है आज।
1: नहीं, आज का बात ये, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है।
0: जी
1: खास तौर से एक मिनट,
0: अच्छा, अगर आप खराब भी कहेंगे तो वो प्रसारित होगा, ऐसा नहीं है।
1: नहीं, खराब हम कर दे रहे, वो मत करे वो, क्योंकि जो स्पीड में आप पढ़ते हैं ना, तो
0: नहीं, अगर वो
1: नाम
0: स्पीड में ना पढ़ा जाए तो फिर जो 500 नाम पढ़े जाते हैं वो 100 हो जाएंगे। और फिर सारे श्रोता, जैसे आपको शिकायत होती है तो फिर 100-100 शिकायतें हो जाएंगी अगर उनके नाम शामिल नहीं होंगे तो।
1: पहले सुनिए तो,
0: जी
1: क्या आपका पकड़ना कि एक आदमी ने 125 कॉल किया, एक आदमी ने 22 कॉल किया, और जो बासी बासी 3 बार 4 बार लगातार, वो
0: बहुत
1: सब
0: से लोग
1: इतना
0: हैं, वो
1: दिमाग
0: हर
1: आपको
0: हर
1: अलर्ट
0: दो
1: में
0: मिनट
1: लेकर
0: में
1: इतना
0: लोग
1: जल्दी
0: मैसेज
1: पकड़ लेते
0: करते
1: हैं,
0: हैं। हाँ।
1: इतना जल्दी पकड़ लेते हैं। और आप कंधे पर जब बहुत सवाल है बिहार का कॉलेज का, उसके लिए आपको हमने तो किसी को गोल्ड मेडल दिया है, और आप इंशाल्लाह कंचन मेडल दें।
0: बहुत शुक्रिया।
1: रियली रियली रियली कंचन मेडल, कंचन जानते हैं ना क्या है वो?
0: क्या है?
1: निमल है,
0: नहीं,
1: दुनिया का सबसे कॉस्टली मेडल जो है टंगस्टन है,
0: अच्छा, हाँ,
1: और वो मेडल वो है जो पुराने जमाने के बल्ब में जो फिलामेंट लगता था,
0: टंगस्टन का फिलामेंट होता था जो हल्का
1: वही वही वही
0: हल्का
1: वही वही
0: झिलमिल
1: वो
0: जैसा
1: सबसे
0: हिलता
1: कॉस्टली
0: रहता
1: मेडल है,
0: था।
1: वही मेडल आपको दूंगा।
0: अच्छा, वाह, इनायत। अब बता
1: बहुत
0: दें कौन
1: अच्छा
0: सा गाना हम
1: सवाल है,
0: आपको
1: बहुत
0: सुनवाएं।
1: अच्छे से सवाल है। अब मैं गाना सुनना शुरू, रेडियो सुनना शुरू, पसंद

0: कौन सा गीत सुनाएं असगर जी?
1: आप बताइए, आप सुनाएं। हम फौजी इस देश की धड़कन है,
0: गीत आपको सुनवा रहे हैं हम फौजी इस देश की धड़कन है। बहुत शुक्रिया असगर जी,
1: बहुत शुक्रिया,
0: शुक्रिया, नमस्कार जी, नमस्कार।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन फरमाइश।
0: जी स्वागत है, नमस्कार। इमरती ग्राम बरठी पोस्ट सकलडीहा चंदौली से बोल रही हैं। जी जी कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद आपका फोन लगा है।
1: हाँ, बहुत दिनों बाद कॉल लगा है। आज मैं 50 से ट्राई कर रही थी, अचानक से लग गया।
0: जी जी वही है कि आज तो हालांकि ठीक ठाक है, 52 पर भी बातें हमारी श्रोताओं से हो रही हैं। कभी कभी ये नंबर अगर ठीक नहीं रहता तो हम लोग 50 पर भी बातें करते हैं।
1: तो हम 52 पे ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था, तो फिर हम 50 पे ट्राई करेंगे।
0: बिल्कुल समझदार हैं आप, और रेडियो के प्रोग्राम सुनते सुनते भी समझदारी में विकास होता है, क्योंकि हम लोग बड़ी जानकारी
1: हम
0: की
1: लोग
0: बातें रेडियो में बताते
1: रेडियो सुन करके ही बड़े हुए हैं और सीखे में भी
0: हैं।
1: है रेडियो से ही।
0: जी
1: एक बात है कि जो हमारी आवाज है हम ही को सुनाई दे रही है सर।
0: हाँ, लेकिन अब जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो ठीक ठाक सुनाई देगी। ऐसे आप मोबाइल से ही बात कर रही हैं, कोई स्पीकर या ऐसा कुछ ईयरफोन नहीं लगा है ना?
1: नहीं, बस सीधे बात कर रही
0: कभी
1: हूँ।
0: कभी नेटवर्क ऐसा होता है, खासतौर से इस मौसम में बारिश वगैरह के समय में नेटवर्क में थोड़ी सी समस्या होती होगी। कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और आप स्टूडियो में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
0: और आप भी हमारे प्रोग्राम में आती हैं तो हमें अच्छा लगता है।
1: जी, हमारे
0: और
1: श्यामा जी से भी बात हो गई है पर्सनल।
0: जी, तो आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: ये गाना तो सुनना है गोपी फिल्म का, जो दुख हमारे जीवन रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कभी दुख है तो कभी सुख है,
0: सुख के
1: आई
0: सब
1: के नहीं
0: साथी
1: कभी।
0: दुख में न कोई, गाना ये है उसमें।
1: जी,
0: तो
1: और
0: जी
1: पिक्चर में गाना है ना,

0: हाँ देखिए कितना अच्छा गीत ये लिखा है, फिलॉसफी है इसमें
1: बहुत उनका सुकून मिलता है। और
0: जी। पहले के समय में बहुत से ऐसे गीत हुए जो

0: जिंदगी को आप सुनिए तो बड़ा बल मिलता है, मायने बदल जाते हैं। और एक दर्शन है जिस तरह से बहुत सारी किताबों को और महत्वपूर्ण लोगों को पढ़ते हुए जो ज्ञान हमें मिलता है, बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो उसी गंभीरता को अपने भीतर समेटे हुए हैं।
1: जी, और बहुत अच्छा फील लगता है गीत सुनने में और बहुत मन को सुकून भी मिलता है।
0: हाँ, लेकिन आज आपको सुनना है फिल्म गोपी का गीत, सुख के सब साथी।
1: दुख के सब साथी, दुख में न सोए, नाम दूजा कोई।
0: ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मृति, आपकी फरमाइश पर।
1: जी, हमारे दोस्त हैं अशोक कुमार प्रदास की, करोता लोता वाराणसी से, शिवपुर से अजय जी है, और रामपुर से शबनम अब्बासी जी।
0: बिल्कुल, गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है गोपी, मोहम्मद रफी की आवाज। नमस्कार, शुक्रिया।

श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। 2221052 नंबर के अलावा आप 2221050 पर भी प्रयास कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे की थी। कार्यक्रम का शेष भाग कल दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच प्रसारित होगा।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। कहकशां कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आबिदा परवीन की गाई रचनाएं। पहले सुनिए अमीर खुसरो की रचना।

अमीर खुसरो का कलाम अभी आप सुन रहे थे। कहकशां प्रोग्राम में आज फनकार हैं आबिदा परवीन। अब सुनिए एक गजल, शायर हैं फैज अहमद फैज।

फैज़ अहमद फैज़ का कलाम अभी आप सुन रहे थे, फनकार थी आबिदा परवीन। और अब प्रोग्राम के आखिर में पेश है बाबा बुल्ले शाह की रचना। आवाज आबिदा परवीन की।

0: महान सूफी संत बुल्ले शाह की रचना भी आप सुन रहे थे आबिदा परवीन की आवाज में। आज का कहकशा प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं संचिता गोस्वामी की गाई भक्ति रचनाएं। सबसे पहले मीराबाई की रचना।

मीराबाई का ये पद अभी आप सुन रहे थे संचिता गोस्वामी के स्वर में। अब सुनिए इन्हीं के स्वर में मलूक दास की रचना।

मलोकदास की भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे संचिता गोस्वामी के स्वर में। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त तो होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है अंजलि शर्मा का सितार वादन। राग है शुद्ध सारंग। तबले पर संगति की है मंगला प्रसाद मिश्र ने।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अंजलि शर्मा का सितार वादन। राग था शुद्ध सारंग, तबले पर संगति की मंगला प्रसाद मिश्र ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
3: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। PV सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल PV सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी।

0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहली सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक सूचना के अनुसार नासरीन जहां, पति का नाम नियाज अहमद, ये अमरपुर बटलोहिया जैतपुरा वाराणसी की निवासी हैं और 3 मई 2026 की सुबह 10:30 से अपने घर से लापता हैं। नासरीन जहां की आयु है 25 वर्ष, का 4 फीट 10 इंच, रंग गोरा, इकहरा शरीर, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था पीले रंग का सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। सुहानी राजभर, पिता का नाम शिवनाथ राजभर, ये डिहुआ मडुआडी वाराणसी की निवासी हैं और 11 मई 2026 को दिन में 11 बजे से अपने घर से लापता हैं। सुहानी राजभर की आयु 19 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, इकहरा शरीर, चेहरा लंबा है, आंखें और बाल काले हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था आसमानी रंग का सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। चांदनी कुमारी, पिता का नाम लाल बहादुर, ये चंदुआ छित्तूपुर सिगरा वाराणसी की निवासी हैं और 9 मई 2026 की सुबह 9 बजे से अपने घर से लापता हैं। चांदनी कुमारी की आयु 19 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा, शरीर सामान्य, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था पीले रंग की कुर्ती और ग्रे प्लाजो। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। इसमें आप देवव्रत मिश्र का सितार वादन सुनेंगे। शाम 5:10 पर पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम में आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा श्री आर माधवन पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात में 9:30 पर अंजुमन कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत और गजलें सुनवाई जाएंगी। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता। हिंदी वार्ता कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। इसमें देवी प्रसाद तिवारी की वार्ता होगी हिंदी साहित्य में पावस के विविध रंग। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आज लोक भाषा कवि गोष्ठी में प्रतिभागी रचनाकार होंगे मिथिलेश गामरी, ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव और दिनेश सिंह यादव। लोकगीत के कलाकार होंगे दीपक सिंह और साथी। दीपक सिंह और साथियों के गए कुछ लोकगीत आप 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 पर आज के आकर्षण है आज की बात यूथ जंक्शन फोन इन कार्यक्रम। यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। नन्ही दुनिया कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। 2:30 पर कार्यक्रम आप सुनेंगे गीतांजलि। 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में चर्चा और गीत संगीत के अलावा डॉक्टर रुचि सिंह से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत होगी महिलाओं में PCOS की समस्या और चिकित्सा के उपाय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में एक बज

0: कर 10 मिनट पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।
1: इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर, अमरोहा और संभल के दौरे पर हैं। प्रोग्राम के मुताबिक वजीर आला सबसे पहले बुलंदशहर पहुंचे, जहां रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर खंडवाया में मुनक्किद एक प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि जब तक लोग गुलामाना जहनियत रखते हैं, कोई मुल्क, कोई मुआशरा, कोई फर्द तरक्की नहीं कर सकता। अपनी इकदार और नजरियात पर डटे रहने से ही कोई मुल्क या मुआशरा तरक्की कर सकता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने खिताब में कहा कि यही वजह है कि वजीर नरेंद्र मोदी ने तमाम अफराद से गुलामाना जहनियत से आजाद होकर अफवाज में शामिल होने की अपील की है। वजीर आला ने कहा,
2: रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में जो छात्र यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उन छात्रों की जिससे यह अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है जो अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत है। सर्वे रज्जू भैया प्रख्यात वैज्ञानिक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, 1994 से सन 2000 तक सर्वे रज्जू भैया ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंग चालक के रूप में, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चीफ के रूप में पूरे देश और दुनिया के लाखों स्वयं सेवकों को नेतृत्व दिया।
1: यहां से वजीर आला नुमाइश मैदान पहुंचे, जहां 574 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 57 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। जनाब योगी ने मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तीफादा कुनिंदगान को चेक, चाबी, थर्मल प्रिंटर और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। वो वहां एक जलसयाम से भी खिताब करेंगे। बुलंदशहर के बाद वजीर आला अमरोहा जाएंगे, जहां वो गजरौला में श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में 207 करोड़ रुपए से ज्यादा के 43 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब के दौरान वजीर आला मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वालों में चेक, चाबियां, लैपटॉप और सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे। वो वहां भी एक जलसयाम से खिताब करेंगे। अमरोहा के दौरे के बाद वजीर आला संभल पहुंचेंगे, जहां वो सीएम इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर के करीब मुनक्किद एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान वजीर आला योगी 569 करोड़ रुपए के 66 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वो मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वो यहां एक जलसयाम से भी खिताब करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में मेरठ और सहारनपुर डिवीजन के जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान के साथ आने वाले श्रावण महीने की कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें और पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री योगी ने सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा अफवाहों का समय पर प्रभावी खंडन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाए तथा सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम रहें। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग को यात्रा मार्ग गड्ढा मुक्त करने तथा साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ शिविरों में पेयजल, शौचालय, बिजली, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और सात्विक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने तथा डीजे की आवाज और कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से अरुण।
1: हिंदुस्तान बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे के तहत उत्तर प्रदेश से बरतानिया को ताज़ा चौसा आम की पहली बरामदात खेप कल लखनऊ से रवाना की गई। बागबानी और ज़रई बरामदात के रियासती वजीर दिनेश प्रताप सिंह ने फ्लैग ऑफ तकरीब में खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 12 क्विंटल चौसा आम शामिल है, जो बरतानिया के लिए मकसूद है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों को अब बैरूनी मंडियों तक रसाई हासिल है।
3: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें और
4: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया के बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
1: पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, ये 13 अगस्त तक जारी रहेगा।

0: अग्नि या कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनी लोगन के नमस्ते, अलाजो तोहरो के नमस्ते हो।
1: नमस्ते लाली दीदी, या साथे में देखा अपन कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनी लोगन के हमारे नमस्ते।
0: काल तो देखली खूब मेला घूमत रहलू हो, माने 3 दिन से मेला चलत है ना, तो अमन तो घूमे से पीछे ना आयो, चाहे दौ के तनो बरस दे।
1: एकदम दीदी, कहे पीछे रही, देखा सब को ही घूमे चाहत है मेला, आ साथे में देखा दीदी, भगवान भी तो इतना अच्छा मौसम कैले हैं कि मेला घूमे का मजा ही दुगना हो जाता।
0: ई देखा ऐसा समय ये होला जब जगन्नाथ जी का यात्रा निकले ले ना, तब ओ घड़ी दौ बरसी देवेलन, माने कि दौ भी खुश होलन, प्रसन्न होलन और अपन आशीर्वाद रूपी वर्षा से सबके तृप्त कर देवेलन।
1: एकदम सही कह दो दीदी, जगन्नाथ भगवान का सबके ऊपर आशीर्वाद और कृपा बनल रहे, यही सब सबके प्रति हमार भावना हो।
0: लेकिन देखा पानी बरसेला तो बड़ा नीक लगेला, लेकिन एहर ओहर जब गढ़ा में चाहे इकट्ठा होला कहीं चाहे कुछ होला, तो ओके भाई भाई जमीनी पे होता तब तो जमीनी के भीतर चल जाता, लेकिन छते पे होता चाहे घरे में बालकनी में है अंगना में है कहीं होता इकट्ठा, अगर उमन जब मच्छर तनी तनी पनफे लगेलन तो ई बहुत दिक्कत करेला, तो भाई एके न बचा के रखे। जब हमन जल संरक्षण के बात करी ला ना, तो बहनी लोगन ही ना सोचे कि और कुल जल के बचाए के रखे।
1: नहीं दीदी, देखा जब छती में पानी इकट्ठा होता तो वहाँ पे ऐसा इंतजाम कर दे कि वो पाइप के जरिए जमीन के अंदर जाए, मतलब जमीन वो पानी के सोखे, तब वो जल संरक्षण करे। मच्छर पैदा हुई तो बीमारी का कारण बनी ना।
0: बिल्कुल, और जब दौ इतना घाम करत रहलन ना, तो देखा दूर दूर ले कहीं कहीं ले तो पानी का इतना समस्या हो जात रहला कि बहनी लोगन ढोए के ले आवत।
1: एकदम दीदी, जगह जगह सुने के मिलत रहल कि देखा पानी नहीं आवत हो, 2 दिन से पानी नहीं आयल, पानी का दिक्कत हो, तो कहीं कहीं तो देखा कुआं भी सूखा पड़ जात रहल, पानी इतना नीचे चल जात रहल कि लोग के पानी निकाले में बहुत दिक्कत आवत रहल। और देखा ये सब का कारण भी तो मनई खुद हैं, जब पानी उनके मिला ला तो वो ओकर बर्बादी शुरू कर देवलन, और जब न मिली तो बेचैन हुई कि कहाँ से पानी ले आई।
0: बिल्कुल सही बात कहत हो लाजो, जब एकर सीमित स्रोत है तो वही हिसाब से खर्चा करे के है।
1: एकदम
0: मान लो मानत है कि तोरे घरे बम्बा लगल है, नले में से पानी खूब आवत हो, लेकिन एकर मतलब ई नहीं है कि काम करबू तो बम्बा खोले के करबू। अरे पानी इकट्ठा कर ला बाल्टी में, मग्गा से निकाल निकाल करा, अब भाई कामे करे वाला पानी नहीं। हम तो कहते कि रसोईया में भी बनी लोगन काम करत है, दाल धोत है, सब्जी धोत है, चाहे चावल धोत है, तो ओकर पानी निकलत है तो इकट्ठा करके खेत में क्यारी में डाल दे, भाई उ जियान न हो ओकर फायदा भी मिले।
1: एकदम सही कह
0: रहे हो। एकरे साथे साथे जब हम देखी ला ना बहुत घरन में कि केहू के पिए बदे पानी दिहल जाला ना, तो वो आधा पीही आधा गिलासी में छोड़ दे, तो भाई इहो पानी का जियाने हो। भाई उतने पानी लाना जितना पिए के है, और ना ही पिए के है तो ढाक तोप के रख दा, फिर जब प्यास लगी तो के पी ली।
1: एकदम दीदी, और देखा जरूरत हो तो उतना ले जितना पिए के हो, और साथे में देखा दीदी जब तक आप लोग जल संरक्षण न करबू तो अपने भविष्य के सुरक्षित कैसे करबू, अपन जो आए वाला पीढ़ी हो उनके खातिर भी तो जल बचा के रखे के हो।
0: बिल्कुल सही बात कहत हो लाजो, और जब सुरक्षा का बात कैलू है, सुरक्षित रखे का बात कैलू है, तो ख्याल आवत है न कि ई जो अपन ननकन होवन भाई जी, अभी पैदा भयल हो न भाई दुनिया में आयल होवन, उन लोगन के चाहे साल भर का होवन 6 महीना का, इन लोगन के

0: संभार के रखे के हुला हो।
1: एकदम दीदी देखा, वो तो छोट है ना, उनके तो समझ नहीं है, वो तो अभी जन्म ले ले हैं। लेकिन देखा दीदी, उनके शरीर में मजबूती तब्बा आई जब वो मतलब स्वस्थ तब्बा रही जब उनका शरीर भीतर से मजबूत रही। तो वो मजबूती देखा टीका लगौले से आवला, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहला तब से टीका लगे शुरू हो जाला।
0: माने टीका कौन हो, टिकुली कहत हो कि टीका के हो और चीज के?
1: अरे नहीं दीदी, टीकाकरण जो अस्पताल में जाके लगवावन जाला, बहनी लोगन जाके अपने बच्चा लोगन के लगवावन, वो टीकाकरण का बात करत
0: माने
1: हैं।
0: हम हंसी करत ही हो, हम तो मानत है कि जो सुई लगेला ना जैसे उनका सुरक्षा होले, तो वो भाई जैसे कहलुआ ना कि जब गर्भ में रहलन तब वैसे लगेला मातारी लोगन के, उनके सुरक्षा बदे बच्चन के। लेकिन जब वो दुनिया में आ जाएलन ना, तो ओकरे बाद भी साल भर ले तो उनके जीवन रक्षक टीका जौन होला उस समय समय पर एक कारण नहीं मिलेला।
1: कारण जब आप अस्पताल में या सरकारी संस्थान पे कहीं पे भी जेबू टीका लगवाए तो देखा वहाँ पे कारण मिलला, या तो आप अपने आशा बहन लोगन जो आंगनबाड़ी कहीं उनके पास भी जेबू तो वो भी जानकारी दे दे वालिन। लेकिन कारण पे तो देखा सब तरह का जानकारी लिखल रहला कि कौने समय पे कौने महीना पे कौन सा टीका लगवाए के है। तो देखा बहनी लोगन जे भी एमए का लोग हैं वो लोगन अपन टीकाकरण जरूर करवाए, साथ में बच्चा लोगन का भी करवाए।
0: बिल्कुल करवावे के चाहिए, यही ना सोचे के चाहिए कि अरे हमार बच्चा पैदा भइल मोट कह तंदुरुस्त था तो ओके कौन जरूरत था उ स्वस्थ था, आ केहू सोचे कि हमार पतिल का बच्चा है तो वो कमजोर है, तो ए तरह से नहीं नापे के है।
1: नहीं
0: नापे के है अंदर से, जब ले डॉक्टर साहब जांच न करी है तब ले न बता पाई है कि बच्चा में कौने तरह का दिक्कत है, कौने तरह से वो स्वस्थ है कि ना है, ओकर वजन कितना है, ये कुल जांच भी होला अगर समय समय पर वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए।
1: एकदम दीदी, और देखा टीकाकरण का कोनो भी लगवाए का कोनो भी पैसा ना लगाला, इस सरकारी अस्पताल में आपके बिल्कुल मुफ्त में लग जाला। तो बहनी लोगन बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, कहें से कि लेकिन बच्चन जब आप शुरुआत में ही उनका देखभाल अच्छे से करबू तब आगे भविष्य में भी सुरक्षित रहिए स्वस्थ रहिए।
0: बिल्कुल सही कहलू है लाजो, तू तो इतना जानकारी का ज्ञान का बात बतावत हो, जागरूक करे का कोशिश करत हो, बहनी लोगन सुनत है जागरूक भी हुई है, देखा बतियावत है और भी हम लोगन बतकही कर। लेकिन अभी एक थे नीके का जो संदेश है ना यो सुन लिया जा, इहो जानकारी देवे
1: एकदम दीदी सुनवा दा।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं, इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
5: लाजो। हाँ दीदी। देखा सनेस तो हो गई। एकरे पहले जो हम लोग स्वास्थ्य के सुरक्षा का बात करते लड़कन बच्चन के, तो लड़कन बच्चन नहीं जोन घर का घर है, तीन लोगन भी हैं, उन लोगन का भी कुछ ऐसा समस्या होला जेके वो छिपावत रहे बतावे लिन नहीं केहू से, पता नहीं चलेला। लेकिन हम तो कहला ना कि कौन

0: कौनों भी स्वास्थ्य से जुड़ल समस्या हो ओके छुपावे के नहीं चाहिए।
1: एकदम दीदी,
0: तुरंते डॉक्टर से परामर्श लेवे के चाहिए।
1: एकदम दीदी, अरे देखा यही पेट के नीचे का बतकई बहने लोगन खातिर लेके आयल है कि महिलाओं में PCOS की समस्या और चिकित्सा के उपाय। तो यही पे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रुचि सिन्हा और उनसे बतियवल शिखा श्रीवास्तव बहनी, तो बहनी लोगन ये बतकई सुने।
0: श्रोता बहनी, आज हमारे साथ कार्यक्रम में आये हैं डॉक्टर रुचि सिन्हा जी। ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और पूर्व CMO रह चुकल हैं DHU वाराणसी में, और आज आप लोगन के संगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपन जानकारी साझा करी है, और विषय है PCOS। ऐसा समस्या है जोन 5 में से एक महिला के संगे जरूर रहेले। तो PCOS का है और इसे कैसे छुटकारा पावल जा सकेला, एकर इलाज कैसे कई जा सकेला, इस सब विषय पर जानकारी देवे बदे हम इनके आमंत्रित कर लेगी। तो डॉक्टर साहिबा, आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करे थे।
2: नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने, PCOS जो है ये बहुत प्रमुख समस्या के रूप में लड़कियों में, स्त्रियों में ये एक बनती जा रही है।
0: तो पहले डॉक्टर बहन ये बता दे कि ये PCOS होला का, बहनी लोगन ये जान ले।
2: बिल्कुल बिल्कुल, PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको हम लोग अपनी मेडिकल की भाषा में कहते हैं। इसका अर्थ मेनली होता है कि थोड़ा सा औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी उनको परेशानियां हो जाती हैं, जैसे कि लेट से मासिक आना और चेहरे पे दाने निकलना, चेहरों पे शरीर पे ज्यादा बाल उग जाना, जिसको हर्शुटिज्म कहते हैं मेडिकल भाषा में। और ये जो PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, मतलब अल्ट्रासाउंड में ओवरीज या अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाना।
0: अच्छा,
2: क्यों? ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि मुख्यतः जेनेटिक और बदलती जीवन शैली की वजह से होता है।
0: अच्छा, तो कम उम्र में भी ये हो सकेला?
2: हाँ, ये कम उम्र में भी होता है आजकल, बल्कि ये पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या जैसी उत्पन्न हो गई है, और स्पेशली भारत में इसके केसेस बहुत सारे बढ़ गए हैं, और इसलिए सारी महिलाओं को ये जो अवेयरनेस है ये बहुत जरूरी है इसके बारे में।
0: सही बात आप कहते हैं, और बहुत महिला लोगन तो शर्म के कारे डॉक्टर के लगे जाएलिन नहीं, या जाएलिन तब बता ना पावेलिन कि उनके तरह का समस्या हो जाता। अच्छा, PCOS के संगे संगे एक शब्द और सुने में आवेला, PCOD, तो दोनों में का अंतर है?
2: PCOS का मतलब ये होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, और दूसरा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। बहुत अंतर नहीं होता, ये एक ही तरह का है, क्योंकि सिर्फ ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही नहीं होता, बल्कि जब महिलाओं में ये पाया गया है कि उनके में अगर PCOS या PCOD के सिम्टम्स हैं, उनको दिक्कत है, तो आगे चल के उनके और भी चीजें, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में बोलते हैं, जिसमें कि मोटापा या डायबिटीज होता खतरा, ये सारी चीजें भी महिलाओं में बढ़ जाती हैं।
0: अच्छा, कौन से कारण से तब ये हो जाएगा?
2: जैसे मैंने बताया ना आपको, मुख्यतः यह जेनेटिक होता है, और जो आजकल की जीवन शैली है, खान पान है, वो सारा जो इतना बदलाव आया है, उसकी वजह से भी इसकी रोग में लोगों में बहुत बढ़ गया है।
0: अच्छा, आप तो जानते हैं कि भाई आजकल का जो जीवन शैली हो के बदलल नहीं जा सकेला, भाई अगर बहुत घरे तीन है, घरे का भी काम करते हैं, बहरे भी जाके काम करते हैं, तो अगर बहरे काम करते हैं तो उनके बहुत देर तक खड़ा भी रहे के पड़ी, बहुत देर तक बैठ के भी काम करे के पड़ी, कंप्यूटर पर चाहे मोबाइल पर चाहे लैपटॉप पर भी काम करे के हुई, और कबू कबू तो ऐसा स्थिति हो जाएला कि रात के देरी तक जगे के होला, देरी तक काम करे के होला, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन पर हो चाहे लैपटॉप पर हो, तो वो कैसे अपने जीवन शैली में बदलाव लिया?
2: बिल्कुल, बिल्कुल। कि बहुत सही प्रश्न किया आपने। एक्चुअली बहुत आधुनिक शैली में बहुत सारा तनाव हो गया है, बहुत सारा बिजी हम लोग का लाइफस्टाइल हो गया है, पर फिर भी कुछ बदलाव करके, कुछ चीजें अपना कर, जो पुराना खान पान था ना, जो कहते हैं दादी नानी के टाइम का, वो सबसे बेस्ट था, घर का खाना, ठीक है, और बाहर का खाना बंद कर देना, वसा युक्त खाना नहीं खाना, मैदे को अवॉइड करना, फास्ट फूड जो आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है उसको थोड़ा सा कम कर दें, इसके अलावा तनाव मुक्त रहे, थोड़ा योगा करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, जो कहा जाता है ना सवेरे सवेरे उठिए और थोड़ा टहल के फिर अपना काम शुरू करिए, बिल्कुल सही चीज है, और अपने वजन को नियंत्रित रखकर काफी हद तक हम लोग PCOS या

0: पीसीओडी की समस्या से बचा जा सकता है।
1: बहुत अच्छी बात आप बतावत हैं ना, और अगर श्रोता बहनी लोग सुनत हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि भाई समय तो सबके पास 24 घंटा ही है, लेकिन ओके व्यवस्थित करके आपन दिनचर्या के व्यवस्थित करके ई रोग से छुटकारा पा सके लिए। अच्छा आप अभी कहली ना कि मोटापा के चाहे वजन के नियंत्रित करके, तो का जे कर वजन बहुत कम हो के समस्या ना हो ले?
0: ज्यादातर मुख्यतः यह जो है ना, जो ज्यादा वजन की औरत होती हैं, जिनका बीएमआई बोला जाता है ना कि अपनी हाइट के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, तो अगर अपनी हाइट के हिसाब से उनका वजन ज्यादा है तो उनके में मुख्यतः पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या ज्यादा पाई जाती है। पर आजकल पतली दुबली महिलाओं में भी या लड़कियों में भी स्पेशली जो है, जो कम उम्र की युवतियां होती हैं, उनके में भी ये समस्या पाई जाती है। लेकिन उनके में भी जीवन शैली को नियंत्रित करके और खान पान को नियंत्रित करके इस समस्या को बहुत कम कर सकते हैं, और ज्यादा दिक्कत होने पर अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं।
1: अच्छा ये तरह का अगर कोनो महिला की समस्या हो जाता, अगर वो अविवाहित हैं तो क्या विवाह के बाद उनके कोनो समस्या ई बढ़ जाए ले, या फिर जैसे बंधत्व का समस्या आगे आ सके ले, अगर आ जाते इस तरह का समस्या तो कैसे कर इलाज कर?
0: बहुत बढ़िया प्रश्न किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं और बड़ी चिंतित भी रहती हैं कि अरे हमारा तो देखिए अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस आ गया है, अब हम क्या करें। तो इस बारे में दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहले तो जैसे कि जो बहुत कम उम्र की युवतियां हैं, 18 साल से कम, जैसे 14 साल, 15 साल या 16 साल की लड़कियां, अगर अल्ट्रासाउंड में उनकी आ रहा है कि उनकी अंडाशय या ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, उस तरह का आ रहा है, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है उसमें, आराम से रहे वो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो दिखाएं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री रोग से, और उसमें कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। वो ज्यादातर वो नॉर्मल फाइंडिंग होती है एक्चुअली, हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में बोले तो। लेकिन कुछ जो औरतें होती है स्पेशली 18 साल से ऊपर, उनके में ये पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या कभी कभी बांझपन का एक कारण हो सकती है, ठीक है। इसीलिए शुरुआत से ही अगर पता रहता है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर समस्या ज्यादा है तो छिपाए नहीं, उसको दिखाएं, बताएं। अगर दिक्कत है तो उसके लिए सामान्य दवाएं चलती हैं, अगर बच्चा नहीं हो रहा है या मासिक की अनियमितता है या मासिक लेट से आ रहा है या बाल है, जो भी दिक्कतें हैं इसकी वजह से, उनके लिए बहुत सिंपल दवाएं हैं जिससे कि बिल्कुल आराम हो जाता है और बिल्कुल अपना सामान्य जीवन वो जी सकती है और मातृत्व का सुख भी वो कर सकती है।
1: बहुत अच्छी आप जानकारी देते हैं। बहुत बहनी लोगन के ये भ्रम रहेला कि जो दवाई चले ले, जिसे आप कहली ना कि हार्मोनल असंतुलन के बैलेंस करे ना, नियंत्रित करे बदे दवाई चले ले, तो का जो हार्मोन का दवाई चले ले तो बहुत बहनी लोगन कहे लेन कि ओकर साइड इफेक्ट बहुत होला, तो ई सही बात है?
0: जिनकी 16 साल उम्र है, अल्ट्रासाउंड में आ गया, कोई कारण होगा, पेट में दर्द था या कुछ भी था, उसकी वजह से एक अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें पीसीओ आ गया कि भाई सिस्ट है छोटी छोटी ओवरी, और बहुत परेशान होती है और कई तरह की दवाइयां शुरू कर देती है, उनमें ऐसा कुछ नहीं करते। और दूसरा, उनके में हार्मोन्स हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि उनके में हार्मोन्स के साइड इफेक्ट हो सकते हैं
1: जी।
0: इसीलिए बिना किसी स्त्री रोग के सलाह के कोई भी दवा नहीं शुरू करिए, क्योंकि बहुत सिंपल दवाएं शुरू होती हैं और अगर जरूरत पड़ती है तभी हम लोग हार्मोनल वगैरह वगैरह देते हैं, अदरवाइज पहले कुछ जीवन शैली को अलग करके और थोड़ी सिंपल दवाओं को शुरू करके ही आराम हो सकता है।
1: डॉक्टर बहनी, बहुत बहनी लोगन की अगर सिस्ट का समस्या हो जाए ले तो वो लोगन जब जाए लेन डॉक्टर के पास तो वो बोले लेन कि ऑपरेशन करवावे के पड़ी, तो ये ऑपरेशन करवावे लेन भी फिर ओकरे बाद फिर सिस्ट बन जाएला, तो ये समस्या से उनके छुटकारा नहीं पड़ेला और साथे में शरीर का दुर्गति अलग से होला, तो एकरे बारे में सलाह दे।
0: बिल्कुल, क्योंकि सिस्ट ना, जो सिस्ट जो होती है ओवरी में अंडाशय में बहुत कॉमन होती है और कई बार ये नॉर्मल चीज होती है।
1: अच्छा,
0: जैसे कि औरतों का हर महीने, आप भी जानते होंगे, सभी जानते हैं कि औरतों का हर महीने अंडा बनता है, वही अंडा कभी कभी फूट नहीं पाता और थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट या सिंपल सिस्ट कहते हैं, उसमें कोई ऑपरेशन किसी तरह का बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, उसमें सिंपल दवाओं से आराम हो जाता है और ऑपरेशन बहुत कम ही कंडीशन में, जैसे कि कोई ट्यूमर है उसमें ओवरी में और कुछ दिक्कतें हैं उसी में करते हैं, सामान्यतः ये दवाओं से ही ठीक हो जाता है।
1: एक प्रश्न और हमारे मन में आवा था, सोचा कि पूछ लें आपसे, बहनी लोगन भी जानल चाहेलिन कि ई जोन सिस्ट होला एकर जोन दवाई चलेले कितना।

0: लंबा समय तक चलेला और का ये दवाई से पूरी तरह ठीक हो सकेला?
1: बिल्कुल बिल्कुल, दवा से ही ये ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि दवा से ही ठीक हो जाए, और ऑपरेशन कराने के पहले हमेशा किसी डॉक्टर की सलाह अच्छे से ले लीजिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ की। और इसमें सामान्यतः 2 से 3 महीने का एक कोर्स होता है दवा का, हॉर्मोन्स का, वो भी हम लोग सारे मरीज में नहीं, कुछ ही मरीजों में देते हैं, बाकी कुछ जो यंग पेशेंट्स हैं युवतियों में तो वो अपने आप ही कुछ सामान्यतः गोलियों से ठीक हो जाता है।
0: आप बतौलिन है कि ये जेनेटिक भी होला अनुवांशिक, तो अगर ये अनुवांशिक और पीसीओएस के स्थिति में अगर केहू महिला गर्भवती हो जाता तो गर्भावस्था के दौरान उनके कौने तरह का सावधानी रखे के चाहिए कि कोनो समस्या न हो?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, ये तो बड़ा कभी कभी क्योंकि पीसीओएस की वजह से जब प्रेगनेंसी भी होती है तो थोड़ी सी कुछ चीजें रिस्क होती है, जैसे कि कभी कभी महिला का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या कभी कभी उसको कुछ और दिक्कतें भी हो सकती है, तो हम लोग उसमें जब हमेशा जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिलाए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, ताकि जब भी ये कोई समस्या इस तरह की आएगी तो उसको तुरंत ही पता करके और उसका फिर निदान किया जा सकता है।
0: आपसे बात करत के बहुत अच्छा लगा था और इतना नीक नीक जानकारी आप बहनी लोगन के दे थे, लेकिन समय भी बहुत कम है। चलत चलत एक आखिरी प्रश्न आपसे और पूछल चाहब कि ये पीसीओएस जो समस्या है एकरे कारण का मानसिक तनाव का भी स्थिति उत्पन्न हो जाले या मानसिक रोग का भी कारण बन सकेला?
1: बिल्कुल, आजकल तो हर मानसिक रोग एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों में डिप्रेशन या भी बहुत कॉमन हो जाता है, और तनाव होगा तो पीसीओएस बढ़ेगा
0: जी,
1: और पीसीओएस जब होता है, जब लड़कियों का नहीं आता मासिक, लेट आता है, देर आता है, या अनचाहे बाल चेहरे पे किसी भी लड़की को आ जाएंगे तो ऑब्वियसली उसको अच्छा तो नहीं लगेगा और एक तरह का स्ट्रेस या तनाव वो बढ़ता जाता है। इसीलिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, जैसे मैंने कहा ना कि योगा करें, अच्छा खाना पीना खाएं, संतुलित भोजन लें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा अपनी हॉबी रखें कि भाई हम कुछ खेल रहे हैं या डांस कर रहे हैं, तो उस तरह से करेंगे तो ये तनाव भी निकलेगा और पीसीओएस की समस्या भी नहीं होगी, मानसिक कुछ परेशानियां भी नहीं आएंगी।
0: बहुत बढ़िया, और चलत चलत बहनी लोगन बते आपका संदेश दे?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगी, पहले तो अपनी जीवन शैली को अच्छा रखिए, संतुलित भोजन करिए, अपने पे भी महिला लोग ध्यान दें, और अच्छी एक्सरसाइज और थोड़ा अपने शरीर को नियंत्रित रखें।
0: बहुत अच्छा लगल आपसे बात करके डॉक्टर रुचि सिन्हा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आईलिन और पीसीओएस पर बनी लोगन के इतना महत्वपूर्ण जानकारी दे लिन, ये जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: देखा दीदी कितना निक डॉक्टर रुचि सिन्हा जी जानकारी दे ली ना कि महिलाओं में पीसीओएस की समस्या और चिकित्सा के उपाय। और देखा डॉक्टर बहनी बतैली ना कि कोनो भी तरह का अगर शरीर में रोग बीमारी लग जाता हो तो सबसे पहले ओकर अपने खान पान के संतुलित करें, क्योंकि कहें से कि कोनो भी बीमारी का शुरुआत आपके अनियमित खान पान से ही शुरू होला। और साथे में देखा बहनी लोगन की तो जरूर ध्यान देवे के चाहिए, कहें से कि वो लोगन अपने काम के चक्कर में अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पावलिन। देखा दीदी बात कही तो होगा, लेकिन अब बहनी लोगन के कौन अच्छा सा गीत गो नहीं सुनवा दा?
0: वही तो हम कहा थे कि तू भाई बतकही तो सुनवा दे लो, ध्यान दे तो, लेकिन गीत सुनवा पर ध्यान ना दे तो दला बरखा शुरू हो गई ना, तो बरखा का गीत बहनी लोगन भी सुनी आ तो हूँ सुना
2: एकदम दीदी।

0: निक रहल ना लागे
1: एकदम दीदी। देखा मौसम के हिसाब से ही तू बहनी लोगन के गीत सुनवैलू है। हां निक लगल है
0: बिल्कुल। अब मौसम के हिसाब से अगर खाए पिए वाला बात हो, सुरक्षा का बात हो, तो वो निक लगेला ना। ए घड़ी देखा ना जेकरे घरे में कुल तुलसी जी सुखाए गल रहले ना, जहां जहां बीज गिरला सब जगह नन नन नन नन तुलसी का पौधा निकलल जात है। आ उ तुलसी का पौधा बहनी लोगन अगर जगह जगह रोप दे, सहेज दे, बड़ होई तो कितना फायदा करी हो।
1: एकदम दीदी देखा ए मौसम में तो लोग मतलब संक्रामक वाला बीमारी बहुत तेजी से फैलाला। तो देखा इसमें अगर कोई के सर्दी हो जाता, खांसी हो जाता या बुखार हो जाता ना, तो मैं काढ़ा बनावा था तो तुलसी के पत्ता अगर डाल के ओके चूरा के पी लाना तो देखा तबियत एकदम ठीक हो जाला।
0: बिल्कुल, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे बनल रहेला, उनकर बढ़ेला और कोनो तरह का बीमारी जल्दी पजरे नहीं आवत।
1: एकदम दीदी। और देखा तुलसी का पत्ता अपने बाल और त्वचा के लिए भी बड़ा फायदेमंद होला। और साथ में तुलसी के पत्ता का सेवन कैले से देखा अपन जो पेट से संबंधित समस्या रारा पाचन से उनमें भी सुधार हो जाला।
0: अब बहुत बहनी लोगन कह ले ना कि आरी आरी घरे के तुलसी का पौधा अगर लाइन से लगा दा ना तो वहाँ मच्छरों नहीं होता।
1: अच्छा।
0: अब मच्छर का बात हो था ना तो देखा आजकल मच्छर से बचे बदे ना बहनी लोगन के बहुत ध्यान रखे के है भाई, अपने भी अलड़कन बच्चन के भी। फूल जौन फूल बाही का कपड़ा पहना के यहर उहर ले जाए, पैर में भी फूल पहन ले रहे, और कहीं पर ई कोशिश करें कि पानी न लगे, गंदगी न रहे भाई। बरसात का दिन सफाई ए घड़ी ज्यादा रखे
1: एकदम दीदी। बरसात का पानी तो कहीं पे इकट्ठा ना हो दे। और साथ में देखा रात के जब भी सूतत है तो मच्छरदानी जरूर लगाए।
0: मच्छरदानी लगौले रहे, देखा कौनो मच्छर का कौनो भरोसा नहीं कि कौने तरह का बीमारी फैलावेला। तो मच्छर से बचल भी बहुत जरूरी है, तो हर तरह से सावधानी रखें। सावधानी रखिए तो स्वास्थ्य उनका सुरक्षित रहे। हम लोगन के भी सावधानी रखे कि है कि भाई गाड़ी अगर बीचे में आके कहत कि चले का बेरा हो था तो चले के चाहिए। बहनी लोगन से कहल जाए नमस्ते।

ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अंगनैया। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:45 हुए हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में आज सुनिए दीपक सिंह और साथियों के गाए लोकगीत। पहले एक बारहमासा।

0: इस पूर्वी के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम में कलाकार थे दीपक सिंह और साथी। इन्हीं के गाए कुछ लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृष्ण जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा।
0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाए बीमारी भगाए, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम, वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, उसके बाद 2 बजे

0: भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
2: Congratulations in space for facilitating
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
2: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल

0: के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
1: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
2: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
2: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे

0: ने पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ है अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।

कुछ तो बात है तुझ में जो तुझे याद करने को जी चाहता है। आज मोहब्बत में हद से गुजर जाने को जी चाहता है। आज मैं आपको वो गाने सुनवाने वाली हूँ जिनको सुनकर हमें भी प्यार करने को जी चाहता है। जी हाँ, वो वाला लव जिसकी बात ही कुछ और थी, जिसमें सादगी थी, चंचलता थी। रेट्रो वाला लव, कुछ ऐसा ही प्यार आज मैं आपके सामने अपने प्लेलिस्ट गानों के जरिए फिर से लेकर के आई हूँ। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट पूजा, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। तो आइए शो की शुरुआत करती हूँ उस गाने से जिसमें पहली मुलाकात में ही पहला प्यार हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ अजनबी फिल्म से किशोर दा की आवाज में एक अजनबी हसीना से इस गाने की। चलिए आज थोड़ा रेट्रो प्यार में घुलते हैं और सुनते हैं ये गाना।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

प्यार एक ऐसी फीलिंग होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसीलिए दिल की बात को कहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है शायरी। शायरी दिल की जुबान होती है, और हमने भी सुना है कि मोहब्बत में इंसान शायर बन जाता है।

वैसे मैं आज आपको ये प्यार भरे गाने सुना रही हूँ क्योंकि ये जो महीना है ना, प्यार का महीना, इसके आते ही प्यार और सिर्फ प्यार ही हर तरफ हो जाता है। कहते हैं जब प्यार हो जाता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, तेज धूप में भी गर्मी नहीं लगती, बारिश की टिप टिप अच्छी लगती है, और भी बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है, जैसे कि इन जनाब को लगता है।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूजा। और आज हम रेट्रो वाला लव के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम रेट्रो वाला लव या उस जमाने के संगीत के बारे में बात करते हैं तो उसमें सिलसिला फिल्म का जिक्र तो होना ही है। रेखा जी, अमिताभ बच्चन, जया और संजीव कुमार, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ जया जी के लिए संजीव कुमार ने ये फिल्म साइन की थी? हुआ यूं था कि संजीव साहब ने पहले इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। इसका रीजन ये था कि वो अमिताभ जी के सामने छोटा किरदार कर रहे हैं, वो भी तीसरी बार शोले और त्रिशूल के बाद। लेकिन फिर यश चोपड़ा जी ने नरेशन किया इस फिल्म का और कहानी सुनते सुनते ये फिल्म एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जब संजीव कुमार, अमिताभ, रेखा और जया एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और अमिताभ जी डांस फ्लोर पर जाते हैं रेखा जी के साथ। जी हाँ, जया जी के साथ नहीं। तब संजीव जी ने कहा, जी हाँ, मैं ये फिल्म करूँगा, इस एक सीन के लिए करूँगा, जया जी का साथ निभाने के लिए मैं ये फिल्म करूँगा। एंड दैट इज हाउ सिलसिला ये फिल्म बनी। वैसे आप ये सोचें कि संजीव साहब और जया जी के बीच में कुछ था क्या, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली संजीव कुमार जी जया जी को अपनी बहन का दर्जा दिया करते थे। और जैसा कि सुनने में आया है कि इस फिल्म के बाद उन्होंने जया जी के अपोजिट कोई फिल्म नहीं की। सो चलिए सुनते हैं वो गाना जिसमें संजीव कुमार और जया जी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने बड़े पर्दे पर आग लगा दी थी। लता दीदी की आवाज में अनामिका फिल्म का ये गाना।

रेट्रो लव के कलेक्शन में सिलसिला फिल्म का गीत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि जिंदगी में हमें सिर्फ दो चीजों की दरकार है, जिंदगी में हमें सिर्फ दो चीजों की दरकार है, एक वक्त और दूसरा प्यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी का नहीं होता। सुनिए ख्वाब बन रही मोहब्बत के सिलसिलों की कहानी इस गीत की जुबानी।

0: श्रोताओं, आज का गीतांजलि कार्यक्रम बस यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट पूजा को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि, प्रस्तुति पूजा सिंह की थी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम, वेव्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, DTH, OTT वेव्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर शाम के 5 बजे हैं आरंभ होती है आज की हमारी सायंकालीन सभा। सभा के अंत में सुने नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: नन्हे मुन्ने साथियों, जय हिंद जय हिंद। ला दीदी,
1: जय हिंद नन्हे दोस्तों और जय हिंद कंचन।
0: कैसी हैं आप?
1: भाई हम तो अच्छे हैं। और रथ यात्रा का मेला भी शुरू हो गया है, तो बस किसी तरह से दौड़ते भागते मेला छोड़ के यहाँ चले आ रहे हैं बच्चों
0: लग
1: से
0: रहा
1: बात
0: है कि मेला घूम के आई है ना?
1: करने। अपने काशी में कोई भी इस तरीके का अनुष्ठान होता है, कोई मेला होता है, कोई सैर सपाटा होता है, तो भाई अच्छा तो लगता है। और इस मेले की सबसे

0: खास बात यह है ना कि ये उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर ये मेला लगता है, और उसी की तर्ज पे ये बनारस में भी लगाया जाता है।
1: बनारस का ये जो रथ यात्रा मेला है ये अत्यंत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लखा मेला भी कहा जाता है इसे। और ये जो मेला है इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर शहर में भ्रमण करते हैं, ऐसा कहा जाता है।
0: कहा जाता है कि जो भक्त हैं वो भगवान को प्रेम के साथ इतना ज्यादा स्नान कराते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं, और जब वो बीमार होकर जब वो स्वस्थ होकर के आते हैं तो भक्तों को सुख समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद देते हैं, और उनके स्वस्थ होने की खुशी में हम सभी लोग इस मेले का आयोजन करते हैं।
1: और नन्हे साथियों, आप भी इस मेले में तो जरूर गए होंगे, और जो हमारे नन्हे दोस्त नहीं भी जा पाए हैं वो भी जाएं और मेले का खूब आनंद उठाएं, क्योंकि मेले में उनके लिए तरह तरह के स्टॉल, खिलौने और भी बहुत कुछ, झूले, ये सारी चीजें भी लगी हुई हैं।
0: भाई मेला जाइए, घूमिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेले के चक्कर में कुछ आप ऐसी खुली हुई चीजें खा लें जो कि आपको बीमार कर जाए, क्योंकि वैसे भी बरसात का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में हमारा स्वास्थ्य बहुत जल्दी प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिएगा और साफ सफाई के साथ हर चीजों को छूइए मत, हर चीजों को खाइए मत, है? जो आपके लिए अच्छी हो, ढकी हो, बढ़िया हो, वही चीज आप खाइए, और पेरेंट्स के साथ में ही जाइए, अकेले जाने की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा।
1: खाने से याद आया, बनारस में तो रथ यात्रा मेले की सबसे प्रसिद्ध चीज बनारसी नान खटाई है ना।
0: रथ यात्रा का मेला लगता है और मैंने देखा है कि जो हम बनारस वाले हैं सबके घर घर में नान खटाई मिलती है, किसी के यहाँ भी जाइए आपको नाश्ते में नान खटाई जरूर मिलेगी।
1: तो बच्चों, आप भी नान खटाई का लुत्फ उठाइए और पूरी सावधानी के साथ मेला घूमिए, क्योंकि आप अगर सावधानी से मेला घूमेंगे ना तो मेले का आनंद भी उठा पाएंगे और अच्छे से अपने घर भी पहुंच पाएंगे, है ना दीदी।
0: अब बारी आती है हमारी रोचक दीदी की। रोचक दीदी तो भाई जानकारियों का पिटारा उनके पास भरा हुआ, नई नई जानकारी लेकर के आती है। तो कंचन, देखते हैं हमारी रोचक दीदी अपने पिटारे में से कौन सी जानकारी आज निकाल रही हैं।
2: बच्चों नमस्ते, आ गई हूँ मैं रोचक दीदी लेकर ढेर सारी रोचक जानकारियाँ आपके लिए। तो आज किस बारे में बात होगी? नदियाँ यानी रिवर्स। वैसे बच्चों, प्रकृति द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है हमारी धरती के लिए ये नदियाँ। पर्यावरण संरक्षण में नदियों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे देश भारत में कई नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ हैं। वैसे जो कुछ प्रमुख नदियाँ हैं उनमें शामिल है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी और कावेरी नदी। क्या आप जानते हैं हमारे देश का पंजाब राज्य 5 नदियों वाला राज्य है? यहाँ झेलम, व्यास, चिनाब, रावी और सतलुज नदी है। आपको बताएं, गंगा नदी हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। एक रोचक बात आपको बताते हैं, देश की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये दो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं, यानी उल्टी दिशा में। और चलते चलते एक जरूरी बात आपको बता दें, नदी शब्द जो है संस्कृत के नद्य शब्द से आया है और नदी को सरिता भी कहा जाता है। आज रोचक दीदी अपना पिटारा यहीं समेटेगी और अगले हफ्ते फिर कोई नई बात लेकर आएगी आपके लिए। बच्चों अब करते हैं बाय बाय।
1: दीदी, नन्हे साथियों ने तो रोचक दीदी की जानकारियों को सुना और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से सुना होगा और जरूरी लगी होगी तो उसे नोट भी किया होगा।
0: जानकारी तो हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे वो आपके शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो आपके देश से जुड़ी हो, आपके शहर से जुड़ी हो, या फिर आपके रीति रिवाज पर्व त्योहार से जुड़ी हुई जानकारी हो। भाई हमारी हर चीज में जानकारी हो। और दोस्तों, मेरा मानना ये है, असली शिक्षित वही होता है जो हर विषय के बारे में उसकी जानकारी समृद्ध हो। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई ही करते रह गए और आपके जो घरेलू रीति रिवाज है उनके बारे में आपकी जानकारी अधूरी है।
1: नन्ही दोस्तों, आप देखते होंगे ना कि घर में माता जी, पिताजी, ये लोग कोई भी पर्व त्योहार आते हैं तो उनकी तैयारियां कितने जोरों शोरों से करते हैं।

0: रक्षाबंधन आने वाला है, सावन शुरू होने वाला है, तो किस तरह से वो इनकी तैयारी करते हैं उसको भी अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल भाई, सावन जहाँ आता है ना, बहुत सारे त्योहार होते हैं। सावन का सोमवार अपने आप में अलग इसका महत्व है, और इसके साथ ही साथ इसी में आते हैं नागपंचमी का त्योहार आता है, रक्षाबंधन।

0: पंचमी का त्योहार आता है, रक्षाबंधन भी है, भाई बहनों का प्रेम का ये त्योहार है जहाँ राखी बांधते हैं। तो दोस्तों आप भी जानिए, त्योहार मनाइए, लेकिन आप इसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए कि आप रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे महत्व क्या है, नागपंचमी का क्या महत्व है और इसके पीछे मनाने का क्या कारण है। मुझे लगता है कि जो हमारे जितने भी त्योहार आज तक हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं, कहीं ना कहीं वो त्योहार हमारे साथ में उसका आध्यात्मिक के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक महत्व भी है, तो आप उसको तलाशिए।
1: और प्रकृति प्रेम से भी हमें जोड़ता है, क्योंकि सावन में हम हरियाली को देखते हैं, बारिश के मौसम का भी आनंद उठाते हैं।
0: आप अपनी इस प्रकृति को संरक्षित कीजिए और अपनी सभ्यता को बनाए रखिए।
1: तो दीदी, हमारे नन्हे साथियों को बताना भी तो है कि घड़ी दीदी हमसे कह रही हैं कि आज के लिए इतना ही।
0: बिल्कुल, और दोस्तों आप भी जाइए, रथ यात्रा मेले का खूब आनंद लीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

अभी नन्हे मुन्ने बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। आकाशवाणी का यह वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। मीडियम एफ 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पीपुल्स पद्म आन आकाशवाणी, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

बिल्कुल चलता रहेगा गाते गुनगुनाते का ये सफर, लेकिन पहले शुरुआत तो हो, बिल्कुल शुरुआत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही सफर का जो मजा है वो आना शुरू होता है। 5:11:40 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1। आज शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे 80s और 90s के गाने।

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

फिल्म आपके साथ का ये गीत। और साथियों, एक टाइम ऐसा था, दौर होता है हर किसी कलाकार का, एक अपना दौर होता है। ये समय वो था जब शब्बीर कुमार के गाने

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुने युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: बराबरी का सम्मान हो, हर दिल में प्रेम और विश्वास हो, ऐसी दुनिया का सपना लेकर चले हम सब एक नया सवेरा लेकर।
1: स्वागत है आप सभी का दोस्तों अपने पसंदीदा कार्यक्रम यौनवाणी में, जहां मैं हूं आपकी रेडियो साथी भूमि
0: और मैं दिव्या, आप सबको हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
5: 0542227658।
3: ओ
2: 0542227658।
3: लो अभी फोन लगाता हूँ।
2: 0542227658।
6: दोस्तों कहा जाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो लोगों को जोड़ता है, ना कि उन्हें बांटता है। ऐसे ही महान नेता थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ पूरी जिंदगी संघर्ष किया और पूरी दुनिया को प्रेम, शांति और समानता का संदेश दिया।
7: बिल्कुल, और हर साल 18 जुलाई को पूरे विश्व में डॉक्टर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के महान नेता, समाज सुधारक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नेल्सन मंडेला की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।
6: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2009 में इस दिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य लोगों को ये संदेश देना है कि हर व्यक्ति अपने छोटे छोटे अच्छे कार्यों से समाज और दुनिया को बेहतर बना सकता है। ये दिन हमें मानवता, समानता, शांति और सेवा की भावना को अपनाने की प्रेरणा देता है।
7: और दोस्तों डॉक्टर नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मेजो नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम नेल्सन रोली हलाला मंडेला था। बचपन से ही वे पढ़ाई में रुचि रखते थे और न्याय की भावना रखते थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील भी बने।
6: अपने देश में उस समय रंग भेद की नीति लागू थी। इस नीति के कारण अश्वेत लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। उन्हें अच्छे स्कूल, अस्पताल, नौकरी और मतदान जैसे अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। इस अन्याय के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष शुरू किया।
7: नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को समान अधिकार दिलाना बनाया। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के साथ मिलकर रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनके संघर्ष से सरकार डर गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लगभग 27 वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा था।
6: इतना लंबा समय जेल में बिताने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ना तो हिंसा का रास्ता चुना और ना ही अपने विचार बदले। वो हमेशा शांति, धैर्य और क्षमा की बात करते रहे। यही कारण है कि वो पूरी दुनिया के लिए साहस और धैर्य के प्रतीक बन गए।
7: और वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने और सभी लोगों को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए लगातार काम किया। वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ।
6: उसी वर्ष नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। दोस्तों राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि सभी लोगों को साथ लेकर

0: कर चलने का प्रयास किया। उन्होंने देश में शांति, मेल मिलाप और भाईचारे को बढ़ावा दिया। नेल्सन मंडेला का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें उन अपने सिद्धांतों और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, और उन्होंने ये साबित किया कि नफरत से नहीं बल्कि प्रेम, क्षमा और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उनके विचार आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस विचार से हमें शिक्षा का महत्व समझ में आता है और ये प्रेरणा मिलती है कि ज्ञान के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।
0: डॉक्टर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करना है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन लोगों से कम 67 मिनट समाज की सेवा करने का आग्रह करता है। और आपको ये बता दे दोस्तों कि ये 67 मिनट नेल्सन मंडेला के उन 67 वर्षों का प्रतीक है जो उन्होंने मानव अधिकारों और समाज की सेवा के लिए समर्पित किए।
1: इस दिन लोग गरीबों की सहायता करते हैं, पौधे लगाते हैं, रक्तदान करते हैं, अनाथालय और वृद्धाश्रम में जाकर लोगों की मदद करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाते हैं। इन छोटे छोटे कार्यों से समाज में बड़ा बदलाव आता है।
0: आज के युवाओं के लिए नेल्सन मंडेला का जीवन विशेष रूप से प्रेरणादायक है। युवा अगर ईमानदारी, मेहनत और सेवा की भावना को अपनाएं, तो वो अपने परिवार, समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मंडेला जी का जीवन हमें ये भी सिखाता है दोस्तों कि किसी भी प्रकार के भेदभाव, चाहे वो जाति का हो, धर्म, रंग या भाषा के आधार पर हो, उसका विरोध करना चाहिए और सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, और भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों में नेल्सन मंडेला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया और अपने संघर्ष में शांति का रास्ता चुना। इसी कारण भारत सरकार ने वर्ष 1990 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया। ये सम्मान उनके मानवता के प्रति महान योगदान का प्रतीक है।
0: आज पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला को एक ऐसा नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों के अधिकारों और सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन ये संदेश देता है कि एक व्यक्ति भी अपने अच्छे विचारों और कर्मों से पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। हमें उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में प्रेम, समानता, सेवा और मानवता के मूल्यों को अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि और आप ये जानते भी होंगे कि इस समय रथ यात्रा मेला चल रहा है। तो रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं होता है दोस्तों, बल्कि आस्था, सेवा, समानता और प्रेम का संदेश देने वाला महापर्व होता है। जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, तो ये हमें विनम्रता, एकता और मानवता का महत्व भी सिखाता है। और इसी विषय से जुड़े हमने अपने दोस्तों से कुछ बातचीत की थी यूथ जंक्शन के थ्रू, और हमारा विषय था रथ यात्रा, आस्था के साथ अनुशासन भी जरूरी। तो आइए जानते हैं कि हमारे दोस्तों ने क्या बताया और उनके फरमाइशी गीत भी सुनवाते हैं आपको। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका यूथ जंक्शन में। अपना नाम बताइए।
2: अंजलि अवस्थी।
0: अंजलि, आप क्या करती हैं?
2: मैं बीएससी कर रही हूँ, बीएचयू से।
0: अच्छा, तो अंजलि, आप ये तो जानती होंगी कि इस समय रथ यात्रा मेला चल रहा है,
2: जी।
0: तो आप मेले में घूमने गई थी?
2: अभी तक तो नहीं।
0: आप हर साल जाती हैं कि नहीं?
2: हाँ, कभी कभी।
0: अच्छा, तो आप क्या जानती हैं रथ यात्रा मेले के बारे में?
2: यही जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर पे वापस जाते हैं वो लोग, उस बात की खुशी मनाई जाती है। और ये भी कि वहाँ पे वो 7 दिनों तक विश्राम करते हैं, ये सब पौराणिक कथाओं के मुताबिक है।
0: अच्छा तो ये बताइए अंजलि कि कई श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने और बहुत ज्यादा भीड़ भी हो जाती है, तो आपके हिसाब आस्था के साथ अनुशासन भी जरूरी होता है,
2: जी
0: तो आप अनुशासन के लिए क्या कर सकती हैं, अनुशासन बनाए रखने के लिए?
2: पहली चीज

0: तो एक ही लोगों को समझना होगा कि अगर वो मंदिर जा रहे हैं, वो कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उन्हें सभ्यता के साथ पेश आना चाहिए, एक लाइन बना के बारी बारी से दर्शन करें। अब तो बैरिकेडिंग्स भी लग गई हैं लोगों को, ताकि कंट्रोल किया जा सके और वो कहीं गंदगी ना मचाएं। मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
1: ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और साथ में अगर कोई बच्चा है या बुजुर्ग है या कोई विकलांग व्यक्ति है, तो हम कोशिश करें कि उनकी मदद कर सकें अगर उनको मदद की जरूरत है तो।
0: जी, और धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसमें बहुत लोगों को चोट भी आती है। ये भी समझना चाहिए कि वहां पे औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें कहीं कोई चोट ना आए।
1: तो अंजलि, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करेंगे कि आप रथ यात्रा मेला जरूर घूमने जाएंगी इस साल भी।
0: जी, कोशिश करेंगे।
1: और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने यूथ जंक्शन में आपके फरमाइशी गीत सुनवाते हैं, तो आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
0: हम सुनना चाहते हैं ऐ दिल है मुश्किल।
1: ठीक है, हम आपकी पसंद का गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: स्वागत है आपका यूथ जंक्शन में. अपना नाम बताइए.
1: मेरा नाम सौरभ चौबे है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ.
0: ओके, सो सौरभ, अभी रथ यात्रा का मेला लगा हुआ है और मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि आपको रथ यात्रा मेले से जुड़ी बचपन की एक मेमोरी बतानी है तो आप क्या कहेंगे?
1: वैसे तो जगन्नाथ मेला का बहुत सारा मेमोरी है मेरा. सबसे खास मेमोरी ये है कि जब भी मेला लगता था मुझे एक्साइटमेंट इस बात का रहता था कि मुझे बस खिलौना लेने जाना है. मुझे वो बात अभी भी याद है.
0: तो आपके हिसाब से मेले की सबसे खास बात क्या है? झूला, खान पान, शॉपिंग या फिर जो वहाँ का आध्यात्मिक माहौल होता है, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: ये सबसे अच्छा लगता है वहाँ का आध्यात्मिक माहौल. बीते 3 दिन में ऐसा लगता है जैसे जगन्नाथ भगवान साक्षात धरती पे आए हैं और सबको दर्शन दे रहे हैं, ऐसा फील होता है वहाँ पे.
0: और अगर बचपन में मैं बात करूं मेले की, तो हम सब बहुत एक्साइटेड रहते थे मेला आने से पहले ही प्लानिंग करते थे कि क्या क्या करना है. तो आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते थे जब आप बच्चे थे?
1: मैं सेगमेंट था झूला झूलने के लिए और कुछ टॉय खरीदने के लिए जैसे गन.
0: इस साल अगर बनारस में रथ यात्रा मेले की माहौल की बात की जाए तो हर साल की तुलना में इस साल क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? आप अभी गए हैं रथ यात्रा मेला में?
1: हाँ मैं भी.

0: अभी कल ही गया था मैं रत्ना मेला में। तो जैसा मैं बताना चाहूँ तो पिछली बार क्या था कि प्रशासन उतना अच्छा था नहीं और हम लोग भीड़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और इस साल क्या है कि प्रशासन काफी अच्छे तरीके से इंतजाम किए, इसलिए क्राउड भी कंट्रोल में था और लोग अच्छे से दर्शन कर पा रहे थे जगन्नाथ भगवान जी के।
1: तो इस बार इंतजाम काफी अच्छा है।
0: हाँ, इस बार इंतजाम काफी अच्छा है।
1: और मेले की सबसे खास बात आपको क्या लगी इस बार की?
0: इस बार यही लगी कि थोड़ा लोग साफ सफाई रखे थे, प्रशासन अपने काम पे ध्यान दे रही थी, लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था किसी भी चीज को लेके, क्राउड उतना नहीं था, लोग मेंटेन हैंडल कर रहे थे अच्छे से प्रॉपर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सौरभ, आप अपनी फरमाइश पे कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गाना बजा सकती हैं और मैं उसे आराम से एंजॉय कर सकता हूँ।
1: ओके सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू।

0: स्वागत है आपका आज के यूथ जंक्शन में। अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम रिद्धि शर्मा है।
0: और आप कहाँ पे रहती हैं?
1: मैं विश्वनाथ गली में रहती हूँ, बनारस में।
0: बनारस में। तो रिद्धि, अभी जैसा कि आप जानते होंगे, 3 दिन के लिए रथ यात्रा मेला लगता है और बनारस के रथ यात्रा चौराहे के साइड बहुत भीड़ होती है। तो आप अभी तक मेले में गई या नहीं?
1: हाँ, मैं मेले में गई थी, कल ही गई थी।
0: तो आपने इंजॉय किया?
1: हाँ, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पॉजिटिव माहौल था पूरा, बहुत मजा आया।
0: और अगर भीड़ की बात करें हम, तो उसका क्या माहौल था?
1: भीड़ तो थी बट उत्साह इतना ज्यादा था कि भीड़ का पता ही नहीं चला।
0: अच्छा, तो रिद्धि, अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन में आप जब मेले में जाती थी तो हम काफी एक्साइटेड हुआ करते थे उस टाइम,
1: जी,
0: तो आप अपनी कोई ऐसी मेले की याद बताएंगी जो आज तक आप भूल नहीं पाई हैं कुछ?

0: मेमोरेबल.
1: तो जब मैं बचपन में मेला जाती थी तो मुझे अभी भी याद है कि मैं झूले बैठने के लिए बहुत रोती थी, पर मेरी मम्मी मुझे बैठने नहीं देती थी क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी. बट उस समय तो समझ नहीं आया, बट अब मैं झूले बैठ सकती हूँ तो अब बहुत मजा आता है झूला, मतलब मेले में जाकर और झूला झूलने में.
0: तो आप इस बार मेले में रात में गई थी या फिर सुबह?
1: सुबह गए थे
0: तो दर्शन करके आपको कैसा लगा?
1: जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया.
0: और जैसा कि हम जानते हैं कि वाराणसी की प्रसिद्ध रथ यात्रा में कुल तीन देवी देवता विराजमान रहते हैं, आपको उनका नाम
1: जी
0: पता है? बताइए.
1: जी हाँ, पहले हमारे जगन्नाथ जी आते हैं और उनकी बहन सुभद्रा जी
0: जी
1: और फिर उनके भाई बलभद्र जी.
0: वाह, बिल्कुल सही जवाब रिद्धि. तो आज की फरमाइश में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैं सुनना चाहूंगी रंग भरे बादल से.
0: ओके, थैंक यू.

0: तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने रथ यात्रा के ये 3 दिन बहुत एंजॉय किए होंगे, और अगर आप रथ यात्रा मेला घूमने नहीं गए हैं तो आज ज़रूर जाइए। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज के यू डायरी में हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं। तो आज का हमारा हिंदी शब्द है अधिनियम, जिसका अर्थ होता है कानून या विधानमंडल द्वारा पारित नियम जिसे शासन या सरकार लागू करती है। इसके कुछ पर्यायवाची शब्द होंगे जैसे कानून, विधि, नियम, विधान या फिर कानूनी प्रावधान। और अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि सभी नागरिकों को अधिनियम का पालन करना चाहिए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है।
1: और दोस्तों, हमारा आज का इंग्लिश वर्ड है रैंकर, जिसका अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति के प्रति लंबे समय तक नफरत, कड़वाहट या फिर मन में बैर बना रहे। रैंकर मीन्स डीप, लॉन्ग लास्टिंग बिटरनेस और हेटर टुवर्ड समवन बिकॉज ऑफ अ पास्ट डिसअग्रीमेंट और रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट देयर पास्ट डिसअग्रीमेंट्स दे वर्क टुगेदर विदाउट रैंकर।
0: तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के ये दो नए शब्द यानी अधिनियम और रैंकर, इन दो शब्दों का अर्थ समझ आया होगा और ज़रूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने इतिहास की ओर और जानते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या कुछ हुआ था। इस दिन इसरो ने अपने स्वदेशी रॉकेट SLV-3 की मदद से रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था जो अपने दम पर उपग्रह लॉन्च कर सकते हैं।
1: और दोस्तों, आज ही के दिन सबसे खास बात यह है कि इस मिशन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज चंद्रयान और गगनयान जैसी उपलब्धियों की शुरुआत इसी सफलता से हुई हो रही है।
0: और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जुलाई का महीना भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इसी दौर में स्वतंत्र भारत की कई संवैधानिक प्रक्रियाओं ने गति पकड़ी और संसद ने कई ऐतिहासिक फैसलों का दिशा तय किया।
1: यानी जुलाई सिर्फ बारिश का महीना नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाले फैसलों का भी महीना है।
0: 18 जुलाई तक भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय हो जाता है, इसलिए ये समय किसी किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है।
1: और दोस्तों, कहा जाता है कि अच्छी बारिश का मतलब सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि खेती, मजबूत अर्थव्यवस्था और खुशहाल गांव भी है, जिससे गांव में एक शुद्ध वातावरण का माहौल रहता है।
0: और 1980 में रोहिणी से शुरू हुआ सफर आज चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग और आदित्य-L1 जैसे मिशन तक पहुंच चुका है।
1: यानी भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं।
0: तो चलिए, कार्यक्रम में आपको और भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, अब बारी है रोजगार सूचना की, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS की तरफ से आई है, जिसने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर CRPF PO के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। और ये भर्ती 6,715 पदों के लिए है। IBPS आवेदन फॉर्म 1 जुलाई से ही शुरू हो गए हैं और आप 21 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
1: इस दोस्तों इसके लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर भी विजिट कर सकते हैं। दिव्या, अब पहले दोस्तों का इंतजार खत्म करवाओ कल के प्रश्न का सही उत्तर बताकर।
0: बिल्कुल भूमि। तो दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न आपसे ये था कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसका सबसे अधिक टाइम जोन है, और इसका सही उत्तर है फ्रांस। और जिन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है वो है ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और

0: और शिवांश वर्मा। सुधांशु शेखर जलालीपुरा वाराणसी से हैं, मुकेश प्रजापति सिगरा वाराणसी से हैं और चंदौली से हैं चंदा। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। रिंग रोड नर्मदानगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा और ममताबाई वर्मा। नेपा नगर से हैं प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा, बसंती बाई और गणेश शिवदे। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं श्यामा बाई राकेवार। और साथ ही साथ रवि मौर्य सिमरौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई।
1: और दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न आपसे ये है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य रूप से किस शहर में सबसे प्रसिद्ध रूप से निकाली जाती है?
0: हमारा सवाल एक बार फिर से सुनिए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य रूप से किस शहर में सबसे प्रसिद्ध रूप से निकाली जाती है? तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है ये तो आपको पता ही है। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, हमारी इंस्टा आईडी youthairvaranasi या फिर हमारी ईमेल आईडी youthairvns@gmail.com पर।
1: तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज का हमारा सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी बातें आपके चेहरे पर मुस्कान लाई होंगी और दिल में एक नई सोच भी आई होगी।
0: तो बिल्कुल, और जाते जाते बस एक छोटी सी बात हम कहेंगे कि हम सब अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, भविष्य बनाते हैं, लेकिन अगर सेहत ही साथ ना दे तो इन सपनों का सफर अधूरा रह जाता है।
1: इसलिए दोस्तों, याद रखिए, महंगा खाना नहीं, सही खाना जरूरी है। हमारी रसोई में मौजूद दाल, रोटी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही और अंकुरित अनाज ही हमारी असली ताकत है।
0: तो इसी बात के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। बस इतना कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर रोज युवाणी सुनते रहिए। तो आज के लिए दिव्या
1: और भूमिका, आपको
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अब युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिन्हें हम गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारत का ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम एक सफलता के साथ ही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित कर गयी। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर भयल। एक हैदराबाद का निजी कंपनी स्काई रूट एम स्पेस बनाले हवे। एगो रिपोर्ट।
1: भारत में निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम वन भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ए उपलब्धि खातिर स्काई रूट एयरोस्पेस के बधाई दिले हुए। प्रधानमंत्री कहले कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के नौजवानों के आगे आके नवाचार में योगदान देवे खातिर प्रेरित करी।
2: दूसरा जमीन

0: चीज आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल भेले। कार्यक्रम के संबोधित करत वहां के विद्यार्थियों से आत्म अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्र प्रथम के भावना के जिंदगी का आधार बनवने का आह्वान कहले। जापान का उदाहरण देत वहां के कहने की आत्म अनुशासन ही कौनों समाज और देश के प्रगति का सबसे मजबूत आधार बा। मुख्यमंत्री कहने की बुलंदशहर देश का सबसे बेसी सैनिक और सैन्य अधिकारी देवे वाला जिला में शामिल बा। ऐसे में एजा सैनिक विद्यालय का स्थापना महत्वपूर्ण कदम है। वहां के कहने की बुलंदशहर आज विकास के राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा बा।
2: नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर भी बदल चुका है। यहाँ तो भय और दहशत का माहौल था, आज हमारा बुलंदशहर निर्भय होकर के विकास की प्रक्रिया के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या नहीं है बुलंदशहर में, कितनी शानदार, यानी देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बुलंदशहर को लेकर के आगे बढ़ रही है। और बुलंदशहर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो माँ गंगा का सानिध्य पाते पाते अब प्रयागराज तक 5 घंटे में पहुंच जाएंगे।
1: मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण का जिक्र करत गुलामी का मानसिकता छोड़े, विरासत पर गर्व, सामाजिक समता, वर्दी धारी बलन के प्रति सम्मान और नागरिक कर्तव्य के पालन का संदेशा देने। वहां के कहने के सैनिक खातिर देश सर्वोपरि होला और वही राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च आदर्श बा। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आज गोरखपुर में जिला अस्पताल का निरीक्षण कैले। वहां के अस्पताल के कई गो व्यवस्था का जायजा लिए और मरीजों से इलाज, भोजन और सुविधा के बारे में जानकारी ले ली। निरीक्षण के दौरान वहां के निर्देश देने की भीषण गर्मी और उमस के देखत जिला अस्पताल के हर वार्ड में एसी का व्यवस्था तय कर जाए। वहां के कहने का एसी लगावे का कार्य रोगी कल्याण निधि और आयुष्मान योजना से उपलब्ध धनराशि से करावल जाए। उप मुख्यमंत्री अधिकारियों के स्वच्छता, पेयजल और जरूरी सुविधा पर खास ध्यान देने का निर्देश देने। प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल सेवा के अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से जल सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च कैले हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप तैयार ऐप के जरिया से ग्रामीण उपभोक्ता अपने मोबाइल पर पेयजल योजना का रियल टाइम जानकारी, जलापूर्ति का स्थिति, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कैले और निस्तारण का जानकारी आसानी से मिल सकी। ई ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो। सरकार सज्जो ग्रामीण उपभोक्ता लोगों से अपील कैले हुए कि वो जल सारथी ऐप डाउनलोड करके डिजिटल सेवा का लाभ उठावे और हर घर जल अभियान के सफल बनाने में अपन भागीदारी सुनिश्चित करें। एक साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भाई, नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी वाराणसी है। मिनिमम 241.5 सेंटीमीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण में आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 10 बजे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जिसमें आप सुनेंगे देवव्रत मिश्र का सितार वादन। रात्रि 9:30 पर सुनेगा अंजुमन कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे राजेंद्र मेहता व नीना मेहता। आज रात्रि 8 बजे

हिंदी वार्ता कार्यक्रम में हिंदी साहित्य में पावस की विविध रंग विषय पर देवी प्रसाद तिवारी की वार्ता सुनिएगा शाम 7:31 पर। केशगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा लोक भाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे मिथिलेश गहमरी, ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव,

और दिनेश सिंह यादव। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे अभी यानी शाम 6:10 पर, शाम 7:45 पर रसरंग कार्यक्रम में, और रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब कल दिनांक 19 जुलाई सन 2026 दिन रविवार के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात्रि 10 बजे सुनेगा अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा, और रात्रि 9:30 पर सुनेगा संसद के समक्ष मुद्दे। ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: उर्दू कार्यक्रम सुनेगा हमारे लखनऊ केंद्र से कल सुबह 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 सुनेगा पंडित राजन व साजन मिश्र का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे बेगम अख्तर। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनेगा कल शाम 7:31 पर। प्रतिभागी होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर सुनेगा फल उत्पादन आय का अतिरिक्त स्रोत विषय पर शैलेंद्र रघुवंशी से बातचीत। साथ ही साथ किसान भाई सुनेंगे बाबूलाल यादव और साथी का गाया लोकगीत। इनके गाए लोकगीत आप कल सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे। कल प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुनेगा कल प्रातः 6:10 पर। विचार बिंदु होगा कल प्रातः 6:30 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:35 पर विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां कारण और निवारण विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर राहुल कुमार सिंह। श्री रामचरित मानस संगीत में पाठ सुनिएगा कल प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम सुनिएगा कल सुबह 7 बजे। मधुरमा कार्यक्रम सुनिएगा कल सुबह 8:45 पर। यह थे कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी वाराणसी है। मीडियम 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आराधना के गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं ST बर्मन। फिल्म का नाम आराधना।

अभी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म आराधना के गीत सुन रहे थे। अब आइए फिल्म आपकी कसम का एक गीत सुने। आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

लता मंगेशकर गाए फिल्म आपकी कसम के संगीत के साथ फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी वाराणसी है। शाम के 6:20 होने वाले हैं संस्कृत में समाचार। आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।

0: उपक्रमस्य जनकः डॉक्टर विक्रम साराभाई इत्याख्यस्य नामना व्यपदिष्टस्य अस्य विक्रम वन यानस्य रचनायां त्रिस्तरीय दृढ़ प्रणोदक चरणानि सहैव अमोघ कक्षा प्रवेशाय रमण इत्याख्यः देवेन्द्रन गन्त्रं प्रयुक्तमस्ति। इदं यानम् उपग्रहान् पृथिव्याः निम्न कक्षायां स्थापयितुं पूर्णतया सामर्थ्यं भजते। अन्तरिक्ष कक्षायाम् अस्य सफल प्रवेशात् परं प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी दूरभाष माध्यमेन स्कायरूट एरोस्पेस दलस्य वैज्ञानिकानां च अभिनन्दनं व्याहृतवान्। श्रीमोदी न्यगादीत् यत् विक्रम वन यानस्य अयं सफलोत्कर्षः अन्तरिक्ष क्षेत्रे देशस्य आत्मनिर्भरता यात्रायां कश्चन प्रमुखः कीर्तिस्तम्भो वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् इयम् ऐतिहासिकी उपलब्धिः देशस्य यूनः नवीनोन्मेषाय अग्रे आगन्तुं प्रेरयिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अब्रवीत् यत् भारतस्य आतंकवादं विरुध्य असहिष्णुता न केवलं वक्तव्यं नास्ति अपितु कार्याचरणस्य कश्चन दृढसंकल्पो वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां फॉरेस्ट फर्स्ट कॉन्क्लेव इत्यत्र संबोधयन् श्रीसिंहः स्पष्टीकृतवान् यत् भारतम् आतंकवादिनः न केवलं स्वसीम्नि प्रहरिष्यति अपितु आवश्यकतानुसारं तेषाम् आश्रयेषु प्रविश्य अपि दण्डयिष्यति। सः अभाषत यत् सिन्दूराभियानावधौ समग्रं विश्वम् अस्य साक्षी अभवत् यत् तदभियानं तान्त्रिकयुद्धपद्धत्याः कञ्चन उत्कृष्टम् उदाहरणम् आसीत्।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
0: मंत्री सविशेषम प्रख्यापितवान यत् विगतेषु द्वादशसु वर्षेषु नरेन्द्र मोदी सर्वकारेण रक्षा क्षेत्रस्य पुनरुद्धारः सुदृढीकरणं च स्वस्य शीर्ष प्राथमिकतासु स्वीकृतम्। श्रीसिंहः अकथयत् यत् सर्वकारेण न केवलं भारतस्य रक्षाक्षेत्रं सुदृढीकर्तुं संकल्पः धृतः अपितु रक्षा आवश्यकतानां पूर्तये देशस्य आयात निर्भरतां न्यूनीकर्तुमपि दृढः प्रयासो विहितः।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। बहुभ्यः दिवसेभ्यः नवदिल्ल्याः जंतर मंतर प्रांगणे अनशने निरतः सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुकः ह्यः रात्रौ आवश्यक चिकित्सकीय सेवायै सर्वकारीय चिकित्सालयं प्रति नीतः। नवदिल्ल्याः आरक्षी उपायुक्तः सचिन शर्मा अवोचत् यत् श्री वांगचुक इत्यस्य उत्तरोत्तरं क्षीयमाणं स्वास्थ्यं विचिन्त्य चिकित्सकानां विशेषज्ञ परामर्शेन तथा दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशानुपालनार्थं च सः चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरितः। तस्मिन्नेव समये सफदरजंग चिकित्सालयस्य मुख्याधीक्षिका डॉक्टर चारु बम्बा संसूचयामास यत् श्री वांगचुकः सम्प्रति निरन्तर चिकित्सकीय निरीक्षणे अस्ति तथा तस्मै समुचितः उपचारः प्रदीयते। डॉक्टर बम्बा इदमपि विशदीकृतवती यत् सः पूर्णरूपेण सचेतनो वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्येषु अतिवृष्टि पर रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय छत्तीसगढ़ उत्तराखंड

राज्येषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागस्यास्य आधिकारिक विवरणानुसारं अद्य बिहार मध्यप्रदेश पूर्वीय उत्तरप्रदेश हिमाचल प्रदेश झारखण्ड कर्नाटक केरल माहे ओडिशा राज्येषु तथा समस्त पूर्वोत्तर प्रान्तेषु अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। अनेनैव सह श्वः यावत् तटीय आन्ध्रप्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा क्षेत्रेषु वज्रपात मेघ गर्जन पुरस्सरं तीव्र झंझावातस्य अपि महती आशंका वर्तते। तत्रैव उत्तर भारते दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब प्रान्तेषु अद्य नागरिकाः तीव्र उष्ण आद्र वातावरणेन नितरां संतप्ताः भविष्यन्ति। टोक्यो नगर्यां जापान ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य उपान्त्य द्वन्द्वं विजित्य द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री भारतस्य सुप्रसिद्धा क्रीडिका पीवी सिंधुः अद्य अंतिम चरणे स्वस्थानं सुरक्षितं अकरोत्। तस्याः प्रतिद्वन्द्वी चीन देशीया चेन यू फेई प्रतियोगितायाः द्वितीय चक्रे अकस्मात् अस्वस्थता कारणात् क्रीडांगणं परित्यक्तवती, येन सिंधु अयाचितं विजयम् अवाप्य अंतिम चरणं प्रति सोत्साहं प्रातिष्ठत। अस्मिन् द्वन्द्वे सिंधुः प्रथमं चक्रम् 21:19 इत्यांकान्तरालेन विजित्य द्वितीय चक्रे अपि 15:10 इति अंकैः अग्रे धावन्ती आसीत्, यदा चीन देशीया क्रीडिका स्पर्धायै असमर्था संजाता। जापान ओपन उपाधिं समलंकर्तुं बद्ध परिकरा पीवी सिंधुः श्वः अंतिम चरणे जापान देशस्य अकाने यामाचुची इत्यनया सह क्रीडिष्यति इति वार्ताः।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम में 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम समारू भैया,
1: भैया
0: का हाल चाल बा गांव गिराव खेत खरिहान के भैया?
1: भैया बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे रोपनी देखा आधा हमार हो गल है,
0: बा भैया
1: और कौन जरे थोड़ा सा बाकी है तो सफराव की व्यवस्था कैले ही
0: मतलब दही जौन चुअत हुआ लहान पर पकड़ ले ले
1: एकदम
0: भैया।
1: पकड़ ले भैया, जे चुकी ते कौन जरे चुकता
0: अरे
1: रह
0: भैया
1: जाई।
0: जान लगे धर्मू भैया रोप के खालू हो गई ना, आ देखा जोन हमहन का कहला कि कमी है कि जे अब ही चुकल बा वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पछड़ी। ऐसे हम तो यह कहब कि जे अब ही भी ना रोप पौले हो
1: रोपा जल्दी
0: बिल्कुल
1: जल्दी।
0: भैया, काहे कि देखा इसमें दही भी लहान नापन बना दिले हवा। आ मान
1: हाँ
0: लो अगर रोप के खाली हो जाइ हैं तो तनी मनी अगर दही मान ल आँख मुदबो कहीं ना
1: हाँ
0: तो अपन सौदा
1: तो
0: एक बारी रपा गल तो फिर चलत रही
1: बान
0: भैया।
1: पकड़ ले वही
0: हाँ
1: में।
0: पकड़ ले रही भैया।
1: एक बात बताई बस रमेश्वर भैया,
0: हाँ
1: कल कल देखा अपने देश के मजबूत बनाओ बदे
0: हाँ हाँ
1: जमन देखलर माला में कई फूलों के सब एक होना।
0: अरे बिल्कुल भैया। अरे समय टटके उदाहरण भाई धान पानी का हो, जैसे धान पानी का संग होला ना तो कितना बढ़िया लगा ला।
1: कितना बढ़िया
0: ऐसे ही
1: लगा
0: अपने भारत के समाज में भी मनई लोगन का आपसी संघ बना रहे, हिंदू
1: ला
0: मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में
1: में भाई
0: भाई भाई
1: भाई। हाँ
0: हैं। और जैसे माला
1: ये मन रखा कहले पांच लोग से कि भाई मन में ईर्ष्या द्वेष जलन कोई के प्रति न रखा है,
0: बिल्कुल नहीं भैया
1: सबकर
0: बिल्कुल नहीं।
1: हमेशा मदद करे के तैयार रहे और
0: हाँ
1: कौमी एकता के बरकरार रखा है।
0: बिल्कुल भैया, अपने शास्त्र पुराण में लिखल बा कि विविधता में एकता
1: हाँ
0: भारतीय
1: हाँ हाँ
0: संस्कृति का मूल मंत्र है।
1: तो मैं मूल
0: एक
1: मंत्र अपना लोल जाए।
0: बस एक माला भैया विविधता।

0: में जैसे बेला, चमेली, गुला,
1: हाँ
0: कुल रंग का वही में लाल पियर हरियर वही
1: लेकिन
0: में
1: नाम
0: गुजर
1: रही।
0: बा, लेकिन नाम रही एक माला। तो
1: हाँ
0: ऐसे ही भैया हमहन का भारत का अपन संस्कृति है, सभ्यता है, जेकर के गुणगान देश विदेश में सदियन से भैल बा और आज भी हुआ, और आए वाले समय में एक कहें लोग पुरनिया मास्टर लोग कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं
1: नहीं
0: हमारी,
1: हमारी।
0: तो ये
1: हाँ
0: भारत का भैया यह आन बान शान पहचान
1: सही बात है
0: भैया।
1: भैया, यही समान विश्व में भी देखा,
0: हाँ अग्रणी है भैया,
1: अग्रणी विश्व गुरु कहलाई ले
0: हाँ कारण
1: जा।
0: यह है
1: ये
0: भैया।
1: रमेश्वर भैया
0: हाँ
1: इतना अपन बात हो गल हो,
0: हाँ
1: अब देखा आज पंचायती आज दिन कौन ही देख रहा, पहले
0: हाँ हाँ
1: शनिवार
0: हाँ हाँ
1: है
0: बिल्कुल भैया।
1: आए तो
0: हाँ
1: आज लोक भाषा का भी गोष्ठी हो, लेकिन पहले सन्ने सुनवा दे।
0: सुन ले वल्ला भैया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ संदेश तो सुन लीजिए भैया।
2: बिल्कुल, अब आगे कभी गोष्ठी का कुछ बात कही कहते रहा है।
1: हाँ तो लोक भाषा कवि गोष्ठी आज पंचायती में हुई। पहले ही बता दी कि प्रतिभागी कवि कौन
2: जुटल हुआ वेदा नहीं बता।
1: देखा ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव भैया हुआ, मिथिलेश गहमरी भैया हुआ, दिनेश सिंह यादव भैया हुआ।
2: देरी क्यों ने बात कर,
1: सब पंच लोग सुने।
2: लोक भाषा कवि गोष्ठी,
3: लोक भाषा कवि गोष्ठी में आज जौन भाई हमारे 3 लोग जुटल है, पहले हम उनका परिचय बता देवे चाहब। भैया श्री दिनेश सिंह यादव नौबतपुर चंदौली से, एशिया के बहुत मशहूर गांव गहमर सैनिकन के गांव, वहां से भैया श्री मिथिलेश गहमरी जी। और एक हम आपके ओम प्रकाश श्रीवास्तव प्रकाश मिर्जापुरी भाईपुर मिर्जापुर से। तो अब हम भैया दिनेश सिंह यादव जी से कहब कि आप अपन कविताई हमन के बीच में रखा। हाँ लोग सुना।
4: हाँ भैया,
5: देखा भैया ये बरसात का सीजन आ गई बा, अब पुरवा हवा जोर से चलत है।
4: ठीक,
5: तो पुरवा हवा जोर से चलत है तो का जो न लक्षण दिखावत है अपन।
4: हाँ भैया
5: ओके सुने।
4: हाँ सुनाओ भैया।
5: जोड़न

भारत पुरवा। जे हर लागत हर सुख लयाड़ही स्वेद निकारत पुरवा। रात के नींद भले नहीं आवत भोरम देह दबावत पुरवा। दूसरा छंद सुना कि सुख

0: पूर्वा मूर्छित हो धरती बरखा बिनु बाग नदी हरि आवत पूर्वा अनेह कबादर श्याम घटा मन मोरन के नचावत पूर्वा अनेह कबादर श्याम घटा मन मोरन के नचावत पूर्वा। दूसरी कविता में देखा डौरत हुआ सड़क आज के डौरत हुआ सड़क आज का छाक कौनो बात है ना पेड़ पुरान विकास खा गई ना नया में कहीं दिखाते है ना
1: बाबैया बाबैया
0: घास हरियर चौवा चढ़ गई ना धैला तेवन हरियाते है ना पेड़ लगावल सब फोटो में धरती पर कहीं बुझाते है ना। पेड़ रहल जब सड़क किनारे छाए छाए सब जात रहल पेड़ रहल जब सड़क किनारे छाए छाए सब जात रहल थक्कल मानल घाम से आके पेड़व तरे जुड़ात रहल पीपर पाकर देख के नीचे दुकान नहीं खुल जात रहल अठुठवा पेड़ देख के दैतवा पीपर पर बस जात रहल।
1: बाबा बाबा
0: अगली लाइन में है कि पेड़ से हमके ईंधन मिले पेड़ से हमके ईंधन मिले पेड़ से हमके मिले अनाज पेड़ से हमके लकड़ी मिल जावे कुर्सी मेज बने दराज पेड़ से हमके मिले दवाई पेड़ से हमके मिले दवाई।

0: खाके आज आ पेड़वा हमें मसाला देला, पेड़वा बा जिंदगी का राज,
1: वाह भैया
0: पेड़वा बा
1: वाह
0: जिंदगी का राज।
1: बहुत
0: वाह
1: भैया
0: हरियर
1: वाह।
0: पेड़ से हरी उम्मीद, हरियर पेड़ से हरी उम्मीद, धरती हरी बनावा लोग। देखा संदेश आखिरी पंक्ति में
1: हाँ
0: कि हरियर पेड़ से हरी उम्मीद, धरती हरी बनावा लोग, जिंदगी चाहा हरा भरा त नियरा बन के बुलावा लोग, जिंदगी चाहा हरा भरा त नियरा बन के बुलावा लोग, पेड़वे से ही जीवन हुआ अधिक से अधिक लगावा लोग, पाल
1: वाह
0: पोस के बड़ा करा, बस फोटो मत खिंचावा लोग, बस
1: वाह
0: फोटो मत
1: वाह भैया
0: खिंचावा लोग।
1: बहुत अच्छा।
0: देखा और अगली कविता है जोन बरसात जो न कहीं कहीं हो के आ फिर ओकर बाद चल जात हूँ पता न चलता है, आ सब बरसात देख के हाली हाली रोप देले, बिया डाल देले, अब पता चलता कि सुखत बा।
1: अरे
0: हाँ भैया
1: भैया
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो देखा ओके देख के दो लाइन लिख देले
1: हाँ भैया
0: बरसल अदर।

0: लगल
1: बाबर
0: पहाड़वा कपूजिया झुराए लगल
1: बा
0: ताकत झाकत ही बादर चलल जात हो।

0: जात हो। देखा
1: वाह।
0: अगली पंक्ति में कि देख बदरा कयस राजुटे लागल, बकुला बकुली का गुस्सा घटे लागल, घटवाया का से लगल बाकिन घट

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वाह भैया, आप वही करता सुना तो वहाँ दिनेश भैया के बहुत अच्छी
2: बहुत अच्छा
1: करते ही आपन सुनो। हम तो ये कहब कि पेड़ भैया बड़ा बदुआ देव
2: है ना,
1: कहो सुना मोरे फुलवा के खाले मोरे फरवा के ठगी के चाहले हमरे चाह हमरे शरीरिया पे अरवा चलावे निसरे न मुहमा से आप कटबे जो हमके कटाए जाबे तुहु हमें और वही बे और आ जाबे तुहु हरा मुके राखा हरियाए जाबे तुहु पेड़वा के यह सलाह भैया दिनेश के कविता याद। अब हम हमके बीच में हम आपके पहले ही बतौली है कि आप एशिया के बड़े मशहूर गांव से सैनिकन के गांव से भैया मिश्रेश गमरी बहुत अच्छा कवि हुए आप आयल हुए। हम इनके बदले यह कहा कि बरसात बहुत कुछ करेला लेकिन देख सखी घन श्याम बिना देख सखी घन श्याम बिना घन श्याम के भाई छाई भाई त कहते सावन जान ओ चात किटान बान समान सहाय
2: कैसे
1: अधीर छुटी सुकुआर शरीर से पीर अनेक हो जाई त कैसे अहे भगवान बेचारी प्राण के दीप प्रकाश बचाई त कैसे हे भगवान। भैया
2: भैया
1: डमरी जी मिश्रेश डमरी जी
2: भैया भी दिनेश भैया बतौल है कि आसार बीते वाला बा सावन आवे वाला बा बाकी केहियो अभी रूपा ना भई बदरी का ठिकान ना है तेकर का कारण बा भैया तो बतौलो वही बात के आगे बढ़ाओ थे कि काटी काटी जंगल पहाड़ावा के छतिया पकल कर रखा न मऊ गावे मन मानी
1: भैया
2: भैया और का करेला दुनिया उगा है बस फायदा पर

0: दसवाच नहीं अपन करमवा के हानि, सवाच नहीं अपन करमवा के हानि, कपरा पजिन का बुझाइल भी अगिया, चिलमी एवु अगिया के आँच तप जानी, चिलमी एवु अगिया के आँच तप जानी, धरती बिरान भई गछिया बिरिछ बिनु, करे करे बदरा पियावे के पानी, करे करे बदरा पियावे के पानी। भैया ये बादर का प्रकाश भैया कितना महत्व हो, सावन के का महात्म बा देखल जाओ कि उमड़त घुमड़त सवरु बदरवा के पनिगर नेतिया के कथा कहानी। पनिगर ने के उमड़त घुमड़त सवरु बदरवा के पनिगर नेतिया के कथा कहानी, जेठवा के मारे तारु चटकेला छने छने बदरा धरतिया के हवे जिन गानी, बदरा धरतिया के हवे जिन गानी, दुनिया में दानी भले एक एक बढ़ के बाकी नहीं के हुबा सवा नवा के सानी, बाकी नहीं के हुबा सवा नवा के सानी, अमरी तरस बरी सावे जो सवा नवा त पली हर खेतवा में झूमे सोना चानी, पली हर खेतवा में झूमे सोना चानी। अब भैया यही तरह अगर आसमान आग बरसाई तो का हाल होई देखल जाओ, धरती के अखिया देखाई असमनवा हो पनिया के बदले जो आग बरसाई, धरती के अखिया देखाई असमनवा हो पनिया के बदले जो आग बरसाई। तो का हुई भैया, मटिया के जियारा बजर परी जाई है शिवनवा में लागी नाही के नियो हराई, मटिया के जियारा बजर परी जाई है शिवनवा में लागी नाही के नियो हराई, लिया रहरिया न छुए पाई माटी पानी, बरिया में कबो न बोवाई बिरवाई, बरिया में कबो न बोवाई बिरवाई, असही अड़पी है तड़पी है सवनवा तया सारा किसनवा के कई से रोपाई, असरा किसनवा के कई से रोपाई। जब मनई जब थक जाला तो नजर आसमान के तरफ करेला, अपने विधाता के तरफ करेला, दुखी आदमी देखल जब आखिर में जाने कौन दिनावा के दुश्मनी सधले बा, जाने कौन बदला पुरावे असमानवा, चारों ओर हाहाकार मचलो भैया, जाने कौन दिनावा के दुश्मनी सधले बा, जाने कौन बदला पुरावे असमानवा, तजी देले बूंदा बांधी जाने कौन रिसे खिसे लाले लाल कैले चमकावेला नयनवा, तजी देले बूंदा बांधी जाने कौन रिसे खिसे लाले लाल कैले चमकावेला नयनवा, जबरा के संगे संगे चल किसमतिया हो भैया, जबरा के संगे संगे चल किसमतिया हो, अबरा पे ही जाना केहू के धियानवा, अबरा पे ही जाना केहू के धियानवा, सुनी लाए बिधनाई बपुरा किसनवा त धनवा के साथे अपन रोपेला परनवा, धनवा के साथे अपन रोपेला परनवा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: भैया अब आप कविता कविता सुनत रहो भैया मिथिलेश गमरी जी के। भैया कहीं बहुत बरसात होले, कभी सूखा पड़ा, कहीं बाढ़ आ जाला, इकुल चलत रहला मिथिलेश भैया। लेकिन हम एक बात ही आपकी बताई अपने कविता में कि मोहले मोद दे सब सुख अपार दे बरखा, मगर बिरहिन के तो गर्दन चाली
0: दे बरखा,
1: मोहले मोद दे सब सुख अपार दे बरखा, मगर बिरहिन के तो गर्दन उतार दे बरखा। आप सुने?
0: हाँ भैया, अब हमने के चाहत है जा कि भैया ओम प्रकाश प्रकाश जी भी अपन कविता ही हम पंचन के सुना का भैया।
2: हाँ, हाँ,
0: तो प्रकाश जी हमन के बीच
1: आप देखा, हरी हरितिमा लेव बजे, हरियाली लेव बजे, सावन असाढ़ इस महीना हुआ शुरुआत हो जाला, तो पेड़ कडारी कियारी हरी केरवारी हरी फूलवारी हरी बा, हरी कडार देखियो, पेड़ कडारी कियारी हरी केरवारी हरी फूलवारी हरी बा, गुजती बा कजरी में हरी पद चूड़ी हरी बा हरी चुनरी बा, हौ जमुना लहरी में हरी सुर लागत नीक हरी पहरी बा
0: वाह वाह
1: एक प्रकाश हरी।

0: उजरी उजरी बाबा एक प्रकाश हरि के बिना। भैया देखे का करल सावन या असार का करला शीतल तापवनी धरती। भैया मित्र भैया बतावा जाते कि का के पौले
1: भैया स्वागत
0: शीतल।

क्या तक भौरक हरियाली कियारी के काबुले हास विलास संयोगी न पाइन पाइन कंत एकांत अटारी भाव प्रकाश कवि पवल गौल ऋतु पावस लिहारी भाव प्रकाश भैया सुखा पड़ल हुई भैया दिनेश भैया लेकिन फिर बादर वागर जय बरस चमक बिजुरी डेर वाव सखी फिर बादर वागर जय बरस चमक बिजुरी डेर वाव सखी फिर नाचत मोर रट पपिया धरती पट धानी रंगाव सखी फिर मंद बयार फुहार चले तन पैत

0: भैया देखें
1: अब वो सुधी सतावत है प्रकाश भैया
0: मेरी घटा गर जय तर जय भैया उतर रही जिंदगी पर बुढ़ोतिया चाहिए घेरी घटा गर जय तर जय कबो जोर पड़े झक झोर के पानी भैया ये कविता ही जनसुले पंच लोग सुना ला समझ कैसा चीज सुना कैसा समझे।

0: बिंदिया फरसा बिचवा लहराय किसान बाय पिसात कतौ में हदी खरीदात घरे घरे चुमर धानी तो बाट प्रकाश दुए रस खान दूठे रस खान हुआ जति पर के यारी तू राज हो यारी तू रानी यारी तू राज। भैया एक छोटा सा गीत सुना दे, कोई नाइट नोवेल ले रहा है, एक छोटा सा चरंग सुना दे। मोरवा न चावले का करे ले, मोरवा न चावले पपीहरा बुलावले कि असड़ाक सवरी बदरिया रिम झिम बुन बरसावले
1: बदरिया
0: रिम झिम बुन बरसावले असहक सवरी बदरिया
1: बा जरई
0: जरई जियावले किसान हरसावले जरई जियावले किसान हर सावले की असरा कसवानी बदरिया तसगरों सिवान लहरावले सगरों सिवान लहरावले असरा कसवरी बदरिया नबिया बहावले सगरा भेटावले नदिया बहावले सगरा भेटावले की असहाक सवरी बदरिया ताल ओ तलैया के मिलावले ताल ओ तलैया के मिलावले असहवाक सवरी बदरिया। भैया नीचे के देखे बड़ा मार्मिक लिखले का हो के आखिरी लाइन हो केहू के जरावले त केहू के जुड़ावले।

0: भैया अगर कविता में ये लोग भाषा कर गोष्ठी एक विराम लेते हो, हम आपके फिर से एक बार बतावे चाहते हैं कि भैया ये दिनेश सिंह यादव नौबतपुर चंदौली से, फिर दूसरा कवि आगे बतौली है कि बहुत मशहूर गांव से गहमर से बीरन के गांव हो सैनकन के गांव हो वहां से मिथिलेश गहमरी भैया, एक हम भैया आपका भाई ओम प्रकाश श्रीवास्तव प्रकाश मिर्जापुरी भाईपुर मिर्जापुर से।
1: हाँ रामेश्वर भैया,
2: हाँ बनो तुम्हारे भैया,
1: देखा कितना बढ़िया ये कवि लोक भाषा कवि गोष्ठी भैल है। सावन का वर्ण रहल, अषाढ़ का वर्ण रहल, हरियाली का रहल, बरखा बुन्नी का वर्ण रहल, पपिया।
2: लेकिन एक संदेश दे गए ना कभी भैया लोग
1: का हो
2: कि देख वृक्ष धरा का भूषण बा, है असली या भूषण बा, आज भी चेते के जरूरत है, विकास हो वो आवश्यक है, लेकिन कहीं ना कहीं जौन अपन हरियाली
1: है
2: बचावल बहुत जरूरी है। अगर एक पेड़ का जरूरत कहीं महसूस हो तो चार पेड़ लगाई बहुत जरूरी
1: बहुत जरूरी है। और प्रतिभागी कवि के नाम बता दे, ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव भैया, मिथिलेश गहमरी भैया, दिनेश सिंह यादव भैया,
2: बिल्कुल
1: ध्यान से। कल हम बता देती कल बिहने का हो तब गौनी सुनाओ।
2: हाँ, हाँ,
1: कल बिहने देखा 6:05 पर खेती के बातें कार्यक्रम में जानकारी दी दिनेश कुमार सिंह भैया, सामयिक कृषि कार्य
2: संझा के यही कार्यक्रम में का हुई
1: 6:30 पर पंचायती में हुई। बहुत बढ़िया बातचीत है कि फल उत्पादन का आय का अतिरिक्त स्रोत है।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
1: शैलेंद्र रघुवंशी से सुधीर श्रीवास्तव का बातचीत हुई, साधन गौनी हुई।
2: लेकिन
1: हाँ। जब बात हो पंच लोग जोहत हुई
2: हाँ, हाँ, हाँ।
1: दीपक सिंह और उनके साथी गौनी
2: हाँ, सुने तो सुन लिया।

0: नीक बा शहर से हमार गौवा सखी विकास गीत गावत हन दीपक सिंह और उनके साथी भैया मन गदगद हो गलो हो
1: भैया
0: खड़ी भी इशारा करते चले के बेला होता
1: चला चले के
0: पंचो राम राम, राम।

अभी के साल में सुने थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम एम 241.5 सेंटीमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुने फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कौन है जो सपनों में आया, फिल्म का गीत। गीतकार थे समीर और संगीतकार निखिल विनय। अब आइए सुने फिल्म बंटी और बबली का एक गीत। आवाजें हैं लाय मेंडोसा और साथियों की, शब्दकार गुलजार और संगीत रचना शंकर एहसान लॉय की।

0: iceberg.
1: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से हो रहा था।
2: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
3: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी
1: हवा। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं, आइए सुने कोई भी व्यक्ति संबंधित सूचना। कार्यालय कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार काव्या यादव, पत्नी किशन कुमार, निवासी छोटू सराय, थाना मुगल सराय, जिला चंदौली, ये कहीं खो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है, उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, रंग गेहुआ और ये हल्के गोल्डन रंग की साड़ी पहने हुई हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थानाध्यक्ष चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें या थाना मुगलसराय चंदौली को भी सूचित कर सकते हैं।

कार्यालय कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार वेद प्रकाश पुत्र महेंद्रलाल श्रीवास्तव कहीं लापता हो गए हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है, उम्र 40 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, ये हिंदी भोजपुरी बोलते हैं, रंग गेहुआ है, निवासी प्लाट 98 महामानापुरी कॉलोनी चितईपुर वाराणसी। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया कार्यालय कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें।

अभी आप सुन रहे थे खोई हुई व्यक्तियों संबंधी सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:18 हो रहे हैं। थोड़ी देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने संभल को 569 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने लखनऊ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर भी बदल चुका है। उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिल रही है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जिससे देश विकसित होता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, ये संकल्प आज हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा।
1: उन्होंने यहाँ राजीव भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत भारत के संकल्प को याद दिलाया।
3: ये स्पीड ये केवल स्पीड नहीं है, आपके समय को कम करने का माध्यम ही नहीं है, ये स्पीड विकास की स्पीड है, ये स्पीड समृद्धि की स्पीड है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और जितनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उतना तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा और जितनी तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा उतनी ही समृद्धि की नई ऊंचाई पर हमारा जनपद, हमारा प्रदेश और अंततः हमारा देश पहुंचेगा।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री ने अमरोहा में 207 करोड़ रुपए

0: से अधिक लागत वाली 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
1: ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चौधरी चरण सिंह जी के सपने को भी साकार कर रही है और विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को दे रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद संभल में 569 करोड़ रुपए लागत की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिल रही है, विकास और विरासत का संरक्षण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण, सुशासन और विकास के प्रति प्रतिबद्ध है तथा जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जिले के श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर भी पहुंचे और उन्होंने यहां भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, आरोग्य और लोक कल्याण की कामना भी की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज लखनऊ में विकसित युवा बनाएगा विकसित भारत थीम पर आधारित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। इस शिविर में 190 से अधिक जिला युवा अधिकारियों और माई भारत एनएसएस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और भारत सरकार युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल भी उपस्थित थीं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान आज ग्रेटर नोएडा में एक निजी शिक्षण संस्थान के मेराकी 2026 ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और देश का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा शिक्षा, कौशल, अनुशासन, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव को पुलिस ने आज 39 घंटे के रिमांड पर लिया है। दोनों आरोपितों को सुबह जिला जेल से निकालकर पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और पुलिस लाइन लेकर पहुंची। पुलिस और जांच एजेंसी ने आरोपितों से पूछताछ की। वहीं चढ़ावा मामले को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज कानपुर में कहा कि यह मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, जांच चल रही है और जो दोषी हैं पकड़े जा रहे हैं और रिमांड में लेकर के पुलिस ने पूछताछ की है। फिर भी मैं जनता से अपील करती हूँ, कुछ लोगों की गलती के कारण अपनी आस्था को कमजोर नहीं करें, क्योंकि आस्था एक स्थायी चीज है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।
0: भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज गोरखपुर में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा उपकरणों और उनके रखरखाव की जानकारी ली। उन्होंने वार्ड में पहुंचकर मरीजों का हाल भी जाना। श्री पाठक ने अधिकारियों को सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए।
3: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, मरीजों से बात किया, उनके परिजनों से बात किया, लेकिन जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें उमस भरा माहौल था। हमने तत्काल उसमें वातानुकूलित संयंत्र लगाए जाने के निर्देश दिए हैं और उसकी फोटोग्राफ सीएमएस और सीएमओ हमें भेजेंगे। तत्काल मरीजों को उच्चीकृत करके सेवाएं दी जाएं, कहीं कोई कमी न रखी जाए, मरीजों की

0: सेवा में परिजनों को कोई दिक्कत न हो, यह हमारी जिम्मेदारी है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी से जनकल्याण के सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। प्रदेश में मॉनसूनी सक्रियता बढ़ने से बीते 24 घंटों में कई जनपदों में बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। हमीरपुर में बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गोरखपुर में भी कल शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: गोरखपुर में कल शाम को हुई भारी बारिश के बाद बीती रात से ही आज सुबह तक हुई भारी बारिश में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही शहर के प्रमुख जगह असुरन के राप्ती कॉम्प्लेक्स, धर्मशाला बाजार, विजय चौक, सिविल लाइन, विद्यालय रोड, जिला अस्पताल आदि जगहों पर जलभराव से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई। हालांकि कुछ देर बाद ही जलभराव समाप्त हो गया। मौसम विभाग ने आने वाले समय में भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली कड़कने और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने संभल को 569 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने लखनऊ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
4: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.54 यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुने हिंदी वार्ता कार्यक्रम में हिंदी भाषा का वैश्वीकरण और चुनौतियां विषय पर डॉक्टर सुशील कुमार सिंह की वार्ता।
5: हम जानते हैं कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति, अस्मिता और राष्ट्र की आत्मा होती है। 21वीं सदी के वैश्वीकरण के दौर में जहां संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो रहा है, हिंदी भाषा ने भी अपनी सीमाओं को लांघकर वैश्विक फलक पर अपनी एक सशक्त और विशिष्ट पहचान बनाई है। भारतीय डायस्पोरा, बॉलीवुड, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और डिजिटल क्रांति के कारण आज हिंदी न केवल भारत की राजभाषा है बल्कि विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में उभरी है। हिंदी भाषा का वैश्वीकरण जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया भर के देश, अर्थव्यवस्थाएं, समाज व संस्कृतियाँ आपस में जुड़ती हैं और एकीकृत होती हैं। अतः सरल शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण का अर्थ है सीमाओं को पार कर आपस में जुड़ना। भूमंडलीकरण के इस युग में जहाँ विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है, वहीं हिंदी भाषा की प्रासंगिकता और मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। फिल्मों, संगीत, साहित्य एवं भारतीय प्रवासियों के कारण हिंदी भाषा विश्व के 150 से अधिक देशों में बोली, समझी और सराही जा रही है। अब आज की हिंदी केवल भारत की ही नहीं बल्कि एक विश्व भाषा के रूप में स्थापित हो रही है।

आज जहां एक तरफ देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व स्तर के सम्मेलनों में जाते हैं तो वे अपनी बात हिंदी भाषा में रखते हैं, चाहे वह अमेरिका में गए हों या चीन में, वे अपनी बात हमेशा हिंदी में रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज इस वैश्वीकरण के युग में जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, इससे हिंदी का व्यापक फलक पर फैलने के लिए भविष्य में उम्मीद की जा रही है। वर्तमान समय में संपर्क भाषा, राष्ट्रीय भाषा व विश्व भाषा के रूप में हिंदी के विकास परशम को देखते हुए यह आशान्वित हुआ जा सकता है कि जैसे जैसे दुनिया के देश आर्थिक रूप से उभर रहे हैं, हिंदी भाषा की कद्र भी वैसे ही बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि हिंदी के तमाम वैश्विक प्रश्न 1992 ईस्वी के बाद ही जुड़ते हैं। अतिचर्चित भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने भारतीय समाज की एकाएक दूरगामी प्रभावधर्मी परिवर्तनों के सम्मुख खड़ा कर दिया। भारत स्वयं एक बाजार के रूप में प्रस्तुत हुआ और भारत के सामने भी पूरा विश्व एक बाजार की तरह खुला पड़ा था। भूमंडलीकरण की यह वाहक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को हिंदी माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहती थीं। नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिंगलिट्स द ऑब्जर्वर लंदन के हवाले से कहते हैं कि भूमंडलीकरण जिस कार में सवार होकर दिग्विजय के लिए निकलता है, उसके चार पहिए हैं: निजीकरण, पूंजी बाजार का उदारीकरण, बाजार आधारित मूल्य निर्धारण और मुक्त बाजार। भूमंडलीकरण अपने मुक्त बाजार के लिए भाषा और संस्कृति को ही नहीं अपना मोहरा बनाता है, बल्कि जनमानस के भावों को भी मोहरा बनाता है। वह एक ऐसी भाषा का निर्माण करता है जो गतिशील होती है। आज इसने अपने बाजार का विस्तार करने के लिए बहुसंख्यक जनों की भाषा हिंदी को गले लगाया है। सच तो यह है कि भूमंडलीकरण ने हिंदी भाषा की ताकत को पहचान लिया है तथा हिंदी का भूमंडल पर गाना बजाना, साहित्य संस्कृति का रंग बिरंगा तराना आदि, इसे विश्व की भाषाओं में महत्वपूर्ण दर्जा दिया जा रही है। वर्तमान समय में हिंदी केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, मॉरिशस, चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा तथा अमेरिका तक में हिंदी कार्यक्रम उपग्रह चैनल के जरिए प्रसारित हो रहे हैं और भारी संख्या में उनके दर्शक एवं श्रोता मिल रहे हैं। हिंदी अब नई प्रौद्योगिकी के रथ पर सवार होकर विश्वव्यापी बन रही है। उसे ईमेल, ई कॉमर्स, ई बुक, इंटरनेट, MMS एवं वेब जगत में बड़ी सहजता से पाया जा सकता है। इंटरनेट जैसे वैश्विक माध्यम के कारण हिंदी के अखबार एवं पत्रिकाएं दूसरे देशों में भी आसानी से सर्वसुलभ हो रही हैं। मीडिया ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज दुनिया भर में भारतीय फिल्में तथा टेलीविज़न कार्यक्रम देखे जाते हैं। इन माध्यमों ने हिंदी का खूब प्रचार प्रसार किया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को सर्वस्वीकार्य बनाने में रेडियो की भी उल्लेखनीय भूमिका रही है। आकाशवाणी ने समाचार, खेल कार्यक्रम, प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का आंखों देखा हाल तथा किसान, मजदूरों और बाल एवं महिला कार्यक्रमों ने हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने में

बड़ा योगदान दिया है। वर्तमान समय में नई तकनीकों का समाचार कक्ष में प्रवेश, ईमेल की शुरुआत तथा गीत और संगीत तथा फोन फरमाइश चैनल का चलन भी आकाशवाणी की लोकप्रियता से हिंदी भाषा को बढ़ावा मिला है। हिंदी भाषा को वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करने में टेलीविजन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनोरंजन, समाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से हिंदी ने राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, IBM तथा ओरेकल जैसी विश्व स्तरीय कंपनियां अत्यंत व्यापक बाजार और भारी मुनाफे के देखते हुए हिंदी भाषा के प्रयोग को दिनों दिन बढ़ावा दे रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी के भारी भरकम दबाव के बावजूद भी हिंदी भाषा बहुत ही तीव्र गति से विश्व मन के आशा आकांक्षा की संवाहक बनने की दिशा में अग्रसर है। वर्तमान में इंटरनेट वैश्विक पहुंच रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम है। इस मंच पर प्रयुक्त होने वाली भाषा को विश्व के सभी लोगों द्वारा देखा एवं पढ़ा जाना संभव है। वर्तमान संदर्भ में हिंदी ने भी इंटरनेट पर अपनी महत्वपूर्ण दस्तक दी है। आज इंटरनेट माध्यम पर हिंदी कार्यक्रमों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। इस पर हिंदी सूचनाएं एवं मनोरंजन कार्यक्रम तो मुख्य है ही, साथ ही साथ हिंदी समाचार एवं हिंदी पत्र पत्रिकाओं को देखा और पढ़ा जा सकता है। वर्तमान समय में इंटरनेट पूरे विश्व में अल्लादीन का चिराग है, जो हमारी इच्छा अनुसार उचित समय पर किसी भी रूप में इच्छित जानकारी प्रस्तुत कर सकता है। अतः आज इंटरनेट पर रखी गई हिंदी वेबसाइटें हिंदी भाषा को वैश्विक परिदृश्य में प्रचारित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित और प्रभावी भाषा के रूप में स्थापित करने में भारत सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2026 ईस्वी में भारत सरकार की नीतियां हिंदी के कूटनीतिक, शैक्षणिक और तकनीकी प्रयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए $1.16 मिलियन से अधिक का योगदान दिया है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करना भी हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में 26 से अधिक हिंदी पीठ स्थापित की गई है, ताकि वहां हिंदी का अध्यापन एवं शोध हो सके, साथ ही हिंदी को एक वैश्विक पहचान भी मिल सके। इन सब के बावजूद भी हिंदी को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित करने हेतु कई चुनौतियों को का सामना करना पड़ता है, जो भाषाई, तकनीकी और सांस्कृतिक स्तरों पर हैं, जिसके कारण इसके संरक्षण, विकास एवं प्रचार प्रसार को प्रभावित करता है। आज की युवा पीढ़ी तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण के युग में पली बढ़ी है, जहां अंग्रेजी और भाषा का प्रभाव अधिक बढ़ गया है। वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी का वर्चस्व है, जिससे शिक्षा, व्यापार एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी पिछड़ जाती है। हिंदी को मुख्य रूप से रोजगार की भाषा के रूप में विकसित न कर पाना एक बड़ी बाधा है। डिजिटल युग में हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, शब्दकोश और अनुवाद टूल्स की कमी है, जो इसे अंग्रेजी की तुलना में कम प्रभाव बनाती है। निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि हिंदी का वैश्विक भविष्य उज्ज्वल है। वैश्वीकरण के दौर में हिंदी भाषा का सफर साहित्य से बाजार तक और क्षेत्रीयता से वैश्विकता तक रहा है। 2026 के परिदृश्य में हिंदी न केवल एक सांस्कृतिक सेतु है, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और डिजिटल मीडिया में अपनी जगह

0: बना रही है। हालांकि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हिंदी भाषा का वैश्वीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, फिर भी चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें अवसर में बदलने की ज़रूरत है। अतः यह आवश्यक है कि न केवल मनोरंजन बल्कि संवाद, शिक्षा और डिजिटल संचार के माध्यम से वैश्विक स्तर पर संवाद की भाषा बनी रहे, ताकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध विरासत बन सके।
1: अभी आप हिंदी वार्ता कार्यक्रम में सुन रहे थे हिंदी भाषा का वैश्वीकरण और चुनौतियों विषय पर डॉक्टर सुशील कुमार सिंह की वार्ता। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से हो रहा था।
2: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम में 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। शाम के 7:45 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म दुश्मन का गीत। आवाजें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन। अब आइए सुने फिल्म आबरू का एक गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है। जीएल रावल ने इस गीत को लिखा है और सोनिक ओमी ने संगीत बनाया है।
1: हर चेहरा यहाँ चांद,

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंगम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मेरी मिप 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं अनूप जलोटा। आइए सुने इनकी आवाज में भजन।

अभी अब मीराबाई की लिखी भजन सुने थे, आवाज थी अनूप जलोटा की। अब आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं अनूप जलोटा।

अभी आप सुने थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे अनूप जलोटा। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।

अभी अब फिल्म संगम पर गीत सुने थे, आवाज थी मुकेश की। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। अब आइए फिल्म आम्रपाली का गीत सुने, आवाज लता मंगेशकर की है। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत रचना शंकर जयकिशन की है।

अभी आप फिल्म नौनिहाल का गीत सुने थे, आवाज थी मोहम्मद रफी की। अब आइए आशा भोसले की आवाज में सुने फिल्म दो बदन का गीत। शब्दकार हैं शकील बजायनी और संगीतकार रवि।

अब ऐसने फिल्म चांदनी का गीत, आवाजें हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं शिवहरी।

और अब कार्यक्रम के अंत में आए सुने फिल्म आक्रमण का एक गीत। आवाज किशोर कुमार की है, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस्म अधूरी अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 सेंटीमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरु मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, फिल्म मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान इसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
3: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है।

0: गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री,
4: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: हुरमुज जलजमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए।

हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
72वें राष्ट्रीय

0: What? 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। बहत्तरवीं कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मयोगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे, उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है। अदनान हुरमुज़ के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहीन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला है। आज शाम नई दिल्ली में कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान करते हुए फीचर फिल्म जुमरे की ज्यूरी के चेयरमैन जयराज ने कहा कि ममूती और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेहतरीन अदाकार के जुमरे में कौमी फिल्म अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि फिल्म 370 में उनकी अदाकारी के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म के ज्यूरी के चेयरमैन असीम कुमार सिन्हा ने कहा कि सुमेरा रॉय की हिदायतकारी में भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेहतरीन मुख्तसर फिल्म मराठी में हमसफर रही। उन्होंने कहा कि बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए आनंद एल राय को दिया जाएगा। बेहतरीन फिल्म क्रिटिक अवार्ड संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा में बेहतरीन तहरीर के लिए के प्रदीप कुमार शेट्टी को उनकी कन्नड़ किताब के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सपोर्टिंग रोल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड मिलेगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना कथा कादू को बेहतरीन बच्चों की फिल्म का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। मजमुई तौर पर तफरी फराहम करने के लिए काल्की 2898 एडी को बेहतरीन फीचर फिल्म करार दिया गया है। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के उन 20 बागी अरकान पार्लियामेंट के लिए ऐवान में अलहदा से बैठने को मंजूरी दे दी है जो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में शामिल हुए थे। जनाब बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 अरकान पार्लियामेंट के महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में जम किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। 6 अरकान पार्लियामेंट के शामिल होने के बाद पार्लियामेंट के ऐवान जेरी में शिवसेना के अरकान की तादाद 7 से बढ़कर 13 हो गई है। सरकार ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल कल सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। ये इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कल की मीटिंग के दौरान सरकार दोनों ऐवानों का कामकाज खुशउसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से ताउन की अपील करेगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम 1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने के बाद और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड कामयाबी से पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया है। इस

0: रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में वाक सतीश धवन खलाई मरकज से आज 12:05 पर खला में भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर स्काई रूट एरोस्पेस को मुबारकबाद दी। उन्होंने फोन पर स्काई रूट की टीम से बात की और इस तारीखी खलाई कामयाबी को सराहा।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में रामोल गटराड रोड पर आतिशबाजी का सामान तैयार करने और इसे प्रोसेस करने के यूनिट में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की अमवात पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मकामी इंतजामिया मुतासिरा कारकुनों को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री के अलमनाक वाक्य पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
2: आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने के अलमनाक वाक्य के तनाजुर में तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली फोर्स के अहलकार फौरी तौर पर वहां पहुंच गए और आग के शोलों में घिरे हुए मकाम पर फंसे हुए और जख्मी होने वाले कारकुनों को बचाकर बाहर निकाला। हलाक होने वाले कारकुनों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। अहमदाबाद के फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर समेत आला ओहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उस मकाम का दौरा किया। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने ताजियत का इजहार करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पुलिस की इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली ये फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: आंध्र प्रदेश में पोलावरम जिले के गोला गुडयम गांव के नजदीक 5 माहीगीरों के गोदावरी दरिया में डूबने से मौत हो गई। मालूम हुआ है कि ये माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में गए थे कि पानी के तेज बहाव में बह गए। 5ों माहीगीरों की लाशें दरिया से बाहर निकाल ली गई हैं। हुक्काम ने बताया कि ये सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और इनमें से 3 खवातीन थीं। इस वाकये की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की गई है। रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है और सोगवार कुनबों से ताजियत जाहिर की है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल वसीले से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया जो रामनगर को देहरादून से मरबूत करने वाली पहली बराह रास्त एक्सप्रेस ट्रेन है। इस नई ट्रेन की शुरुआत से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की खातिर आवाम की देरीना मांग पूरी हो गई है। लोगों से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि रामनगर देहरादून एक्सप्रेस दोनों खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करेगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा

0: पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: शिमाली रेलवे ने जम्मू डिवीजन में कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन बाजाब्ता तौर पर रखने का ऐलान किया है। इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि इस सिलसिले में जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मस्कुरा स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जो पहले के कोड KTHU की जगह लेगा। दीगर कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल में सिलीगुड़ी में जुमा गाज के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स BSF कैंप का दौरा किया और BSF के एहलकारों के साथ गुफ्तगू की। जनाब अमित शाह ने पौधे भी लगाए और प्रहारी सम्मेलन में शिरकत की। सरहदी इलाकों को मुस्तहकम करने, पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन, नीज अमन कानून की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर अजम HD देवेगौड़ा की अहलिया चेनम्मा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि चेनम्मा को उनकी इंकिसारी और माशरे की खिदमत के उनके जज्बे के लिए याद किया जाएगा। वजीर अजम ने मजीद कहा कि दुख की इस घड़ी में वो जनाब देवेगौड़ा और उनके पूरे कुनबे के साथ हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि चेनम्मा अपने कुनबे के लिए मजबूती, वक़ार और पुख्ता अजम की अलामत थी। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर ममलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शिकायत के इजाले के तहत शिकायतों को निपटाने से आगे कार्रवाई की जानी चाहिए और पेंशन याफ्ता अफराद की तशवीश और उनकी उमंगों पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। डॉ सिंह ने कहा कि पेंशन से मुतालिक तनाजियात इंतजामी तरीके से हल किए जाने चाहिए ताकि पेंशन याफ्ता अफराद को अदालतों से रुजू करने पर मजबूर न होना पड़े। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में पेंशन मुकदमात के बारे में दूसरी कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। ईरान के कानूनी उमूर और बैन अल-अक़वामी उमूर के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने अमरीका पर समझौते की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए ऐलान किया है कि ईरान ने अमरीका के साथ हाल ही में दस्तखत किए गए इस्लामाबाद मुफाहमतनामे के तहत अपने वादों और अहद को मुअत्तल कर दिया है। ईरान के मीडिया के मुताबिक जनाब गरीबाबादी ने कहा कि तरफेन मुजाकरात कर रहे थे लेकिन अमरीका ने बकौल उनके जारहाना कार्रवाई करके मुफाहमतनामे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की मुबैना खिलाफ वर्जी की है। अमरीका और ईरान ने आज भी एक दूसरे पर हमले किए। अबनाई हुरमुज के मामले पर लड़ाई में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता दो दिन में खारे पानी को साफ करने के प्लांट पर ये दूसरा हमला है, जिससे कुवैत में तशवीश बहुत बढ़ गई है क्योंकि वो तकरीबन 90% पानी के पीने के पानी के लिए इसी तरह के प्लांट्स पर इन्हिसार करता है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल जैली हिमालयी मगरबी बंगाल सिक्किम और उत्तराखंड में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा दो रोज के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर झारखंड केरलम माहे उड़ीसा और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। दिल्ली के लिए कल आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की गई है। भारतीय ओलंपिक्स एसोसिएशन IOA ने आज ऐलान किया है कि ग्लासगो में दौलत मुश्तरक खेलों की इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक में तमगा जीत चुकी मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन भारतीय परचमबरदान होंगी। इन खेलों की इफ्तिताही तकरीब इस माह की 23 तारीख को OVO हाइड्रो एरिना में होगी। एक प्रेस रिलीज में IOA की सदर PT उषा ने कहा कि यह एजाज भारतीय खेलों में उनके गरा कदर तावन को तस्लीम करता है और उन्होंने खेलों में पूरे भारतीय दस्ते को कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। फीफा आलमी कप में आज रात मियामी स्टेडियम में तीसरे मकाम के लिए फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद आलमी कप में फ्रांस की खिताबी मुहिम खत्म हो गई है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। 72वें कौमी फिल्म अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मा योगम के लिए मामूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरक तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम एफ 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत और गजनों का कार्यक्रम अंजुमन। श्रोताओं, अंजुमन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो दोस्त धर्मेंद्र शुक्ल के साथ, तो कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़ के बाद ये समय है कुछ सुकून के पल बिताने का। आइए गीतों और गजलों की मधुर दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां हर शब्द दिल से निकल कर सीधे दिल तक पहुंचता है। उम्मीद है आज की महफिल आपके मन को शांति और आनंद दे पाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मधुर प्रस्तुति।

अभी आप पंकज उधास की आवाज में ये गजल सुन रही थी। श्रोताओं, संगीत मन की भाषा है। कभी यह मुस्कान बनकर खिलता है तो कभी यादों की खुशबू बनकर मन को महका देता है। अब प्रस्तुत है एक ऐसी गजल जिसके अल्फाज संवेदनाओं की गहराई को खूबसूरती से व्यक्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की आवाज में ये रचना। दोस्तों, जीवन में रिश्तों की मिठास और भावनाओं की गर्माहट ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हीं भावों को समर्पित आइए सुने ये रचना। आवाज आशा भोसले की है।

दोस्तों, संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं का एक ऐसा पुल है जो दिल को जोड़ता है। अब सुनिए एक और सुरीली रचना जो अपने मधुर संगीत और अर्थपूर्ण बोलों के कारण हमेशा याद किया जाता है। संगीत की इस महफिल में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत सुखद है। कुछ सुरों में सुकून मिलता है, कुछ अल्फाज में प्यार। गीत और गजलें यूं ही नहीं बनी, बन जाती हैं दिल का संसार। अब आए सुने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में कतील शिफाई का ये कलाम।

अब कार्यक्रम संपन्न होने की तरफ है। मुझे विश्वास है आपके मन को सुकून और नई ऊर्जा दे सकी होगी। अब अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं आकाशवाणी वाराणसी को अवश्य भेजें। आपके विचार हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण है। अब हमें यानी धर्मेंद्र शुक्ल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप सुन रहे थे अंजुमन कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न, संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। बॉर्न इनटू डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिक घराना ऑफ वाराणसी, देवव्रत मिश्रा received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashwani, Devrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras Gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devbrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaro, Sankat Mochan Sangeet Samaro, Saptak Sangeet Samaro, and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar recitals in many countries, such as USA, Canada, Spain, France, Italy, and Germany. Devrat Mishra has been honored with the National Youth Festival Award, Swarmani Alankaran, काशी रत्न, संगीत शिखर, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ट जैज क्रिटिक अवार्ड एंड द वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA। इन टुनाइट्स प्रोग्राम अकंपनीइंग हिम ऑन तबला इज प्रशांत मिश्रा, एन ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। देवव्रत मिश्रा इज बिगनिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ राग जोग, विलंबित एंड ध्रुतगत सेट टू

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाय देवव्रत मिश्रा In tonight's national program of music, accompanying him on tabla was Prashant Mishra. Earlier recorded at Akashwani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashwani.

0: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए, या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, फिल्म मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान इससे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातादर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज की सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।